947 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 हुए हैं। अब आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा और इस नई सुबह की ताजगी भरी इस मीठी बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। उम्मीद है कि आज का सूरज आपके लिए नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और नई सफलताओं का संदेश लेकर आया होगा। सुबह का ये समय अपने आप में दोस्तों बहुत खास होता है। रात की खामोशी के बाद जब जीवन फिर से रफ्तार पकड़ने लगता है तो हर ओर एक नई शुरुआत का एहसास होता है। कहीं चाय की खुशबू है, कहीं पक्षियों का मधुर कलरव, तो कहीं लोग अपने दिन की तैयारियों में लग चुके हैं। लेकिन ये भी सच है कि किसी भी नए दिन की शुरुआत तभी पूरी होती है जब हमें देश दुनिया की महत्वपूर्ण हलचलों की जानकारी मिल जाए। तो आइए अब रुख करते हैं समाचारों की ओर और जानते हैं देश विदेश की ताजा और प्रमुख खबरें। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी

0: 947 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ में। सुबह के 6:05 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम कृषि चर्चा का। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हर रोज हम अपने किसान भाइयों को कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसी क्रम में आज सुनिए खरीफ में हरा चारा उत्पादन, इस विषय पर डॉक्टर राम प्रताप सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान की तैयारी में हैं। खरीफ में जहां हरा चारा उत्पादन करना चाहते हैं तो क्या कुछ संभावना है और इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राम प्रताप सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां खरीफ में हरा चारा पैदा करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है?
2: नमस्कार किसान भाइयों, खरीफ में हरे चारे की महत्वपूर्ण योगदान है और हरे चारे की आवश्यकता है। आज मौसम हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से चलते हुए लखनऊ तक पहुँच रहा है। ऐसी परिस्थिति में किसान भाइयों को 10 जुलाई तक चारे की उन्नत खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय है और उसके अनुसार ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया, ये सब जो हरे चारे की फसलें हैं, आवश्यकता अगर है तो चारे की बुआई करें।
1: तो खेत का चुनाव और खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है डॉक्टर साहब?
2: खेत की तैयारी में सबसे पहले भूमि का चयन आता है। चयन वहाँ हो जहाँ जल निकास उत्तम हो। दूसरी चीज, दोमट और बलुई दोमट जमीन इसके लिए बहुत ही बेहतर मानी जाती है
1: जी।
2: ऐसी परिस्थिति में किसान भाई जिस जमीन का 6.5 से 7.5 पीएच मान हो,
1: हाँ,
2: वही सर्वोत्तम जमीन चारे के लिए होती है।
1: तो प्रजातियां कौन कौन सी हैं डॉक्टर साहब? आपने ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया की बात की, कुछ बहुवर्षीय चारा भी है
2: जी। जैसे ज्वार है हमारा, ज्वार में है एकल कटाई, बहु कटाई
1: जी,
2: दो तरह के चारा की फसलें और उन्नत प्रजातियां कृषि वैज्ञानिकों ने दी हैं, जिसमें PC6, PC9, PC23 और HC171, HC260, UP Cherry 1, UP Cherry 2 और Raj Cherry 1 और 2
1: जी।
2: यह एकल कटाई की फसल है।
1: और बहु कटाई?
2: बहु कटाई में SSG 998, SSG 855, SSG 61-3 और Co 27, Pant Cherry 5 और Punjab Sudex Cherry 1, यह प्रजातियां सबसे उन्नतशील हैं।
1: और बाजरे में?
2: बाजरे की जो है प्रजाति, वह थोड़ा सा ज्वार की प्रजातियों से अलग, किसान भाई इस पर विशेष ध्यान दें। एकल कटाई के लिए Raj Bajra Cherry 2, Narendra Chara Bajra 2, ये हमारे कृषि विश्वविद्यालय की प्रजाति है। बहु कटाई के लिए Giant Bajra, Pro Agro No. 1, ये प्रजातियां हमारी हैं।
1: कहीं कहीं मक्का की फसल भी हरे चारे के रूप में किसान भाई उगाते हैं।
2: बहुत मुख्य आपने बात कही और किसान भाई जो उगाते हैं इसका रो टू रो थोड़ा सा इसका कम कर देते हैं उस मक्का की दाना की अपेक्षा।
1: स्पेसिंग?
2: हाँ, स्पेसिंग जिसे कहते हैं, पक्त से पक्त की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखते हैं। और इसकी जो प्रजात है बहुत ही अच्छी प्रजातियां, अफ्रीकन टाल है, विजय कम्पोजिट है, जवाहर कम्पोजिट है, BL54, APFM8 और प्रताप मक्का, Cherry 6 आदि प्रजातियां ये हैं जो एक बार ही इसमें कटाई होती है, इसमें बहु कटाई नहीं होती है।
1: डॉक्टर साहब, जहां दलहनी चारा में लोबिया उगाना चाहते हैं किसान भाई बहन?
2: देखिए, लोबिया की फसल तो बहुत अच्छी है और कम लागत में यह पैदा होती है। इसमें नत्रजन की मात्रा बहुत कम लगती है, फास्फोरस के भरोसे ये इसकी फसल ली जाती है। अगर कंपोस्ट की मात्रा 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई प्रयोग करें तो लोबिया की चारा बहुत अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। इसकी प्रजातियां बहुत अच्छी हैं, कोहिनूर है, श्वेता है, बुंदेल लोबिया 1, 2, 3 है, GFC 1, 2, 3 प्रजात है एवं 4 भी प्रजाति इसकी GFC निकली हुई है, UPC 618, UPC 622, EC 4216 और रसियन जायंट ये पुरानी प्रजात है। बहुत अच्छी ये प्रजातियां हैं लोबिया की, जिसमें हरा चारा बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ में हरा चारा उत्पादन के बारे में,

0: अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मेरा मोबाइल नंबर है 9450-76-38-23, 9450-76-38-23, 9450-76-38-23। पहली बरसात पर आई हुई नमी पर ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया की खेती उपयुक्त नमी आने पर बुआई करें।
0: डॉक्टर राम प्रताप सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ में हरा चारा उत्पादन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खरीफ में हरा चारा उत्पादन, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राम प्रताप सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता। इसी के साथ अब कृषि चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है गांधी चर्चा में पहले सुनिए बापू के विचार।
3: महात्मा गांधी ने मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक में एक जगह लिखा है कि मुझे जेल का पहला अनुभव सन 1908 में हुआ। उस समय मैंने देखा कि जेल में कैदियों से जो कुछ नियम पलवाए जाते हैं, संयमी अथवा ब्रह्मचारी को उनका पालन स्वेच्छा पूर्वक करना चाहिए। जैसे कैदियों को सूर्यास्त से पहले 5 बजे तक खाना खा लेना होता है, उन्हें हिंदुस्तानी और हबशी कैदियों को चाय या कॉफी नहीं दी जाती, नमक खाना हो तो अलग से लेना होता है, स्वाद के लिए तो कुछ खाया ही नहीं जा सकता। जब मैंने जेल के डॉक्टर से हिंदुस्तानियों के लिए करी पाउडर मांगा और नमक बनती हुई रसोई में ही डालने की बात कही तो वे बोले कि यहाँ आप लोग स्वाद का आनंद लूटने के लिए नहीं आए हैं, आरोग्य की दृष्टि से करी पाउडर की कोई आवश्यकता नहीं है, आरोग्य के विचार से नमक ऊपर से लें या पकाते समय रसोई में डालें, दोनों एक ही बात है। वहाँ तो बड़ी मेहनत के बाद हम आखिर जरूरी परिवर्तन करा सके थे, लेकिन केवल संयम की दृष्टि से देखें तो दोनों प्रतिबंध अच्छे ही थे। ऐसा प्रतिबंध जब जबरदस्ती लगाया जाता है तो वो सफल नहीं होता, लेकिन स्वेच्छा से पालन करने पर ऐसा प्रतिबंध बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए जेल से छूटने के बाद मैंने ये परिवर्तन भोजन में तुरंत किया, भरसक चाय पीना बंद कर दिया और शाम को जल्दी खाने की आदत डाली। लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण मैंने नमक का त्याग किया जो लगभग 10 वर्ष तक अखंड रूप से कायम रहा। अन्नाहार संबंधी कुछ पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि मनुष्य के लिए नमक खाना आवश्यक नहीं है और न खाने वाले को आरोग्य की दृष्टि से लाभ ही होता है। ये तो मुझे सूझा ही था कि नमक न खाने से ब्रह्मचारी को लाभ होता है। मैंने ये भी पढ़ा और अनुभव किया था कि कमजोर शरीर वाले को दाल नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैं उन्हें तुरंत छोड़ न सका था, दोनों चीजें मुझे प्रिय थी। यद्यपि शस्त्र क्रिया के बाद कस्तूरबाई का रक्त स्राव थोड़े समय के लिए बंद हो गया था, लेकिन अब वो फिर से शुरू हो गया और किसी प्रकार बंद ही न होता था। अकेले पानी के उपचार व्यर्थ सिद्ध हुए। यद्यपि पत्नी को मेरे उपचारों पर विशेष श्रद्धा नहीं थी, लेकिन उनके लिए तिरस्कार भी नहीं था, दूसरी दवा करने का आग्रह न था। मैंने उसे नमक और दाल छोड़ने के लिए मनाना शुरू किया। बहुत मनाने पर भी, अपने कथन के समर्थन में कुछ न कुछ पढ़कर सुनाने पर भी वो नहीं मानी। आखिर उसने कहा कि दाल और नमक छोड़ने का तो कोई आपसे कहे तो आप भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे दुख हुआ और हर्ष भी। मुझे अपना प्रेम उड़ेलने का अवसर मिला। उसके हर्ष में मैंने तुरंत ही कहा, तुम्हारा ये ख्याल गलत है, मुझे बीमारी हो और वैद्य इस चीज को या दूसरी किसी चीज को छोड़ने के लिए कहे तो मैं अवश्य छोड़ दूंगा, लेकिन जाओ, मैंने तो 1 साल के लिए दाल और नमक दोनों छोड़े, तुम छोड़ो या ना छोड़ो ये अलग बात है। पत्नी को बहुत पश्चाताप हुआ, वो कह उठी, मुझे माफ कर दीजिए, आपका स्वभाव जानते हुए भी मैं कहते कह गई, अब मैं दाल और नमक नहीं खाऊंगी, लेकिन आप अपनी बात लौटा लें, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सजा हो जाएगी। मैंने कहा, अगर तुम दाल और नमक छोड़ोगी तो अच्छा ही होगा, मुझे विश्वास है कि उससे तुम्हें लाभ होगा, लेकिन मैं अपनी ली हुई प्रतिज्ञा वापस नहीं ले सकूंगा, मुझे तो इससे लाभ ही है। मनुष्य किसी भी निमित्त से संयम क्यों ना पाले, उसमें उसे लाभ ही है, इसलिए तुम मुझसे आग्रह न करो, फिर मेरे लिए भी एक परीक्षा हो जाएगी और इन दो पदार्थों को छोड़ने का जो निश्चय तुमने किया है उस पर दृढ़ रहने में तुम्हें मदद मिलेगी। इसके बाद मुझे उसे मनाने की जरूरत तो नहीं ही रही, आप बहुत हटीले हैं, किसी की बात मानते ही नहीं। ये कहकर और अंजलि भर आंसू बहाकर वो शांत हो गई। मैं इसे सत्याग्रह का नाम देना चाहता हूँ और इसको अपने जीवन की मधुर स्मृतियों में से एक मानता हूँ। इसके बाद कस्तूरबाई की तबीयत खूब संभली, क्षीण शरीर फिर पनपने लगा। स्वयं उस पर तो इन दोनों के त्याग का प्रभाव अच्छा ही पड़ा। त्याग के बाद नमक अथवा दाल की इच्छा तक नहीं रही। नमक और दाल छोड़ाने के प्रयोग मैंने दूसरे साथियों पर भी काफी किए और दक्षिण अफ्रीका में तो उनके परिणाम अच्छे ही आए। वैद्यक दृष्टि से दोनों चीजों के त्याग के विषय में दो मत हो सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई शंका ही नहीं कि संयम की दृष्टि से तो इन दोनों चीजों के त्याग में लाभ ही है। भोगी और संयमी के आहार भिन्न होने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा

0: वाले लोग भोगी का जीवन बिताकर ब्रह्मचर्य को कठिन और कभी कभी लगभग असंभव बना डालते हैं।
1: इसके साथ ही आज की गांधी चर्चा संपन्न होती है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, जीवन के सभी कष्टों और समस्याओं का समाधान हमें केवल ईश्वर की शरण में ही मिल सकता है। इसलिए आइए हम भी चलते हैं उस परमपिता परमेश्वर की शरण में और करते हैं उस परमपिता की आराधना।

श्रोताओं नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जब प्रकृति नई ऊर्जा और उम्मीद लेकर आती है, तब मन भी ईश्वर की भक्ति में डूबकर एक नई शुरुआत करना चाहता है। तो आइए इसी भाव के साथ आरंभ करें आज की आराधना का। आज आराधना का आरंभ करते हैं करबला की कहानी से, जो हमें सच्चाई, सब्र और कुर्बानी का पैगाम देती है।

तब वो सच्चे अर्थों में आत्मा की पुकार बन जाती है। भक्ति भाव में डूबी ये साधना हमें भीतर की शांति और सत्य से जोड़ती है, और उस समय हमें किसी पर गुमान नहीं रहता, सिर्फ आस्था रहती है ईश्वर पर।

श्रोताओं, कहते हैं राम नाम में ही शांति है, सहारा है और जीवन की राह है। तो आइए सुबह सवेरे हम भी करें सिया राम के नाम का सुमिरन।

श्रोताओं, माता का नाम लेते ही मन में विश्वास और दिल में हिम्मत जाग उठती है। माँ केवल स्नेह और ममता की प्रतीक ही नहीं, बल्कि शक्ति, श्रद्धा और अटूट विश्वास का स्वरूप भी है। आइए उसी जग जननी के चरणों में हम भी अपना मन समर्पित करते हुए सुनते हैं ये पावन भजन।

माता रानी हम सबका कल्याण करे। जिनके मस्तक पर चंद्र सुशोभित है, जटाओं में गंगा विराजती है और कंठ में विष धारण कर जो जगत का कल्याण करते हैं, उन देवादिदेव महादेव को शत शत नमन है।

इसी मंगल भावना के साथ आज के आराधना कार्यक्रम को अब यही विराम देने का समय आ गया है। श्रोताओं, ईश्वर से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद आप और हम सबके परिवारों पर सदा बना रहे, आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सद्भाव का प्रकाश फैलता रहे और हर नया दिन आपके लिए आशा, विश्वास और मंगल संदेश लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब दीजिए अनुमति।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, भक्तिमय इस पावन बेला में आइए नमस्कार लखनऊ के सफर में अब आपको सुनवाते हैं भक्ति और मर्यादा की अनुपम गाथा श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज का प्रसंग है आश्रम में श्री राम के अयोध्या वासियों, माताओं और गुरुजनों से मिलने और उनका स्वागत सत्कार करने का वर्णन। आज सुनिए भाग 213।

भरत के साथ आए अयोध्या वासियों से प्रेम पूर्वक मिलकर श्री रामचंद्र ने उनके सारे संताप दूर कर दिए। और निषाद राज के सौभाग्य का क्या कहना, जिसे मुनिवर वशिष्ठ ने लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से गले लगाया। जब उसने दूर से दंडवत प्रणाम किया तो कुलगुरु ने उसे राम सखा का ये सम्मान दिया। श्री राम ने माताओं के समीप पहुंचकर सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों में गिरकर उन्हें सांत्वना दी। जो भी हुआ था उसके लिए काल, कर्म और विधाता को उत्तरदायी ठहराया। फिर राम और लक्ष्मण ने अयोध्या से आई ब्राह्मण पत्नियों तथा गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की, गंगा तथा गौरी की भांति उनका सम्मान किया। फिर दोनों भाई माता सुमित्रा के चरणों से लिपट गए, ऐसे जैसे भिखारी को

अपरिमित संपत्ति मिल गई हो। जब माता कौशल्या के सामने दोनों भाई नतमस्तक हुए तो उन्होंने दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्हें अपने प्रेमाश्रुओं से नहला दिया। ब्राह्मणों, गुरु, मंत्री तथा सभी माताओं को साथ ले भरत श्री राम तथा लक्ष्मण सहित आश्रम पहुंचे। सीता ने कुलगुरु के चरणों से लगकर मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त किया। सासुओं की उपस्थिति के कारण वो कुछ सहम सी गईं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थी वाणी जयराम और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
4: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे।

0: तो चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पारंपरिक प्राकृतिक तत्व की जो गर्मियों की तपती दोपहर में शरीर को अंदर से शीतलता प्रदान करता है। ये न केवल शरीर की गर्मी को संतुलित करता है बल्कि हमारी पाचन शक्ति, त्वचा और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है। हमारा आज का विषय है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा एक प्रकार का प्राकृतिक रेजिन है जो विशेष पेड़ों के तनु से निकलता है। भारत में ये खासतौर पर राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इसका उपयोग सदियों से होता आया है। गर्मियों में जब शरीर लू से झुलसने लगता है, पसीना थकान में बदल जाता है और अंदरूनी गर्मी, सिर दर्द, नकसीर और चक्कर जैसे लक्षण पैदा करने लगती है, तब गोंद कतीरा जैसे तत्व शरीर को ठंडक देकर एक ढाल का काम करते हैं। गोंद कतीरा बाहर से कठोर और पारदर्शी होता है, लेकिन जब इसे रात भर पानी में भिगोया जाता है तो ये फूलकर एक ठंडी जिलेटिन जैसी संरचना में बदल जाता है। यही गोंद का रूप शरीर में जाकर ठंडक फैलाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अंदर से शरीर को ठंडा करता है बिना किसी नुकसान के। ये हमारे पाचन तंत्र पर भी अच्छा असर डालता है, पेट की जलन और गैस की समस्या को कम करता है और पेशाब की रुकावट जैसी समस्याओं में भी राहत पहुंचाता है। गर्मियों में अक्सर शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और ऐसे में गोंद कतीरा को ठंडे दूध, शिकंजी या नींबू पानी में मिलाकर पीने से शरीर में ऊर्जा भी बनी रहती है और तापमान का संतुलन भी रहता है। आप इसे रोज सुबह एक चम्मच भिगोकर दूध या शरबत के साथ सेवन कर सकते हैं। ये शरीर को आंतरिक ठंडक तो देता ही है, साथ ही मांसपेशियों को मजबूत बनाने, कमजोरी दूर करने और थकान को कम करने में भी सहायक होता है। यही कारण है कि ये अक्सर गर्मियों के पारंपरिक शरबतों जैसे गोंद कतीरे का फालूदा या रूह अफ़ज़ा मिल्क में शामिल किया जाता है। और अगर आप सोचते हैं कि गोंद कतीरा केवल पुरुषों या मजदूरों के लिए फायदेमंद है तो जरा रुकिए, ये महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद उपयोगी है। प्रसव के बाद की कमजोरी, मासिक धर्म की अनियमितता और गर्भाशय को मजबूती देने के लिए भी गोंद कतीरा का उपयोग किया जाता है। खासकर जिन महिलाओं को गर्मी में शरीर में जलन, थकान या चक्कर आने जैसी समस्या होती है, उनके लिए ये एक प्राकृतिक टॉनिक की तरह काम करता है। गोंद कतीरा त्वचा के लिए भी वरदान है। इसके ठंडे स्वभाव के कारण ये त्वचा पर जलन और फुंसियों को कम करने में मदद करता है। इसे चेहरे पर फेस पैक की तरह भी लगाया जा सकता है। गर्मी में जब त्वचा रूखी और चिपचिपी हो जाती है तब ये एक शीतल मॉइस्चराइजिंग प्रभाव डालता है जिससे त्वचा में नमी बनी रहती है और चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक भी आती है। एक और रोचक बात ये है कि गोंद कतीरा का उपयोग आयुर्वेद के अलावा यूनानी चिकित्सा पद्धति में भी होता है। इसे वात, पित्त, कफ को संतुलित करने वाला तत्व माना गया है। ये विशेष रूप से पित्त को शांत करता है जो गर्मी के मौसम में असंतुलन में आ जाता है और शरीर में कई तरह की जलन, चिड़चिड़ापन और त्वचा संबंधी समस्याएं पैदा करता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां रेडीमेड और प्रोसेस्ड ड्रिंक्स का चलन बढ़ गया है, वहां गोंद कतीरा जैसे पारंपरिक तत्वों को भूलना हमारी सेहत के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। ये प्रकृति की ओर लौटने का सीधा रास्ता है। ये बाजार में भी आसानी से मिल जाता है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सस्ता भी है और पूरी तरह से सुरक्षित भी। श्रोताओं, क्यों ना इस गर्मी हम सभी अपने घर में गोंद कतीरा को शामिल करें। क्यों ना हम बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय कतीरे वाला ठंडा दूध पिलाएं। क्यों ना हम अपने शरीर को बाहरी एसी से नहीं बल्कि अंदर की ठंडक से आराम दें। यही तो असली स्वास्थ्य है, अंदर से संतुलन और बाहर से स्फूर्ति। आज की स्वास्थ्य चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसे विषय के साथ जो हमारे जीवन को स्वस्थ और सरल बनाने में मदद करेगा। तब तक स्वस्थ रहें, शीतल रहें और इस गर्मी में गोंद कतीरा जैसी प्रकृति की देन को अपनाकर खुद को भीतर से ठंडा रखें। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: सेहत के लिए गोंद कतीरा के फायदे, नीना सोनकर से अभी स्वास्थ्य चर्चा में आप सुन रहे थे ये जानकारी। और इसी के साथ अब स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज दिन भर हमारे

केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आज प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में सुनिएगा आगरा और बिजनौर जिलों की खबरें। प्रातः 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समाप्त फरमाइएगा मुहर्रम पर खुसूसी मकाला, करबला का पैगाम, सब्र और इंसानियत। मकाला निगार होंगे प्रोफेसर सैयद सादे हुसैन आबेदी और डॉक्टर फाजिल हाशमी से सुनिएगा मर्सिया। लोक रंग और लोक माधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे डॉक्टर आभा आर के गाए भोजपुरी लोकगीत। कार्यक्रम का समय होगा प्रातः 9:50 और दिन में 2:45। आपको पुनः बता दें आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे डॉक्टर आभा आर दीक्षित के गाए भोजपुरी लोकगीत। प्रातः 7:31 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आनंद लीजिएगा अशोक गोस्वामी के वायलिन वादन का। बहनें सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम अपराजिता दिन में 1:15 से। कार्यक्रम में आज डॉक्टर अंशुल चंद्रा से ममता उपाध्याय की भेंटवार्ता बहनें सुन सकेंगी। बातचीत का विषय रहेगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी। दिन में 2:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा भेंटवार्ता गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन। वार्ताकार होंगे राम नरेश वर्मा, भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी सायकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5:00 से। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 से। 5:45 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा नई उड़ान। शाम 6:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम लोकायतन। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा जन्मेजय शुक्ल से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता। बातचीत का विषय रहेगा ग्रामीण आजीविका मिशन और जन भागीदारी। 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में आज कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी आप सुनेंगे। आलेख व वाचन आनंद अग्निहोत्री का होगा एवं संपादन डॉक्टर सुशील कुमार राय का होगा। शाम 7:45 पर अंग्रेजी कार्यक्रम में आज देवांशी प्रकाश से डॉक्टर शिवा राकेश का इंटरव्यू सुनिएगा यंग माइंड्स रीडिंग साइंस एंड इंटरव्यू विद रिसर्चर इस विषय पर। रात 8:00 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आज डॉक्टर हरि प्रसाद दुबे की वार्ता सुनिएगा। विषय होगा भक्ति काल के कवियों का दर्शन। रात्रि 8:10 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे अरशद हुसैन चिश्ती व साथियों के स्वर में नात व कव्वाली। रात्रि 9:30 पर श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद के फिल्मी गीत। कार्यक्रम होगा आपकी पसंद। रात 10:30 से शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आनंद लीजिएगा अशोक गोस्वामी के वायलिन वादन का। और रात्रि 11:10 से सुनिएगा लखनऊ स्थित स्थानीय इमामबाड़ा गुफरो माब में संपन्न मजलिसे शाम ए गरीबा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। इसके साथ ही समय समय पर श्रोता फिल्म संगीत एवं प्रायोजित कार्यक्रम भी सुन सकेंगे। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विविधा।

विविधा में। दोस्तों, आज के सफर की शुरुआत एक छोटे से लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल से। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई काम करने के बाद आपने सोचा हो, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर किसी दोस्त की सलाह मानकर आपने कोई फैसला लिया हो और बाद में लगा हो कि वो सलाह सचमुच बड़े काम की थी। दरअसल जिंदगी में हम जो भी फैसले लेते हैं उनके पीछे केवल हमारी समझ नहीं होती, बल्कि उन लोगों और विचारों का भी बहुत गहरा असर होता है जिनके बीच हम रहते हैं। शायद इसी बात को बहुत सरल शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, बिनु सत्संग विवेक ना होई। यानी अच्छे लोगों और अच्छे विचारों का साथ मिले बिना सही समझ विकसित नहीं होती। अब एक सवाल मन में गूंजता है कि आखिर सत्संग है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ किसी धार्मिक कार्यक्रम में बैठना है? जी नहीं, सत्संग का मतलब उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सत्संग यानी ऐसी संगति, ऐसा माहौल, ऐसी बातें और ऐसे विचार जो हमें कुछ अच्छा सोचने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। जरा अपने बचपन को याद कीजिए। हम सब ने घर में बड़ों से कुछ ना कुछ सीखा है। किसी ने सिखाया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो किसी ने कहा कि बच्चों देखो, जरूरतमंद जहां दिखे उसकी मदद जरूर करो, तो किसी ने ये समझाया कि गुस्से में फैसले कभी नहीं लेने चाहिए। ये सारी बातें किताबों से कम और संगति से ज्यादा सीखने को मिली, और बस यही तो सत्संग है। कहा भी जाता है कि इंसान की पहचान उसके दोस्तों से हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा मेहनती लोगों के बीच रहता है तो उसके भीतर भी कुछ कर गुजरने का जज्बा आ जाता है। वहीं अगर आसपास हमेशा शिकायत करने वाले और नकारात्मक सोच वाले लोग हों तो धीरे धीरे वही सोच हमारे अंदर भी घर करने लगती है। ये आपने भी महसूस किया होगा, है ना? दोस्तों, एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूंगी। जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी कमरे में अगरबत्ती जल रही है और वहां बैठने वाले हर व्यक्ति के कपड़ों में उसकी खुशबू अपने आप आ जाती है, ठीक यही बात अच्छी संगति के साथ भी है। अच्छे लोगों के साथ रहकर अच्छे विचार अपने मन में आने ही लगते हैं। आज के समय में सत्संग का अर्थ केवल लोगों तक सीमित नहीं है। हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो भी हमारी संगति का ही हिस्सा बन जाता है। अगर दिन भर हम ऐसे खबरें, वीडियो या बातें सुनते रहें जो मन में डर, गुस्सा या नफरत बढ़ाए, तो उसका असर हमारे सोचने के तरीके पर भी पड़ेगा ही। दूसरी ओर अगर हम प्रेरक बातें सुने, अच्छे लेख पढ़ें या सकारात्मक लोगों से जुड़े, तो हमारी सोच भी सकारात्मक बनती है। दोस्तों, विवेक का मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें जानना नहीं है। विवेक का मतलब है सही समय पर सही बात समझ पाना। जैसे कि हमें कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब गुस्से को रोकना है, कब किसी की मदद करनी है, और हाँ, कब किसी गलत बात का विरोध करना है हमें। ये समझ धीरे धीरे बनती है और इसमें अच्छी संगति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और दोस्तों, अगर ध्यान दें तो हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो बिना किसी बड़े उद्देश्य के हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संगत बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, और कई बार दोस्ती ऐसी राह दिखा जाती है जो शायद हम अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाते हैं।

दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोगों के पास समय कम है, लेकिन फिर भी दिन में कुछ मिनट अच्छे विचारों के लिए निकालना मुश्किल नहीं है। कोई अच्छी किताब, कोई प्रेरक लेख, कोई सकारात्मक चर्चा या किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत, ये सब हमारे जीवन में सत्संग की तरह काम करते हैं। और एक बात और, सत्संग का मतलब ये नहीं कि हम केवल दूसरों से सीखें, कभी कभी अपने आप से ईमानदारी से बात करना भी एक तरह का सत्संग ही है। दिन के अंत में 2 मिनट रुककर ये सोचना कि आज मैंने क्या अच्छा किया, मैं अपने आप में क्या सुधार सकता हूँ, ये आदत भी हमें विवेक की ओर ही ले जाती है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, तुलसीदास जी की ये छोटी सी पंक्ति आज भी उतनी ही सच लगती है जितनी सैकड़ों साल पहले हुआ करती थी। क्योंकि समय बदल गया है, साधन बदल गए हैं, लेकिन इंसान की जरूरत नहीं बदली। आज भी हमें सही और गलत का अंतर समझने के लिए अच्छे विचारों और अच्छी संगति की जरूरत है। तो आइए आज से हम ये कोशिश करें कि अपने आसपास ऐसे लोगों और ऐसे विचारों को जगह दें जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके। क्योंकि अच्छी संगति का असर धीरे धीरे जरूर होता है, लेकिन होता बहुत गहरा है। अब जाते जाते आपसे बस इतना ही कहूंगी कि अच्छे लोगों के साथ बिताया गया थोड़ा सा समय जीवन को नई दिशा दे सकता है। याद रखिए, संगति से गुड़ उपजत है, संगति से गुड़ जाए, जैसी संगति बैठिए तैसा ही फल पाए। इन्हीं शब्दों के साथ अब दीजिए अपनी दोस्त रिंकी शर्मा को अनुमति फिर मिलने के वादे के साथ। नमस्कार।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक

0: लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोड मैप की समीक्षा। कहा किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीरनगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा आज, ताजिया जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन के मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। आरोपितों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप, कृषि क्षेत्र की विभिन्न केंद्रीय और राज्य की योजनाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की संयुक्त समीक्षा की। बैठक में श्री चौहान ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा जिससे किसानों को बेहतर पौधे मिल सकें।
1: क्लीन प्लांट सेंटर यहाँ लगाएंगे जिसमें बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं तो अच्छे पौधे मिल जाए। अगर पौधा खराब मिला, उनको प्लांट खराब मिला तो 2 साल 3 साल या 4 साल बाद पता चलता है कि ये तो वैसा उत्पादन ही नहीं दे रहा। तो वो क्लीन प्लांट सेंटर भी हम खोलेंगे, लेकिन अच्छे बीज और अच्छी रोपण सामग्री उसका इंतजाम करना हम लोग भारत सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
0: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए समृद्ध उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर उन्होंने चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद की अवधि बढ़ाए जाने की मंजूरी भी प्रदान की। उन्होंने इस संबंध में स्वीकृति का आशय पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर मिलेगा और उनके हितों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित होगा। बैठक के दौरान अलनीनो के प्रभाव से निपटने के लिए रणनीति पर भी चर्चा की गई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री कल अयोध्या भी पहुंचे और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मखाने की खेती का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद भी किया। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश के हर जनपद का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पूर्वजों की विरासत को संरक्षित किया है। आज सुशासन और सुरक्षा के माहौल के साथ प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है।
2: ये डबल इंजन की सरकार।

नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत असाना। पहले मुख्य समाचार। राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने

0: श्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है, जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में अक्षय पात्र फाउंडेशन के केंद्रीकृत रसोई घर का उद्घाटन किया। इस रसोई घर का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है। यहां प्रतिदिन 1,00,000 स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार कराकर विद्यालयों में वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने पीएम पोषण योजना के अंतर्गत स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षा को सशक्त समाज की पहचान बताते हुए कहा,
2: शिक्षा समाज की आधारशिला होती है। किसी भी स्वस्थ और समृद्ध समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है शिक्षा। शिक्षा जैसे होगी, समाज का वर्तमान और उसका भविष्य वैसे ही होगा। मैं आह्वान करूंगा बेसिक शिक्षा परिषद के सभी शिक्षकों से, प्रधानाध्यापकों से, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, वे इस बात को ध्यान में रखें कि कोई बच्चा छूटने न पाए, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाना है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कल प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 8 महामंत्री, 19 उपाध्यक्ष और 19 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने सभी वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पदाधिकारियों की नियुक्ति की है।
3: भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है, युवाओं को भी लेकर, महिलाओं को भी लेकर के, और हम लोग ख्याल रखे हैं कि सभी का समायोजन उसमें हो जाए और सभी क्षेत्र का जो हमारे कार्यकर्ता है उनका सबका हर क्षेत्र से करीब करीब बराबर बराबर सबका समायोजन हो जाए, ऐसा प्रयास किया जाए।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नए पदाधिकारी संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने, राष्ट्र प्रथम की भावना को जन जन तक पहुंचाने और जनसेवा के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2026 का विस्तृत आवेदन कल जारी कर दिया। इसी के साथ करीब 500 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौमे आशूरा है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। 10वीं मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों के संपन्न होने के बाद ताजियों को कर्बला में दफन कर दिया जाएगा। गोरखपुर में इमामबाड़ा स्टेट से 10वीं मुहर्रम पर निकलने वाले शाही जुलूस को देखने के लिए आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचे हैं। इससे पहले कल मुहर्रम की 9वीं तारीख पर भी प्रदेश भर में जुलूस निकाले गए। गोरखपुर सहित राज्य के कुछ पूर्वी जनपदों में आज तड़के हुई बारिश से सुबह का मौसम सुहावना हो गया है। पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में कल भी हल्की बारिश हुई थी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोड मैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा आज। ताजिया जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आनंद लीजिए अशोक गोस्वामी के वायलिन वादन का। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्र। राग अलैया बिलावल में है। विलंबित रचना 3 ताल में और द्रुत रचना भी 3 ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अशोक गोस्वामी का वायलिन वादन राग अलहिया बिलावल में। और लीजिए अब सुनिए राग भैरवी। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना भी तीन ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अशोक गोस्वामी का वायलिन वादन राग भैरवी में। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रमोद कुमार मिश्र। श्रोताओं, इसी के साथ अब शास्त्रीय संगीत का ये सफर यहीं संपन्न होता है और इसी के साथ संपन्न होता है नमस्कार लखनऊ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी

एक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राष्ट्रीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का

0: प्रमुख चालक बना हुआ है।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रूपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रूपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टिपत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए NEET UG की पुनर्परीक्षा के उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रूपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
3: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालित पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
4: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं

0: और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि केदार में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सुनिए, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 27 जून 2026 को साय 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां एवं इलाज में वेंटिलेटर और अन्य मशीनों की उपयोगिता, शंकाएं व समाधान। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 26 जून 2026 को साय 4 बजे से, यानी आज शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिएगा, विषय है समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां एवं इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की उपयोगिता, शंकाएं व समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 26 जून 2026 को साय 4 बजे से, और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251720। इसी के साथ रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई।

0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज जोन IRA पर आप हमें सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे।
1: फिल्मी फ्राइडे कट वन टेक वन
2: 5, 6, 7, 8
1: लाइट कैमरा एक्शन एक्शन एक्शन
3: लेडीज एंड जेंटलमैन होल्ड योर हार्ट होल्ड

0: नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के बॉलीवुड गॉसिप्स के वीकली शो फिल्मी फ्राइडे में। मैं हूं आपके साथ आपका फिल्मी दोस्त, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। बातें फिल्मों की होती हैं और जिंदगी में भी कई बार लगता है कि फिल्मों की कहानियां, अभिनय, कलाकार हमारी जिंदगी से मेल खाते हैं और इसी सबको देखते हुए दिल में तमन्ना भी मचलती है, काश हमें भी मौका मिलता स्टार या सुपर स्टार बनने का। हाँ, भी सितारे होते, फिल्म में काम करने का मौका मिलता, लेकिन वो तमन्ना दबी बह गई दिल ही दिल पे। अरे गाना है ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ, कभी आया ख्याल हीरो बनने का? खैर कोई बात नहीं, अगर आपको वो मौका ना मिला तो कोई बात नहीं है, हम हैं आपके साथ लेकर आपके बॉलीवुड ग्लोरियस का वीकली शो, नाम फिल्मी फ्राइडे है और बातें यहाँ टोटल फिल्मी होती है। फिल्मों में इल्म भी होता है, कोई जानकारी भी होती है। हाँ, जानकारी से मैं याद आया, आज का दिन बड़ा खास है। खास क्यों है? प्रत्येक वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। कहने का मतलब क्या है? अरे भाई, कहने का मतलब ये है कि नशा किसी भी तरह का हो हानिकारक ही होता है। तो भैया सीधी सी बात है कि नशे से दूर रहिए और नशा छोड़ें, अपने जीवन को चुनें। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, सामाजिक, इन सभी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो नशा हमारे लिए हानिकारक ही होता है।
1: नहीं,
2: बीड़ी
1: नहीं,
2: सिगरेट
1: नहीं,
2: शराब
1: नहीं, नहीं, नहीं,
0: बिल्कुल नहीं। जी हाँ, नशा को कहिए ना, जिंदगी को कहिए हाँ। दोस्तों ये तो हल्की सी बात ही, हम सबके जीवन को बेहतर बनाने के लिए नशे से आजादी लेनी ही हो, नशे का विरोध करना ही हो, हम सबको नशा मुक्त रहना हो। वैसे आपको बता दें, आपने ट्यून किया है 100.4 FM बोले तो आकाशवाणी बरेली और इस समय आप सुन रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो, नाम फिल्मी फ्राइडे है। बातें स्टार या सुपरस्टार की शुरुआत में हुई थी, तो सच मानिए हमारे कार्यक्रम में भी स्टार और सुपरस्टार होते हैं। भाई सुपरस्टार वो जो पूछे गए सवाल का जवाब सबसे पहले भेजे और बाकी के स्टार जो पहले सही जवाब के बाद जवाब मिलते हैं सही। तो हम पहले शामिल करते हैं अपने प्यारों को, यानी फिल्मी फ्राइडे के सितारों को, स्टार को।

तैयार हो जाइए आप भी। पिछले हफ्ते एक गीत हमने आपसे सुनवाया था, आपको सुनवाया था और आपसे पूछा था फिल्म का नाम। तो पहला जिन्होंने सही जवाब दिया वो सुपरस्टार है, बाकी के स्टार हैं। स्टार से शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। मोहम्मद सईद अब्बासी ऊपरकोट बुलंदशहर से राइट आंसर भेजे। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली से ओमवती जी का भी सही जवाब मिला। डॉक्टर डी एच बच्चन साहब गणेशपुरगंज डंडवारा से आए सही जवाब के साथ। और मोहम्मद कलीम जख्मी रेलवे रोड गंज डंडवारा से आपने भी सही जवाब भेजा। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली से पनीलाल सागर जी ने भी राइट आंसर भेजा। और सरिता गौतम जी ने रामपुर से। गणेशपुर गंज डंडवारा एटा से एम फारूक शेख साहब। और पश्चिम थोक गंज डंडवारा से मुनव्वर लल्ला। बिल्लामगेट कासगंज से एम असलम सैफी। राजकोट से जैमिन कुमार जैन। परीमहल कासगंज से आवाद खान। और बिल्लामगेट कासगंज से बेगम जैबोनिशा। अब बारी है छप्पर वाली मस्जिद कासगंज के सभी दोस्तों की। आप है मोहम्मद जाहिद अली सैफी, लुबना खुसरो, तूबा खुसरो। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक चंदन अरोड़ा। और छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से मोहम्मद जोहान सैफी, तिलक राज अरोड़ा जी खुर्जा यूपी से। और छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से मलिक महमूद। भैया आप सबको बहुत बहुत बधाई फिल्मी फ्राइडे के स्टार बनने की। सुनते रहो प्रत्येक शुक्रवार सुबह 8:15 से आपका अपना बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो, नाम फिल्मी फ्राइडे है। सितारों मुबारक हो, बधाई।

0: This is 100.4 FM.
1: यह 100.4 एफएम आकाशवाणी पर रिली और इस समय आप सुन रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो। नाम तो मालूम ही है आपको, फिल्म माय फ्राइडे। बोले तो फिल्म नहीं, फ्राइडे। जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम में हमारे साथ स्टार होते हैं, स्टार के बाद होते हैं सुपर स्टार। तो पूछे गए सवाल का सबसे पहले जो राइट आंसर भेजते हैं वो सुपर स्टार होते हैं। अब हमारे साथ पिछले हफ्ते के फिल्मी फ्राइडे के सुपर स्टार है

0: सुपर स्टार जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, और आपको बहुत बहुत बधाई।
1: बहुत बहुत थैंक यू सर आपका।
0: नाम और पता बता दीजिए।
1: मैं सर बीपी गौतम, ईटा रोड, गंडनवारा, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर।
0: बहुत बधाई हो आपको फिल्मी फ्राइडे के पुनः सुपरस्टार बनने की। और मुझे लगता है सवाल पूछते वक्त आपके कान में सिर्फ यही रहता है कि सवाल का पहला गीत संगीत क्या है, और तुरंत आप जुट जाते हैं खोजने में जवाब।
1: बस सर जब आप पूछते हैं तो मैं तो पूरा प्रोग्राम ही इस तरह से सुनता हूं कि कहां से आप सवाल पूछेंगे तो जवाब दिया जाए। पिछली बार मैं धोखा खा गया, मैंने अपना ही गाना नहीं गिना। उसमें आपने पूछा था कितने गाने
0: हाँ
1: सुनाए हमने कार्यक्रम में, मैं
0: हाँ
1: अपना ही अपना भूल गया। आपके सब गाने याद थे, कितने बजाए।
0: होता है, अक्सर होता है, हम दुनिया भर की खबर रखते हैं और अपनी खबर नहीं रहती,
1: जी सर,
0: है ना। अच्छा एक बात बताइए, आज का जो दिन है बड़ा खास है, और हम सबके जो स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है।
1: जी अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है सर आज।
0: जी
1: हम तो यही सबको ये कहेंगे कि नशा किसी भी प्रकार का हो, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इनसे सबको दूर ही रहना चाहिए।
0: ड्रग्स वगैरह जो भी होते हैं उन सब के
1: जी
0: नशे
1: जी
0: से इंसान को दूर रहना
1: जी
0: चाहिए, अगर अपने जीवन में उसे खुशहाली चाहिए तो।
1: परिवार खुशहाल तभी रह सकता है सर।
0: बिल्कुल, नशा का मतलब है नशा में पहले ही ना लगा हुआ है, लेकिन इंसान समझते नहीं है, है ना।
1: जी सर,
0: तो चलिए अब ये बताइए कि आपने जवाब भेजा था, क्या भेजा था?
1: फिल्म हादसा थी, उस दिन योगा दिवस था और योगा के ऊपर आपने गाना फिल्म सुनवाया था। अकबर खान की फिल्म थी, जो
0: हाँ
1: संजय खान के भाई हैं
0: हाँ
1: अकबर खान। तो
0: फिल्म देखी है आपने? हाँ,
1: हाँ, मैंने पिक्चर देखी कई बार, वो गाना भी सुनाया मैंने। हाँ,
0: इसीलिए सबसे पहले सही जवाब भेज दिया।
1: वो ऐसा था, मुझे तो फिल्म का नाम सब पता था, बाकी हमारे साथी फिल्म का नाम ढूंढने में लग गए होंगे कि कौन सी फिल्म का है।
0: हाँ ये तो है। तो गीत के बोल डालकर आजकल सर्च इंजन पर और एआई के माध्यम से लोग कोशिश करते हैं कि क्या है
1: जी
0: जवाब इसका, और उसमें कुछ वक्त भी लग जाता होगा, है ना।
1: सर,
0: अच्छा
1: कुछ
0: अब
1: सेकंड
0: एक,
1: तो लगते ही हैं सर
0: बिल्कुल
1: ढूंढने
0: बिल्कुल
1: में लोगों को,
0: बिल्कुल
1: और
0: सही कहा
1: जिसे
0: आपने।
1: पता है वो तुरंत डाल देगा।
0: ये तो सही है। तो अब हम अपने सुपरस्टार को उनकी पसंद का एक गाना सुनवाते हैं, आप बताइए आपको कौन सा वाला गाना सुनवा दिया जाए।
1: एक सर फिल्म आई थी किशोर कुमार की,
0: हाँ
1: उसमें गाना बड़ा मजाहिया गीत है, बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, कि कुएं में कूद जाना यार तुम शादी मत करना।
0: कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम
1: हाँ यार,
0: शादी
1: तुम
0: मत
1: शादी
0: करना।
1: मत करना।
0: हाँ अच्छा, शादी करना भी जरूरी है।
1: हाँ, शादी करना तो सच जरूरी है। अब कुछ लोग दुखी रहते हैं शादी करने के बाद भी।
0: ये तो है, खैर जिंदगी है और दो दिलों
1: जी,
0: का साथ होना जरूरी है, जीवन को अकेले नहीं गुजारा जा सकता।
1: वैसे तो मियां बीवी साइकिल के दो पहिए हैं, एक पहिया अगर खराब हो जाता है फिर साइकिल चलती ही नहीं सारी।
0: अच्छा मियाँ
1: इसी
0: अगला
1: इसी
0: पहिया
1: तरह
0: है,
1: परिवार में
0: और क्या पिछला पहिया अगला पहिया कौन कौन से हैं मियाँ बीबी में?
1: मियाँ साहब अगला पहिया, पिछले भी बीवी पिछला पहिया है साहब।
0: अच्छा मतलब कई बार अगर पिछले पहिये की चैन उतर जाए तो आप अगला पहिया खींच ले जाए,
1: हाँ,
0: हैं,
1: कहाँ खिंचेगी नहीं सर।
0: खिंचेगी नहीं ना।
1: जी सर,
0: चलिए दोनों
1: परिवार चले,
0: का,
1: परिवार इसी तरह सर, परिवार है। अगर किसी को कुछ नुकसान या दिक्कत आती है तो परिवार वही रुक जाता है, धीरे धीरे चलने लगता है सर।
0: अच्छा हमारा ये मानना है कि ये गाड़ी है, गाड़ी के दो पहिये बराबर पे चलते हैं, अगर
1: जी
0: एक
1: सर,
0: डिसबैलेंस हुआ तो दूसरा भी रुक जाता है,
1: तुरंत
0: लेकिन एक ताकत लगा दे तो दूसरा भी उठकर चल देता
1: चल देगा सर।
0: है ना। तो चलिए
1: जी
0: बहुत धन्यवाद, अब आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं, और सुपरस्टार बनने की एक बार फिर से आपको बधाई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।

0: This is 100.4 FM.
1: This is 100.4 FM. आकाशवाणी बरेली और इस समय आप सुन रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो. नाम फिल्मी फ्राइडे है और ये है

आकाशवाणी बरेली FM 100.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन ARF के माध्यम से पूरी दुनिया में आप सुन रहे हैं फिल्म में फ्राइडे। शुक्रवार सुबह 8:15 से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में लाइव रहता है। इस कार्यक्रम में आप स्टार बन सकते हैं, आप सुपर स्टार बन सकते हैं। करना क्या है भाई, प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा, पूछे गए सवाल का सबसे पहले सही जवाब भेजिए और स्टार या सुपर स्टार बन जाइए। चलिए कुर्सी की पेटी बंद लीजिए, अब हम तैयार हैं फ्राई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुर्सी की पेटी थोड़ी बांधनी है भाई, हम तो अपना फ्राइंग पैन निकालते हैं तड़का लगाने के लिए। तो आप तैयार हो जाओ, आज कौन सी फिल्म फ्राई करने वाले हैं? बी रेडी। नमक मिर्च मसाला अगर तेज हो तो बताइए, कम हो तो बताइए, कैसी लगी फिल्म तो बताइए, आपने देखी है तो बताइए, आपने नहीं देखी है तो हम बताएंगे, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप ये मोहब्बत बरकरार रखेंगे हमसे, बोले तो आकाशवाणी बरेली से और आपके अपने कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे से। प्यार जब नया नया होता है तो एक्साइटिंग तो होता ही है, जबकि पुराना प्यार उस फटी हुई टी शर्ट की तरह होता है जिसमें रात को सोते हुए हम कंफर्ट महसूस करते हैं। शाहिद कपूर के किरदार कुणाल का ये एक डायलॉग डायरेक्टर होमी अदजानिया की नई फिल्म कॉकटेल 2 का सार है। समझ गए आप? हमें तो पहले ही से पता था कि आपको अंदाजा होगा। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कॉकटेल 2। कलाकार शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना, कृति सेनन, टीकू तलसानिया, एक रोमांस कॉमेडी और ड्रामा टाइप की फिल्म है। हालांकि जो टाइम है फिल्म का वो 2.5 घंटे का है। दोस्तों कॉकटेल 2 का सार हमने आपको बता दिया, प्यार जब नया होता है तो एक्साइटिंग होता है, लेकिन इस बात को कहने के लिए 2.5 घंटे का बिल्कुल सिंपल और कंफ्यूजिंग सा प्रेम ट्रायंगल चुना। इसमें ग्लैमर तो भरपूर है लेकिन गहराई से कोसों दूर है। होमी अदजानिया ने साल 2012 में कॉकटेल बनाई थी, तब फिल्म में दीपिका पादुकोण, डायना पेंची और सैफ अली खान थे। दीपिका के निभाए किरदार वेरोनिका को आज भी याद किया जाता है। डायनी पेंडी की पहचान आज 16 साल बाद भी इस फिल्म की मीरा के तौर पर होती है, लेकिन अब इसके स्पिरिचुअल सीक्वल यानी कहानी नई अंदाज वही कॉकटेल 2 में, ना तो वो पुरानी वाली खुशबू है और न ही वो नशा। मगर नशा मुक्ति दिवस मना रहे अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस, नशा किसी भी तरह का हो हानिकारक ही होता है। कहानी यूं है, दीपिका यानी रश्मिका मंदाना और कुणाल यानी शाहिद कपूर चाइल्डहुड लवर्स हैं, वो 16 साल से साथ हैं, लिहाजा कभी कभी दोनों अपने रिश्ते में गर्माहट कम महसूस करने लगती है। ऐसे में कुणाल की चीटिंग को लेकर किए गए एक मजाक से दिया के दिमाग में शक बैठ जाता है।

आता है। उसे लगता है कि हो न हो कुणाल उसे धोखा दे रहा है। अब इस शक भरे माहौल से दूर होने के लिए दोनों छुट्टी मनाने सिसिली पहुंचते हैं। वहां दिया के स्कूल फ्रेंड एली यानी कृति सेनन उनसे टकराती हैं। बचपन की दो सहेलियां मिलती हैं तो नया ताना बाना भी बुना जाता है। दिया अपने मन का शक दूर करने के लिए बिंदास बेपरवाह जिंदा दिल एली से कहती है कि वो कुणाल से फ्लर्ट करे। दिया का टास्क सिंपल है, वो बस कुणाल की लॉयल्टी पर रखना चाहती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एली सच में कुणाल के प्यार में पड़ जाती है। अब इस प्रेम त्रिकोण का हर्ष क्या होता है, ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलने वाला है। अगर आपने देखी है तो हमें बताओ, और हमने देखी इतना हमने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों वैसे तो कहानी इस बार भी प्यार दोस्ती कंफ्यूजन जलन और इनसिक्योरिटीज जैसे इमोशंस की है, लेकिन 2012 की कॉकटेल जहां इम्तियाज अली ने लिखी थी वही ये सीक्वल लव रंजन का लिखा हुआ है। ऐसे में दोनों की प्रेम को लेकर समझ का अंतर साफ नजर आता है। पिछली फिल्म जहां मॉडर्न सेटअप के बावजूद भावनाओं के स्तर पर गहरी थी, किरदार आपस से जुड़ते थे, वहीं इस बार मामला थोड़ा उथला उथला है। कॉकरेल 2 का स्क्रीन प्ले दूसरे हिस्से में चर्चित हॉलीवुड फिल्म माय बेस्ट फ्रेड वेडिंग की याद दिलाता है। हाँ, विजुअली ये फिल्म बेहद खूबसूरत है। सिसिली की खूबसूरत वादियों को संथाना कृष्णन रविचंद्रन ने अपने कैमरे से सलीके से कैद किया है। बड़े पर्दे पर ऐसी मनोरम दुनिया दिखती है जैसे नजर नहीं हटती। आए तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे, यही कमाल। अनाइटा श्रॉफ अर्जाइनिया की स्टाइलिंग और कास्ट्यूम का भी है, लेकिन भरदम स्टाइल और ग्लैमर के बावजूद कृति सेनन में जो फिल्म है वो एली में दीपिका पादुकोण की वेरोनिका वाली बात नहीं, बल्कि उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाती। हाँ, एक्टिंग की अगर बात की जाए तो कृति सेनन निश्चित तौर पर फिल्म में थोड़े हॉट लगे हैं, लेकिन अपने एक्सेंट के बावजूद रश्मिका मंदाना भी दिया के किरदार में जचती हैं। शाहिद कपूर जैसा मजा हुआ एक्टर सिवाय आखिरी सीन के बाकी फिल्म में कहीं कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाता, बल्कि इसके उलट हल्के फुल्के सीन्स में वो कुछ ओवर एक्टिंग करने लगते हैं। कुल मिलाकर फिल्म देखते हुए आपको ये तीनों अपने किरदार में कम और असल में कृति रश्मिका और शाहिद ज्यादा लगते हैं। हाँ, प्रीतम दा का संगीत फिल्म के अनुरूप है। जब तलक, माशूका, तुझको, वल्लाह और वंदू 2.0 ये सभी गाने लंबे समय तक याद भले न रहे, आजकल के गाने लंबे समय तक याद रहते कहाँ हैं, अगर ये न रहे तो क्या हुआ, है ना, मगर फिल्म देखते हुए कानों को अच्छे लगते हैं। आपको अच्छी लगे फिल्म तो हमें बताइयो, हमने देखी जहां तक और जितनी या बल्कि पूरी देखी और आपको बता दिया। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके दिल में कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि क्यों देखें। तो भैया, खूबसूरत लोकेशन, अच्छे गानों और हल्के फुल्के रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा से सजी एक ग्लैमरस फिल्म देखने की चाह है तो चाहे आप कॉकटेल 2 देख सकते हैं। वैसे आपकी अपनी मर्जी है फिल्म को देखो या ना देखो, हमारा काम था फ्राई करना, वो हमने कर दिया। हाँ, अब आज के लिए अपने फिल्मी फ्राइडे का फ्राइंग पैन बंद करते हैं। अगले हफ्ते एक और फिल्म में तड़का लगाएंगे।

ये भी सही है। फिल्म फ्राइडे आपको मौका देता है स्टार या सुपरस्टार बनने का। आप बनना चाहोगे स्टार या सुपरस्टार? भाई एक बात आपको बता दें दोस्तों, कार्यक्रम में पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ हम आप सबके जवाबों को शामिल करते हैं। जिस क्रम में आपके जवाब हमें मिलते हैं उसी क्रम में आपके जवाब शामिल किए जाते हैं। तो जो सबसे पहले राइट आंसर भेजेंगे वो सुपरस्टार बन जाएंगे। सुपरस्टार से हम बात करते हैं अपने स्टूडियो से कॉल।

करते हैं उन्हें और उन्हें उनकी पसंद का एक गीत भी सुनवाते हैं। बाकी स्टार के सिर्फ नाम लिए जाते हैं। वर्षों से यही सिलसिला जारी है और कोई कोताही नहीं बरती जाती आप सबके साथ। पूरी ईमानदारी से कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसे में भाई अगर आपको सुपरस्टार बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक अच्छी ट्रिक आपको बताएं दोस्तों कि जो हमारी रेगुलर फ्रीक्वेंसी है 100.4 FM बोले तो 100.4 MHz, इस पर हमारी जो आवाज है वो लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से न्यूज ऑन AIR ऐप पर पहुंचती है। इन दोनों के बीच में लगभग 10 से 20 सेकंड का डिले होता है। तो जो रेगुलर फ्रीक्वेंसी पर हमारे दोस्त हमें सुनते हैं उन्हें हमारी आवाज 20 सेकंड या 10 सेकंड पहले मिलती है। अब इतने पर भी आप जवाब नहीं भेज पाए पहले तो फिर इसमें क्या किया जा सकता है ना। खैर कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहिए और जरूर आप सुपरस्टार भी बनेंगे। फिलहाल अब वहीं चलते हैं जो सवाल आपके दिमाग को चकरघिन्नी बना दे। आज का सवाल भी आपके दिमाग को चकरघिन्नी बनाने के लिए काफी है। वैसे भी हमारी जिंदगी में बहुत सारी उलझने पशु पेश में रहते हैं, ऐसे में हम भी सवाल पूछकर आपसे प्रत्येक शुक्रवार को आपके दिमाग को चकरघिन्नी बना देते हैं। तो तैयार हो चुके हैं आप, लेकिन उस तैयारी से पहले सुनिश्चित कर लीजिए आपको जवाब जिस फॉर्मेट में भेजना है वो कुछ यूं है। सबसे पहले टाइप कीजिए BLYFM, उसके बाद एक स्पेस दीजिए यानी खाली जगह छोड़िए, फिर उसके बाद अपने जवाब लिखिए, उसके बाद अपना नाम पता और अपना मोबाइल नंबर और इसे भेज दीजिए फिल्मी फ्राइडे एवरी फ्राइडे के पेज पर मैसेंजर के थ्रू। आप सबके जवाब हमें आज रात 12 बजे तक मिल जाने चाहिए। आज रात 12 बजे के बाद मिलने वाले किसी भी जवाब पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया जाएगा। आप तैयार हैं क्या? भैया हम तो तैयार हो चुके हैं। सवाल ये है फिल्मों के नाम बताओ। हाँ फिल्मों के नाम बताओ। अरे फिल्म का नाम बताओ। ना ना ना फिल्मों के नाम बताओ। ओहो फिल्म का नाम बताओ। फिल्मों के नाम बताओ। हम खुद कंफ्यूज हैं, फिल्म का नाम पूछें या फिल्मों के नाम पूछें। खैर आप क्या बताएंगे, अगर सही होगा तो आप स्टार सुपरस्टार बनेंगे, गलत होगा तो फिर कोई बात ही ना है। तो चलो फिल्मों के नाम बताओ।

0: This is 100.4 FM.
1: सवाल भी सुन लियो, जवाब भी भेज दो। अभी तक तो कोई जवाब आया ना, है ना? खैर, हम आपके जवाबों के इंतजार में हैं। फिल्मों के नाम आपको बताना है। क्या हुआ, दिमाग के चक्कर घिन्नी बन गए? कोई बात ना, हमें उम्मीद है कि आप ढूंढ लेंगे जवाब। तो आपने जवाब भेजिए, सबसे पहले जो जवाब भेजेंगे वो सुपर स्टार, बाकी के सब राइट आंसर वाले रहेंगे स्टार।

0: तो अब हम चले आज के फिल्मी फ्राइडे का ये फिल्मी सफर यहीं तक। मगर आपको बता दें, फिल्मों के नाम आपको बताना है। अगले हफ्ते ढेरों फिल्मी बातें लेकर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। हमें दीजिए इजाजत, कीजिए स्वीकार सब प्रेम, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड फिल्मी भाव।
1: फिल्मी फ्राइडे, कट वन, टेक वन, 5, 6, 7, 8।
2: सो बेबी, लाइट कैमरा एक्शन एक्शन।
3: Ladies and gentlemen, hold your heart. Hold your breath.
1: We will meet again.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.4 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। आइए अब सुनते हैं लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से FM 100.4 MHz और न्यूज़ जोन AIR ऐप पर आप हमें सुन रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं हम विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं।

0: सिंघम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अजय अतुल का संगीत था।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भर।

0: अकेली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे गुरुशब्द सिंह और चयनिका गर्ग की आवाजों में। बोल गुरुशब्द सिंह के थे, संगीत भी इन्हीं का था। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

थप्पड़ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। राघव चैतन्य की आवाज में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों नशा केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है। ये एक ऐसी बेड़ी है जो व्यक्ति की उड़ान और उसके सपनों को छीन लेती है। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग मस्ती या टेंशन दूर करने के लिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन ये कब एक जानलेवा लत बन जाता है पता ही नहीं चलता। आज का दिन उन लाखों परिवारों के नाम है जिन्होंने अपने को इस लत के कारण खोया है। लेकिन आज का दिन सिर्फ गम मनाने का नहीं बल्कि संकल्प लेने का भी है, खुद को बचाने का और अपने परिवार को सचेत रखने का संकल्प। जो लोग इस दलदल में फंस चुके हैं उनका हाथ थामकर उन्हें सही रास्ते पर लाने का दिन भी है। दोस्तों नशीली दवाओं की अवैध तस्करी और दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको अपने आसपास कुछ भी संदिग्ध लगे या अगर आपको लगता है कि कोई अपना मदद के लिए पुकार रहा है तो खामोश न रहें, मदद के लिए आगे आएं। नशा नाश की जड़ है और हमें मिलकर इस जड़ को काटना है। तो चलिए आज के इस दिन हम वादा करते हैं कि हम न सिर्फ नशा मुक्त भारत का सपना देखेंगे बल्कि इसे पूरा करने के लिए अपनी छोटी छोटी कोशिश भी करेंगे। जिंदगी बहुत हसीन है दोस्तों, इसे किसी नशे की भेंट न चढ़ाएं, अपने हुनर को पहचानें, अपने सपनों को जिएं और नशे को कहें ना। आज 26 जून है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 को स्थापित किया गया था। आज के दिन नशा मुक्ति के लिए और इसका उद्देश्य है नशा मुक्त समाज का निर्माण करना, इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना सुनिए शिल्पा राव की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं, अमित त्रिवेदी का संगीत है।

0: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना था, शिल्पा राव की आवाज, स्वानंद किरकिरे के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत था। जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। यह है प्रोग्राम का आखिरी गाना।

एनिमल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। गरिमा के बोल थे श्रेयस पुराणिक का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।
1: आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के

0: मैं झटके रहता मैं आया है राजा
1: लोगों रे लोगो
0: राजा के संग संग
1: चुमलो
0: आया है राजा
1: लोगों रे लोगो
0: राजा के संग संग
1: चुमलो
2: वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8,500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।
3: वो तो

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव-गांव शहर-शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम

काम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहां वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैया राजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैया राजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैया राजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैया राजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कज़ू हंदाई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिनथई किलंथे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्र। असल में ये फिल्म बालू महेंद्र की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलियाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में

0: उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलैयाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, क्या जोर से बजी है,

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को, और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

और फिर आई फिल्म शमिताब, जिसके गाने लिखे स्वानंद किरकिरे ने, और इस फिल्म में था ये दिलचस्प गाना अमिताभ बच्चन की आवाज में।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैया राजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैया राजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने गवाए।

आ जाए कि जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

यहाँ आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजाविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्र वीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाख, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है।

भावथरिनी और युवान शंकर राजा। इलैयाराजा के ये तीनों बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलैयाराजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलैयाराजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहाँ तक कि अपने भाई को भी इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलैयाराजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलैयाराजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलैयाराजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

इलिया राजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलिया राजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा,

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैयाराजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैयाराजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहनलाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैयाराजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैयाराजा ने तमिल फिल्म पागल निलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

0: सन्नाटा।
1: जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिम्फनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब।

अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बनाता है।

0: संगीतकार इलियाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारी विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हमने अपनी आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, न्यूज ऑन AIRF और FM 100.4 MHz पर। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 27 जून सन 2026 को साढ़े 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां एवं इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की उपयोगिता, शंकाएं व समाधान। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 26 जून सन 2026 को 4:30 से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें टेलीफोन नंबर 0581251700 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिएगा। विषय है, समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां एवं इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की उपयोगिता, शंकाएं व समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 26 जून सन 2026 को 4:30 से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251700। श्रोताओं, इसी के साथ रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई।

भी दोस्तों के मैसेज शामिल हूँ। साथ ही आपसे निवेदन है, अगर आप भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो आकाशवाणी बरेली की पेज पर आइए और आपकी पसंद कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में अपना कमेंट कर दीजिए। सिर्फ टेक्स्ट कमेंट ही हम शामिल करेंगे और हमारे एक श्रोता एक बार ही कमेंट करें, बार बार एक श्रोता कमेंट ना करें। प्रत्येक श्रोता का एक कमेंट शामिल होगा, तो देर किस बात की, आइए आप भी कमेंट कर दीजिए। और आज के इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं, इस समय 70 यानी 70 कमेंट आ चुके हैं। कार्यक्रम में पहला कमेंट जिन दोस्तों ने भेजा है वो आप सब हैं। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केशुताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत और इनके सभी साथी। आप दोस्तों ने फरमाइश की है, पसंद किया है फिल्म लहू के दो रंग से ये गीत, जिसे किशोर कुमार साहब ने गाया है और इसी गाने में आप सबको भी साथ लेते हैं। आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बेटा बजाज, गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी, बेबी भामिका वाणी थांडी हैं टोरोवाल नवाशहर पंजाब से, और नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग पुनाराम, कृष्णा देवांगन और इनके सभी साथी पलारी छत्तीसगढ़ से, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना प्रणय प्रसिद्ध और हीरामन सेंडे, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और इनके सभी साथी हैं, गांव बंडीवाली फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया, और आप हैं बोरखेड़ा पीतरामल उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाटो और इनके सभी साथी, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर और इनका पूरा परिवार जसपुर उत्तराखंड से। और आपने कमेंट किया है होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु खोरवाल और इनके सभी साथी, मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी और इनके तमाम हमनवा, गनगोला तातागंज से इरशद खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, साबरीन बेगम, शहबाज सैफ, ईशान, आजम खान और अरहान खान, नई बस्ती गंज डंडवारा से मोहम्मद यासीन हासमी, नाजमा बेगम हासमी, मोहम्मद तौसीफ हासमी, तैमूर हासमी और मोहम्मद कलीम अंसारी, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, मुरादाबाद ग्राम धूलापुर से ओखला संगम बिहार, दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम और सुंदरम गुप्ता, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौशर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा भी कमेंट करते हैं। कमेंट करते हैं छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल राजेश, और यह कमेंट हमें बागपत उत्तर प्रदेश से भेजा है। आप हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। सिवहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, अरफात अदीब और कादिर चौधरी, और कमेंट करते हैं मोहन सिंह रावत, ममता रावत, वान्या, इंदिरा कॉटेज, तलीताल, नैनीताल से। हमारे ये साथी हैं कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण दृष्टि और मानवी मौर्य, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरालकर, रतनमाला, आरती कुमार, ओम कुमार, गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके सभी साथी, धमदा ग्राम सुकरी कलां से अमित जंघेल, शकुन, आरशी, ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल का कमेंट है। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरा सनील कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल कमेंट करते हैं। तौफीक अहमद से देखे, अतीक अहमद, मोहम्मद दानिश से देखे, महेशपुर खेम, मुरादाबाद से सोनवर्षा खानपुर, चुनार, मिर्जापुर यूपी से आशीष राजभर, मनीष, आशीष, आकर्ष और आकर्ष इनके सभी साथी, गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन आंद्रे, मारोतरा पंचाल और इनके सभी साथी, शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम, अलीम, अजीम, अदीम, अब्दुल गनी, अलमीर, जन्नत और इनका पूरा परिवार, मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना, गंज डंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर, मास्टर लुबना अंसारी, आलिया अंसारी कमेंट करते हैं। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू, खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रवेश चंद्र वर्मा, शेख मूसाभाई जानबाज, राजकुमार बोरडाना, सुधामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप और इनके तमाम साथी, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलेस डिकेस्ट्रो, सादुलशहर राजस्थान से रामकुमार रिवाड, चंद्रकला रिवाड और इनके सभी साथी, नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मैत्रे, अंजलि करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टबूल और पीबी कुलते बीड शहर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। उत्तम कुमार बघेल रुकमणी और साहिल भारती बघेल लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, तेज बहादुर यादव, ममता यादव, रोनित यादव, बेबी वानी का
मऊ

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। FM 100.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप हमें सुन रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आपकी पसंद।

नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के आपकी पसंद के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश है

की जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं और आप हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से प्रकाश अरोड़ा, तिलक राज अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, वेदा सिंह, तिलहर जिला शाहजहांपुर से वंदना सिंह चौहान, वैशाली सिंह चौहान। लसूड़िया नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी और बेबी प्रियांशी। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। शिवाजीनगर बडाली देशमुख महाराष्ट्र से राजेश खोबर केडे, शिव सागर, इंद्रताई, छकुलीताई, स्वराज, दीपाली धांडे, तनुज, सुनैना भोंडे। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोन शाहदरा दिल्ली से आप हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, बेगा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और केशोरी धान खुराना। सोंगामगरलूर से गणेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र, हेयांश कुमार चंदन। गणेशपुरगंज डंडवारा से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। शाहीन फातिमा, शमसुल, कमर राही, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान गज डंडवारा से हैं। और पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चौक, अश्विनी चौक, गोविंद चौक, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक, डिंगरा और इनके सभी साथी। पुराना शहर कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 से अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य। कोलासर नांदुरा महाराष्ट्र से प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े, प्रतीक और संकेत बगाड़े। इटा रोड गंज डंडवारा से बीपी गौतम, सरिता गौतम, एम कलीम शेख, डीएच बच्चन, श्रेया गौतम, कुश गौतम, ऐश्वर्य गौतम और अनन्या गौतम। मशाखिलू परवेज बेगम, इमरान अनाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी गंज डंडवारा से हैं। और आप हैं धुर्रा बांदा भाटापारा छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार, युवराज साहू और इनके सभी साथी। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित चौहान, गर्वी और वाय हिमाक्ष, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, राजौरी गार्डन दिल्ली से धोनी और सानवी। कमेंट करते हैं खेजड़ा, दिनखादा, सरदार शहर, चुरू राजस्थान से संदीप कुमार सारण, प्रदीप कुमार, राजेंद्र सारण, सुमित्रा देवी और इनका पूरा परिवार। मालवा रेडियो श्रोता संघ गुलबालोद आलूट मध्य प्रदेश रतलाम के साथी हैं विक्रम मालवीय, रचना मालवीय, वन देवी, आकाश माहेश्वरी, विनायक और इनका पूरा परिवार। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गोगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर, शशि बाला, किरण गुप्ता और इनके सभी साथी। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ है। आप है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिया निवेदा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल। पद्मटा के नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। बोरसरा नाला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। और आप हैं संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामोन्निशा शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश। सिकलापुर मरेली मौर्य मंदिर से रतन माला मौर्य, मुकेश, प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव और चंद्र प्रकाश मौर्य। कमेंट करते हैं आप हैं प्रदीप, संगीता सलूजा, प्रदीप सलूजा, प्रथम सलूजा और इनके सभी साथी। जनकपुरी नई दिल्ली से राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्ण जैन और राकेश जैन। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी और इनके सभी साथी। बठिंडा रोड मंडी डेबाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। बड़ा बम चौक खंडवा से आप हैं ममता, मार्कंडेय, संजय और बेबी किट्टू। मारहरे दरवाजा ईटा से नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी और इनके तमाम हमनवा हैं। और ये जो कमेंट हमें मिला है वो है डॉक्टर आरवी सिंह, अरिजीत सिंह, प्रशांत यादव, उदित यादव, अभय, दीक्षा यादव और इनके सभी साथी। अल्लाहपुर अल्लाहगंज जनपद शाहजहांपुर से ये कमेंट हमें मिला है। देगांव पूना महाराष्ट्र से सदाशिव थोरात, कविता श्रेया और बंटी थोरात। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित अहूजा। गंगा सिंह रावत जी हैं रामपुर रोड हल्द्वानी से। सैयद ओनू, सैयद नोमन, तनवीर मसर, सैयद निजामुद्दीन, रामभाऊ तादले और इनके सभी साथी। आष्टी जालना मराठवाड़ा से और कमेंट करते हैं
हमारे ये साथी हैं चमनपुरा उदयपुर से नजीब खान जब्बार मोहम्मद अशरफ।

खान, रईसा सबिया खानम, फरीदा और इनके सभी साथी, रावर करनाल से विनोद लखनपाल और इनके सभी साथी, जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया रेनू, दिव्यांशी, आराधना और चंद्रेश गौहर, सुनील पाठक, लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड से और नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा और इनका पूरा परिवार, कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल तार, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी सानी और मोहम्मद अफजल मलिक। तो आप सबके नाम करते हैं फिल्म लहू के दो रंग से ये गीत किशोर कुमार साहब की आवाज में। आँखें मलता हुआ तंचुरा।

आकाशवाणी बरेली FM 100.4 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप इस समय सुन रहे हैं वो कार्यक्रम जिसका नाम है आपकी पसंद। हमारे एक श्रोता कमेंट करके पूछ रहे हैं कि एक घंटे के कार्यक्रम में इतने सभी श्रोताओं की फरमाइशें कैसे पूरी की जा सकती हैं। बात जायज है हम ये कब कहते हैं कि सबकी फरमाइशें पूरी करेंगे, हम तो ये कहते हैं धुआंधार कमेंट कीजिए, प्रत्येक श्रोता का कमेंट शामिल होगा। यानी कि गाने तो कुछ चुनिंदा कमेंट पर ही प्ले कर पाएंगे मगर कमेंट सबके शामिल होंगे, यानी नाम सबके लिए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 143 कमेंट हो चुके हैं और 70 कमेंट के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं काली टोपी लाल रूमाल फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें इस गाने में।

जिन्होंने पसंद किया है ये गीत वो हैं वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रेमला भावसार, भावेश कुमार भावसार, राकेश कुमार भावसार और उनके सभी साथी रागिनी श्रीवास्तव मुस्कान, वीरेश कुमार श्रीवास्तव बैंक सेंटर चनेटी बरेली के पास कैंट से हैं और राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और विटू कुमार का भी कमेंट है। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा भी कमेंट करते हैं। मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगड़ी आलोर रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नाइमा रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़, नाना खन्ना, चंचल खन्ना, लाडो, लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव, कुश खन्ना और इनका पूरा खन्ना परिवार सफीदों सिटी हरियाणा से हैं और आप सबको साथ लेते हैं। आप हैं अशोक, बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मनु, राम सिंह पुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, कस्बा गुहती से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस प्रशांत और कार्तिक निर्भय गुप्ता हैं। और ये जो कमेंट हमें मिला है वो रामपुर रोड किला छावनी से आप हैं प्रदीप कुमार पाल, नमन, पिंकी, राधा, गौरी, आरती मिश्रा, मौसम, मोने, प्रिया सिंह, श्री राम राठौर और इनके परिवार के सभी लोग, साथ में गरीब भाई भी हैं। वैसे गरीब भाई तो जंक्शन से होते हैं, गांव गढ़ी कोटा जिला पंचकूला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अकरम अंसारी, इलियास मुशाहिद, अक्सा, आयशा उमर और समीना अंसारी, पंजौनिया जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन, आशिक हुसैन, अल्ताफ हुसैन और मुन्ना अंसारी कमेंट करते हैं। प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन, देव गुप्ता, प्रियल, कायरव और इनका पूरा गुप्ता परिवार शनि बाजार कस्बा उगहती से। और आप हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुल निशान, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लोबना और यश मंसूरी बाजार रोड मुंगीसापुर से, एचूरा तहसील मिलक जिला रामपुर से दर्पण कुमार सैनी और इनके सभी साथी हैं, कदमा जमशेदपुर से चिन्मय महतो, रेखा महतो और शिवांश मंडल, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश कुमार, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान, रिंगली छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, गुरमई सिंह, गीता जी आज साउथ एक्सटेंशन से हैं, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा बठिना पटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिचन आयाब और लड्डू, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश पुरोहित, शिव कुमार शर्मा, वेबी बेदई जोशी, हंसिका जोशी और अंकिता जोशी कमेंट करते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना, कल्पना, मुन्नी, चांदनी और नंदनी कुमारी, राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत, कौशिकी, दीपाली वर्मा, सचिन और युवान, आर के राजा, लाल कुर्ती रोड की कैंट से, अनिल कुमार राजपूत, भगवान दास राजपूत, मदन लाल, रवि कुमार, नवनीत, किरण, संतोषी, प्रिया, चंचल और लाला राम, ढकिया केसरपुर पीलीभीत से, मस्जिद गली सिराजपुर सुपौल बिहार से मोहम्मद वकील अहमद, नाजनीन बेगम, मोहम्मद आसिफ, कासिम कमर, मोहम्मद कामरान अहमद, मोहम्मद शहबाज अहमद, नाज प्रवीण, नाजिश प्रवीण, रूही प्रवीण, खुशबू मोहम्मद, आकिब मोहम्मद, जैद, पंजाब से हमारे ये साथी हैं अहमदगढ़ मंडी के श्रोता मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, जावेद अंसारी, सूरज अख्तर, सुराज अख्तर, जैस्मिन, शकीला, सना, हेमा, रजिया, सुल्ताना और इनके परिवार के सभी साथी, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला, खुशबू और ज्योति ठाकुर, चरौदा बाजार नवापारा अभारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, डाबकी रोड कूला से सुशीला देवी मंदरकर, सदानंद कुमार, गौरव मंदरकर और हमारे ये साथी साला और पहलगांव कश्मीर से पीरजादा मीराजुद्दीन, नजमुद्दीन और इनके सभी साथी हैं, प्रेमपाल गंगवार, राजेंद्र गंगवार, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, राजू, चंद्रपाल, उल्फर शर्मा, वेदपाल गंगवार, संजीव गंगवार और उनके सभी साथी, क्योलड़िया, नवाबगंज, बरेली से, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, भेरूलाल बाक्तरिया धाकड़ भोला, प्रवीण रियांश बाक्तरिया और प्रतीक बाक्तरिया उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश से, कल मंडी खुर्द झालावाड़ राजस्थान से, अनूप सिंह नाथावंत और इनका पूरा परिवार, अडार नंदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा और ये जो कमेंट है वो छनेश्वर गोड कराची से है, अमर रमेश कुमार खत्री, मास्टर कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जफर सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा और उनके सभी साथी, नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा कलानौर से कमेंट करते हैं, शाजीनगर देगलूर नांदेड़ से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप और नीलेश येले,
पटियाली रोड गंज डंडवारा से आमिर हुसैन तैयबा शेख।

फौजिया आहिल, अरहान हुसैन और इनके सभी साथी। और आप हैं कौन कौन है? जिला पटियाला नाभा पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु और इनका पूरा परिवार। गांव व डाकघर निम्नाबाद, जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा और इनके सभी साथी। और आप हैं फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाड़ी, शालिनी तिवांशी, जीवन बोक और इनके सभी साथी। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से, विनोद खड़से और इनके सभी साथी। कुमारहेडा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम। आप हैं सुरेश कुमार साहू, कमलेश कुमार, देवेंद्र, गजेंद्र, रवि कुमार साहू, धर्मेंद्र, सोनू, राघवेंद्र, भावना, यशदीप और इनका पूरा साहू परिवार। माँ भारती रेडियो श्रोता संघ, ग्राम व पोस्ट अक्टोही, तहसील लवकुश नगर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेश्वरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी हैं। और आप हैं नलेश्वर नगर नरबेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर, मलकापुर से सोपान ताइडे, नारायण इंगले, आशीष महिरकर, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। यहां तक 144 शामिल हुए। गाना प्ले करते हैं फिल्म लागी छूटे ना काली टोपी लाल रूमाल से।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: हो गया इंतजाम।
3: किसका?
2: गुड्डी की फीस का।
3: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आपके साथ है आकाशवाणी बरेली, न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से और अपनी रेगुलर फ्रीक्वेंसी 100.4 FM पर। आपकी पसंद का कार्यक्रम आप अभी सुन रहे हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में आप भी शामिल हो सकते हैं। बस आपको आकाशवाणी बरेली की पेज पर आना है और आज के आपके पसंद कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में अपना कमेंट कर दीजिए टेक्स्ट के माध्यम से। हम आपको बता दें कोई भी कमेंट छूटेगा नहीं। 100, 200, 300, 400, 500 जितने कमेंट होंगे एक बार सबको शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार कमेंट करेंगे तो फिर हम आपको अनदेखा कर देंगे। हाँ, चलिए अगला गाना आपको कभी कभी फिल्म से सुनवाते हैं, जिसे लता मंगेशकर और किशोर कुमार साहब ने गाया है। साहिल उद्यानवी के बोल हैं, PM के म्यूजिक डायरेक्शन। और इस गीत को सुनना चाहते हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोध और इनके सभी साथी। और आपको बता दें कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर पेज पर 153 कमेंट हो चुके हैं। कार्यक्रम का आगाज किया था 70 कमेंट के साथ। तो ग्राम कोठा मक्खन बरेली से अफरोज अंसारी, फारूक अंसारी को भी इसी गाने में शामिल करते हैं। हमारे ये साथी हैं, कौन कौन हैं? लेसिस्टर इंग्लैंड से जावेद इनायत और यूसुफ इनायत, नई मस्जिद करेली से इंतजार अंसारी, हिब्जा नूरी। आप हैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के मां बालेश्वरी धाम सांकरा सोमनी से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी, दीवेंद्र प्रताप, नेहा देवी, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू और इनके सभी साथी। जनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरीत रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र कृष्ण, सुनीता ऋषिवन, नीलकंठ चंद्रहास, हीरेंद्र संजीवन, तिलोक कुमार, माशुर रणजीत सिंह साहू, मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत, सादिया, दादा बाबू रोड गेड़िया झारखंड से कमेंट करते हैं। पटेल नगर मरोड़ से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू जाजोरिया और गुड्डू हैं। अनारकली बाजार जगराऊं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव और इनके सभी साथी। ऊपरकोट मोहला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद, अब्बासी निगत, परवीन अब्बासी, सहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, अब्बासी और कोई साथी ना जी ना, बस यहाँ पर तो इतने ही शो रहे हैं। तो चलिए आपके नाम प्ले करते हैं फिल्म कभी कभी से ये बेहतरीन सा ट्रैक।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बरेली, न्यूज ऑन EIR ऐप और FM 100.4 MHz पर। आपकी पसंद के गाने इस समय आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम का नाम आपकी पसंद है और हम कोशिश करते हैं कि सभी दोस्तों के नाम शामिल हों कार्यक्रम में, मगर गीत तो कुछ ही कमेंट पर सुनवा पाते हैं। तो चलिए अगला गाना आपको सुनवा दें। कौन सा गाना सुनवाया जाए अब आपको? फिल्म का नाम है काला पत्थर।

और लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत जिन दोस्तों ने सुनना चाहा है वो आप सब हैं हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के नंदा बोर्ड के हनुमान बोर्ड के उत्तम चंदाड़े और इनके सभी साथी यहां तक 170 कमेंट आ चुके हैं है ना। ग्राम कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोने योगिता हागोने प्रियली पार्थ और इनका पूरा हागोने परिवार। बड़िंगड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा जी कमेंट करते हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा कपिल चीपा ईशान चीपा और पूजा परिवार जिनके कमेंट शामिल हो गए हैं वो कृपया कर कमेंट ना करें और जिनके शामिल नहीं हुए अभी तक कार्यक्रम में नहीं आए वो कमेंट कर सकते हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट कमेंट के साथ। चक 14 पीएसबी श्रीगंगानगर से आप हैं कुलदीप सिंह राजविंदर कौर संदीप सिंह जसकरण सिंह हरदीप सिंह मनराज विर्क और इनके सभी साथी। हितेंद्र पाल जी कहां से हैं बीके हितेंद्र जी नक्षत्र पाल यादव कुर्रिया सुहाजपुर हरदोई उत्तर प्रदेश से राजू माठी गजानन संजय ज्ञानेश्वर और प्रकाश दांडगे जी हैं बुलढाणा जलगांव जामोद से आसलगांव बाजार के साथी हैं और शेगांव से संतोष एस काले जी गजानन सालोकर सुरेश भेटे पाटिल मानीवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर जी हैं बड़ी गेबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय और उनके सभी साथी। नर्मदा पार्क मंगलबेड़ा से मास्टर आलिम पटेल मुजाहिद पटेल नदीम पटेल पीएस यादव अजयपाल सिंह यादव पवन कुमार यादव प्रभात मयंक यादव टोडरपुर बिसौली बदायूं से है भोजीपुरा उदयपुर बानो जान जिला बरेली उत्तर प्रदेश नाजिम अली अहमद अली मुनाजिर हुसैन गुड्डू अली रिजवान अली मोहम्मद हुसैफ अल आकिब अली गालिब अली अदीब फातिमा जेब नूर शबनम जहां आयशा नूर और गजल निशा सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी इमरान शेख रेहान शेख करूला मुरादाबाद से अयूब खान इरम गुड़िया और शोएब खान कांट रोड लदावली से आप हैं अजीत कसाना माया देवी ऋतिक और आदित्य कसाना चांदुर विस्बा बुलढाणा महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े उषा विशाल वानखेड़े राजुल मोताला महाराष्ट्र से राज गवई राजवीर गवई और इनके सभी साथी। और कोई कमेंट आए हैं ना जी ना बिल्कुल ना तो चलिए गाना प्ले कर देते हैं फिल्म काला पत्थर से ये गीत आप सबकी नजर है लीजिए सुनिए।

आकाशवाणी बरेली से समय आपकी पसंद का कार्यक्रम सुन रहे हैं और कार्यक्रम में यहां तक 173 कमेंट आ चुके हैं। आपको बता दें कि दोस्तों आज तो कमेंट कम पड़ रहे हैं, है ना, समय बहुत बाकी है कार्यक्रम में। तो चलिए अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं जो कमेंट अभी अभी मिले हैं। लवर्स फिल्म का अगला गाना है और इसे गाया है लता मंगेशकर और अमित कुमार साहब ने, मगर पसंद करते हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से माधव नामदेव, सीमा नामदेव और इनके परिवारीजन। इसी गीत में शामिल करते हैं आप सबको अक्षय कॉलोनी गोंदूर रोड धुलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन और अर्पिता और हमारे ये जो साथी हैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेडी से नानाजी लाम से, मीना लाम से, तेजस जयलाम से, हर्षिता लाम से और इनके सभी साथी। तो चलिए आप सबके नाम कर रहे हैं और आज तो बिल्कुल एकदम फ्रेश फ्रेश ताजे ताजे कमेंट मिल रहे हैं, तो समय बहुत है कार्यक्रम में और कमेंट की संख्या कम क्यों है ऐसा हमें भी समझ भी नहीं आ रहा, जबकि हर कमेंट शामिल होगा, प्रत्येक श्रोता का कमेंट शामिल होगा, इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो खैर लवर्स फिल्म का ये गीत आप सबके नजर करते हैं, सुनिए।

आकाशवाणी बरेली FM 100.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप इस समय सुन रहे हैं आपकी पसंद सनम बेवफा फिल्म से ये गीत है लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में। और इस गीत को जिन्होंने पसंद किया है वो कौन कौन है चलिए तो आप सबके नाम शामिल कर रहे हैं है ना, तैयार हो जाइए अपने अपने नाम सुनने के लिए। गीत पसंद किया है मानपुर साबिस जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान और इनके तमाम साथियों ने, मगर आप सबको शामिल कर रहे हैं। आप हैं अक्षय कॉलोनी गोंदोर धुलिया महाराष्ट्र से, मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन और अर्पिता। और ये जो हमारे साथी हैं वो कौन है, कस्बा मीरगंज बिजलीघर से आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, उमेंद्रपुर

श्री गोस्वामी भाई कल्लू मिस्त्री और इनके सभी साथी चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम सुनील गौतम अमन गौतम बुद्ध नगर खंडवा से नदीम भाई और राजू भाई बैजोही से ये जो कह रहे हैं हमारा नाम बोल दो भैया आपका नाम तो बोल दिया हमने मगर आप हैं ग्राम बलवंतपुर वजीरपुर अमानपुर कासगंज उत्तर प्रदेश से अनिल मोहन राजपूत और इनके सभी साथी कमेंट करते हैं कौन कौन गांव अड्डा घनाकूट विल्ला जिला पंचकूला से अब्दुल हमीद अब्दुल रशीद वंतो रुल्दी खदीजा सुहाना रिजवाना जावेद परवेज जाहिदा और रिजवान खान और मदार चौक उदयपुर से ये तो हमने आपके नाम पढ़ दिए मेरे दोस्त है ना तो बार बार कमेंट ना करें सिर्फ एक ही बार कमेंट करें। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल आशा सपकाल सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल का भी कमेंट मिला है। लचनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू और इनके सभी साथी और पारसनाथ कुशवाहा कुशीनगर से हैं और तो कोई साथी है ना 190 कमेंट यहां पर हमें शो हो रहे हैं यानी ये सभी शामिल हो चुके हैं। तो सनम बेवफा से ये गीत जारी है और अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट कर दीजिएगा है ना। फिलहाल सुनते रहिए धुआंधार आपकी पसंद।

दोस्तों, अब तो बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर में आ चुके हैं, तो चलना पड़ेगा। लेकिन ऐसे थोड़े ही जाएंगे। जिन दोस्तों के कमेंट अभी अभी मिले हैं, उन सबके कमेंट उनके नाम शामिल करके जाएंगे। तो कमेंट हमें भेजा है प्रमिलागंज आलूट रतलाम मध्य प्रदेश से हमारे मालवा रेडियो श्रोता संघ के सभी साथी बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, अतुल कुमार, पायल वर्मा, प्रियांश और ऋषि वर्मा। कमेंट मिला बरेली लाल फाटक से डीसी वर्मा, हिमांशी, प्रतिभा वर्मा, विवेक, प्रेम सिंह वर्मा और इनके सभी साथी। प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है, इसके लिए धन्यवाद। और धन्यवाद लेस्टर इंग्लैंड के उन सभी दोस्तों का जिन्होंने अपने नाम सुने। राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, चुलबुल रानी और इनके तमाम साथी हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए। और अब चलेंगे, आप सबने खूबसूरत साथ निभाया मगर हमारी उम्मीदों के मुताबिक कमेंट आपने नहीं किए। 194 कमेंट, क्या हम तो इसमें 300 कमेंट, 400, 500 कमेंट शामिल करने की क्षमता रखते हैं। देखते हैं अगली बार, है ना। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए और कमेंट करने के लिए। हम चलें, इजाजत दीजिए हमें, स्वीकार कीजिए सप्रेम नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, 100.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज जोन AIR ऐप पर। आइए अब सुनते हैं सबरंग। जी हाँ, सबरंग। सबरंग के आरंभ में जुबीन नौटियाल के स्वर में सुनते हैं ये भक्ति रचना। लीजिए

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी बरेली एफ एम 104 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप इस समय सब रंग सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं एल्बम मेड इन इंडिया से ये टाइटल सॉन्ग अली शचनोई की आवाज में।

सब रंग आप आकाशवाणी बरेली से सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR है और FM 100.4 MHz पर। दोस्तों एल्बम चाह से ये ट्रैक आपके लिए प्ले करते हैं अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश की आवाजों में।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली न्यूज ऑन AIR ऐप और FM 100.4 MHz पर। सबरंग सुन रहे हैं आप। सबरंग में अगला एल्बम सॉन्ग दिल खो गया एल्बम से, और इस गीत को गाया है साधना सरगम और कुमार सानू ने।

दोस्तों आकाशवाणी बरेली एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप इस समय सुन रहे हैं सबरंग। एक और ट्रैक आपको सुनवाते हैं एल्बम चाहत से ही, और चाहत एल्बम से यह ट्रैक अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश की आवाजों में है। लीजिए सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे सबरंग, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से FM 100.4 MHz और न्यूज ऑन AIR FM पर ऐप पर आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हुआ चाहते हैं। आइए आप सुनते हैं FM रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

हमारे पास मैसेज आया है किसका, महेंद्र दीपन जी का। और ये क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि आदरणीय रोली मैम जी, हाय हाउ आर यू। ये लिखते हैं कि लखनऊ के सभी प्यारे से श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। और ये साथ ही लिखते हैं कि मैं इस समय लाइव आपका पसंदीदा प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे सुन रहा हूँ। मैम आपका प्रेजेंटेशन हमेशा की तरह आज भी बहुत लाजवाब और दिल को छू लेने वाला है। थैंक यू सो मच महेंद्र जी। और ये लिखते हैं कि मैम इस खूबसूरत प्रोग्राम के माध्यम से मैं सभी लिसनर्स को एक बहुत ज़रूरी और ज़िम्मेदार संदेश पहुंचाना चाहता हूं। और वो क्या है भाई, वो ये है कि ये लिखते हैं कि क्या यातायात के नियम ज़रूर फॉलो करें, सुरक्षित सफ़र हो आपका, सुरक्षित परिवार हो आपका। और सड़कों पर चलने के लिए यातायात के नियम केवल नियम नहीं बल्कि हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमारे परिवार को मिलाने के लिए होते हैं। और नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए, सुरक्षा उपकरण ज़रूरी हैं जिसमें कि बाइक चलाते समय हेलमेट और फोर व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। और जल्दबाजी से बचना चाहिए, याद रखें हमारी सुरक्षा में ही हमारे पूरे परिवार की खुशियां छुपी हैं और हमारी सुरक्षा के लिए ये नियम बनाए गए हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही आपने फरमाया। तो महेंद्र जी हमेशा की तरह आप अपना प्यार यूं ही हमारे साथ बनाए रखिएगा और हमारे पास यूं ही अपने मेल्स भेजते रहिएगा। और बड़ा ही खूबसूरत सा पोस्टर आपने डिजाइन करके भेजा है, थैंक यू सो मच इसके लिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा।

0: जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
1: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
0: और भरोसा,
1: जानो फिर मानो।
2: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: हमारे पास बबीता राव का मेल आया है, और ये कहाँ से मेला है, बेली कलां गुसाईगंज नवाबों का शहर लखनऊ यूपी से। और ये लिखती है, मैम जी मुझे आपकी वॉइस और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और ये लिखती है, आज मेरा बहुत ही छोटा सा संदेश है, दो पहिए के दो नियम, सावधानी एवं संयम, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, पुलिस के या चालान के डर से नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए। कृपया जितने भी लोग गाड़ी से चलते हैं वो लोग हेलमेट लगाकर ही गाड़ी चलाएं, हाथ में पहनकर नहीं। और साथ ही साथ इन्होंने बड़ा प्यारा सा फूलों का गुलदस्ता भी भेजा है, कलरफुल। और लिखती है, थैंक यू सो मच डियर मैम फॉर इंक्लूडिंग माय ईमेल, थैंक यू सो मच टू यू टू। और हमारे पास किसका मैसेज आया है, विजय पाल यादव का मैसेज आया है खीरी से, और ये लिखते ललनुआ खीरी से, और ये लिखते हैं, आदरणीय दीदी जी सादर प्रणाम, आपको भी हमारा प्रणाम। और ये लिखते हैं, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है, आपकी प्रस्तुति बहुत ही प्रशंसनीय है, थैंक यू सो मच। और ये लिखते हैं कि आज का संदेश है कि शादी बारात का समय चल रहा है, ऐसे मौके पर अपनी सेहत का ध्यान रखें, चाट पकौड़ी के चक्कर में कम पड़ें, हल्का खाना खाएं और खाना बेकार बिल्कुल ना करें, जितना खाएं उतना ही थाली मिले। बिल्कुल सही कहा आपने विजय पाल यादव जी। और इन्होंने ये जो मेल भेजा है ये रहते कहाँ है, ये ग्राम पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से इन्होंने हमें, ये वहाँ रहते हैं और मेल भेजा है, थैंक यू सो मच, आपने अपना प्यार हम तक भेजा और आपने अपने व्यूज रखे एक अच्छी बात पर, एक अच्छी चीज पर, आपने सबको अच्छी बात सिखाई कि शादी में किस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए खाना, क्योंकि बहुत ही मेहनत से कमा कर लगाया गया धन इसमें तब जाकर के कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करता है अपने घर में, है ना, तो इस बात का ध्यान हमें विशेष तैयार रखना चाहिए। हमारे पास नजीम जी का मैसेज आया है, और ये लिखते हैं कि मुहर्रम आज है और आपको भी इसी तरह से अपने सारे त्यौहार मनाते रहिए, खुश रहिए, जिंदगी में खुश रहना ही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे पास मुनीश कुमार राज का मैसेज आया, लिखती हैं कि आरजी जी को राम राम, आपको भी, ये कहते हैं हर कार्यक्रम बेमिसाल और इससे मिलते हैं अच्छे अच्छे विचार। जी हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये लिखते हैं, आज का संदेश हमारा ये है कि कुछ नशा करने वाले लोग बच्चों की भी लत लगा देते हैं, और ये जो है बहुत ही भयावह मंजर को बुलावा देता है। सिगरेट या किसी भी तरह का नशीला मादक पदार्थ नहीं लेना चाहिए और ना ही बच्चों को देना चाहिए, और इस किस्म के लोग जो कि रास्ते में ऐसा करते दिखते हैं उनको भी मना करना चाहिए। और हमारा जो सोसाइटी है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं, अपने लोग हैं, इन सब चीज़ों को देख कर कहीं ना कहीं अपने अंदर उस चीज़ को धारण करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर हमारे समाज में मिसाल अच्छी नहीं होगी तो हमारा समाज की जो जड़ है वो कैसे नरिश होगी अच्छी चीजों से। हाँ तो ऑब्वियसली बड़े लोग जो हमें सिखाते हैं या हमें बताते हैं वो सही सिखाते हैं, साथ में वो लोग भी जो कि कुछ एक्शंस करके दिखाते हैं वो भी कुछ अच्छी बातें करें, कुछ अच्छे काम करें, सो दैट छोटे बच्चे उन्हें देखकर कुछ सीख सकें, कुछ बेहतर बन सके, कुछ अच्छी मिसाल कायम हो सके। 11:46 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे, और आपके साथ कौन है इस समय, आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला है इस समय आपके साथ, थोड़े से समय और शेष बचा है जब मैं आपके साथ रहूंगी, सो जितना भी समय है उसे एंजॉय करते हैं।

और जो पूरा दिन साथ में रहता है तो ऑब्वियसली वो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, तो वो बंधु भी होता है, वो सखा भी होता है, और वो आपका हर राज को जानने वाला राजदार भी होता है, क्या कहते हैं आप। हमारे पास मैसेज आया है, किसका? हमारे पास मैसेज आया है तनु कश्यप का, और ये लिखती है, क्या मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, प्लीज उनका वाला सॉन्ग बजा दीजिए। सो क्यूट। आपको मैं बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है इसमें आपका पसंदीदा गाना नहीं बजता है, ये तो आपके दूसरे शो में होता है, लेकिन आपकी जो फ्रेंड है उसका नाम है आस्था सिंह, तो मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आस्था सिंह को हैप्पी बर्थडे। तो तनु जी, आप खुश हो गई ना? आपकी पसंद का सॉन्ग तो नहीं, लेकिन आपके सखा आपके बंधु को मैंने हैप्पी बर्थडे विश कर दिया है। यही तो कह रही थी मैं कि जब आपका कोई बहुत बेस्ट वाला फ्रेंड और वो साथ रहे हमेशा, तो वो आपका बेस्ट बडी बन जाता है। हमारे पास मयंक शुक्ला का मैसेज आया है, और मयंक शुक्ला कहते हैं कि भाई मेरा गाना प्ले कर दिया, और एक लंबी सी कतार में लिखा है प्लीज। तो मैं आपको बता दूं कि आपके संदेश इसमें शामिल किए जाते हैं, और आपका पसंदीदा गाना प्ले नहीं किया जाता, लेकिन हमारे जो गाने जो हम प्ले करते हैं वो भी तो आपको बहुत पसंद आते हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी जी का मैसेज आया, लिखते हैं, मैम जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रहा हूँ। संदेश ये है कि जैसे लोग शादियों में लिफाफा भेजते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हॉस्पिटल जाते हैं मिलने के लिए, तो मदद के लिए उसी तरह से करना चाहिए, उन लोगों को मदद की जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात है। और साथ ही लिखते हैं कि सभी जो लिसनर्स हैं उनको उनको इनकी तरफ से नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपने मैसेज भेजा हमें और आपका मैसेज हमने शामिल किया। और वैसे अब आपको बता दें कि बहुत कम समय बचा है, लेकिन एक बड़ा प्यारा सा ट्रैक है, जैसे पॉपअप करके आ रहा है सामने, और ये कह रहा है कि भाई प्ले कर दिया।

तो एक प्रिटी लेडी है जो कि ऑन स्टेज डांस करने के लिए बिल्कुल तैयार है. चलिए इस प्रिटी लेडी को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, ट्राई कर उसके बाद वापस आते हैं.

0: के बस ढूंढता रहूं मैं तेरा झूठ।
1: और ये जो प्रति गर्ल है जो अभी अभी आई है, देखते हैं इनका नाम क्या है भला। हेलो
2: हेलो, कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो नाम क्या है भला?
2: नाम तो मैं नहीं बताने वाली।
1: मैं बता देती हूँ नाम क्या है भला। इनका नाम है क्या क्या क्या?
2: चंद्रकला।
1: ये बात हुई ना। तो दोस्तों, अब समय किसका है? समय है चंद्रकला का। चंद्रकला रहने वाली है आपके साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में। और रोली शुक्ला आपसे कहती है टेक केयर, टाटा बाय। मैं फिर मिलती हूँ आपसे किसी दिन किसी और शो में। तब तक के लिए अपने चेहरे पर, अपने होठों पर ये मुस्कुराहट यूं ही बनाए रखिएगा और साथ ही साथ 100.7 FM रेनबो सुनते रहिएगा। टेक केयर, बाय।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान प्रकरण में आज 8 नामजद व अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर सीएम योगी द्वारा गठित एसआईटी के प्रारंभिक प्रतिवेदन में कठोर संस्तुतियां की गई हैं। सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई इस एफआईआर में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू को नामजद किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीरनगर में कहा कि बाबा तामेश्वरनाथ धाम, बाबा बैजूनाथ धाम सहित क्षेत्र के धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण केवल आस्था का सम्मान नहीं बल्कि उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता है जिन्होंने इन धरोहरों की स्थापना की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बाबा तामेश्वरनाथ धाम को नई पहचान देने के लिए भव्य कॉरिडोर निर्माण की योजना पर कार्य कर रही है। कॉरिडोर बनने से क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होगा और इस काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम तथा मां विंध्यवासिनी धाम की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना अंतर्गत पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अमरोहा की जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अलका चौधरी ने बताया कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट तथा आवेदकों के अभिभावक की ग्रामीण व शहरी क्षेत्र हेतु वार्षिक आय सीमा 1,00,000 होनी चाहिए। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो, अभ्यर्थी बेरोजगार हो, किसी शिक्षण संस्था से छात्रवृत्ति न लेता हो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2026 का विस्तृत आवेदन कल जारी कर दिया। इसी के साथ 500 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे बल्कि आवेदन में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। इसी के साथ यह बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: है ये समय जो है वो शत्रुपा का है और ये सेगमेंट है स्वयं सिद्धा। और आगाज कर चुके हैं हम आज प्रोग्राम स्वयं सिद्धा का, शत्रुपा का। ये एक खास मंच है जहां पर हम बात कर रहे होते हैं उन महिलाओं की जिन्होंने अपने साहस, मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प से सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल किया, नए मुकाम हासिल किए और समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। बस एक खुशी की बात आज आपके साथ साझा करने वाली हूँ और आज स्वयं सिद्धा क्योंकि डेडिकेटेड है हमारी उन महिलाओं को जिन्होंने अपने दम पर एक नया मुकाम हासिल किया, अपनी पहचान बनाई अपने दम पर। और हम ट्रिब्यूट भी करते हैं, उदाहरण भी देते हैं और साथ में खुद सीख भी लेते हैं। और आज गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि हमारे साथ एक ऐसी ही प्रेरणादायी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने योग को केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम बनाया है। योग के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली, अनेक खिलाड़ियों और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने वाली और अपने कार्यों के लिए अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित डॉक्टर मालविका वाजपेयी जी आज हमारे बीच हैं। तो अब उनकी आवाज भी सुनी ली जाए। और डॉक्टर मालविका जी, शत्रुपा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: नमस्कार चंद्रकला जी।
0: नमस्कार मालविका जी, और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और इतनी खुशी हमें है कि आज आप अपनी इंस्पायरिंग सी लाइफ की स्टोरी, आपका जो स्ट्रगल है और आपकी सक्सेस स्टोरी है, ये सारे अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ हमारे साथ साझा करने जा रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत फिर से। चलिए बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि मालविका जी की ही पसंद का एक खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर भेजा जाए और ये गीत सुनने के बाद हम आएंगे और मालविका जी से क्वेश्चंस का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे। और शुरू करने के साथ साथ हमारे हौसलों की, आपके हौसलों की, सफलता की एक नए मुकाम की अलग सी बात होगी। तो ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

12:03 हो गए हैं और मेरा प्यार भरा नमस्कार सलाम है आपको। मैं चंद्रकला आपकी दोस्त आपके साथ जुड़ गई हूँ और ये प्रोग्राम, ये आपका प्रोग्राम

बंदों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा। जानो फिर मानो।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
3: टोल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 12:11 हो गए हैं और वेलकम बैक एक ब्रेक के बाद। अच्छा मालविका जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले जो हमने एक गाना सुना गिव मी सम सनशाइन, ये आपने क्या सोचा कि इस गाने को सबसे पहले प्ले करें? आपको बहुत पसंद है कि मतलब आपको इसकी वाइब अच्छी लगती है?
1: ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज मैंने ये सॉन्ग सुनना शुरू किया था। और देखिए, सन इज़ द पावर ऑफ एनर्जी, राइट? मतलब, और मुझे लगा गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस, आई वन्ना ग्रो अप वंस अगेन। मुझे ऐसा लगा ना कि लाइक इसमें ये कि अगर आप कभी फेल भी हो जाते हो
0: जी,
1: तो हम हार नहीं मान रहे हैं और हम आगे बढ़ने के लिए ये गाना मुझे बोल रहा है कि जब मुझे दूसरा मौका भी मिलेगा तो मैं दोबारा से नया, मतलब स्टार्टिंग से मैं ग्रो करके दिखाऊंगा। तो हालांकि कभी फेलियर नहीं देखा लाइफ में ऐसा, लेकिन ये प्रेरित करता था अंदर से। तो अक्सर मैं गुनगुनाती रहती थी, सुनती रहती थी इसको। बट मेरे स्पोर्ट्स फील्ड ने मुझे इसने बहुत हेल्प किया। मैं वॉलीबॉल प्लेयर रही हूँ। जब मैंने स्मैश मारना सीखा तो एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ। बट जो म्यूज़िक होते हैं
0: जी,
1: म्यूज़िक इज़ लाइक अ मेडिटेशन।
0: जी,
1: जब हम उसे सुनते हैं, उसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो हमारा ब्रेन इतनी उसको, उसकी वाइब्स को इतनी जल्दी अब्जॉर्ब करता है कि शायद किसी की बातें और प्रेरणा हमें इतनी जल्दी नहीं समझ में आती। म्यूज़िक इतना हेल्पफुल होता है।
0: क्या बात है। मतलब ये है कि अगर अच्छा म्यूज़िक सुने तो अच्छी सराउंडिंग्स, अच्छी वाइब्स मिलेंगी। क्या बात है। तो डॉक्टर मालविका, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपकी योग की ये जो यात्रा है, ये शुरू कैसे हुई? क्या बचपन से ही आपकी योग के प्रति रुचि थी, या ज़िंदगी के किसी खास एक्सपीरियंस ने आपको इस दिशा में प्रेरित किया? आपकी, मतलब ओवरऑल जो हम पूछ रहे हैं आपसे कि आपकी योग की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली?
1: मेरे फादर प्रिंसिपल थे।
0: जी
1: मेरी मदर पहले आईटीआई में काम करती थी, और इससे पहले मतलब वो इंजीनियरिंग उन्होंने करी है। तो लखनऊ में अपट्रान लिमिटेड में उन्होंने काम किया उससे पहले,
0: जी
1: और फिर हमारी परवरिश करने के लिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। और एक मिडिल क्लास फैमिली में हम बहुत अच्छे से हमने अपने आप को ग्रो किया, सब कुछ ठीक था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब मैंने एजुकेशन लेनी शुरू करी
0: जी
1: उसके साथ में मैंने ग्रेजुएशन लेवल पे जाके स्पोर्ट्स चुना, और जब मैंने वहाँ खेलना शुरू किया तो मेहनत भी बहुत थी। और मैंने ये पाया कि सबसे पहले जो मेरे कोच ने मुझे बोला कि अगर आप स्पोर्ट्स करते हो देन 1 ईयर आपको पूरा एथलेटिक्स करना चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाए।
0: जी
1: और 3 ईयर्स तक मैंने अपनी डिग्री

0: कंप्लीट करी और उस दौरान मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल तक खेला।
1: जी
0: फिर एक दिन क्या हुआ, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में थी तब हमारी प्रैक्टिस छूट चुकी थी पूरी, हम तैयारी अपनी इसकी कर रहे थे
1: जी
0: अपनी पीजी की। देन एक दिन वॉलीबॉल खेलते हुए विदाउट वार्म अप मैंने किया तो मुझे कमर में एक स्ट्रेन आ गया, मेरे बैक में। वो बहुत ज़्यादा था
1: जी
0: और वो इतना ज़्यादा था कि अगर मैं उठती थी तो मैं बैठ नहीं पाती थी, खड़े होने के बाद अगर लेटती थी तो वो तो भी उठना मुश्किल होता था, या गाड़ी कभी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकलती थी तो बहुत तेज़ से पेन आता था। तो मेरे एक नोन पर्सन थे, मामा जी थे मेरे, उन्होंने बोला कि तुम भुजंगासन करो तो तुम्हारा ये पेन ठीक हो जाएगा।
1: जी
0: मुझे मजाक लगा और मुझे बहुत गुस्सा भी आया उनके ऊपर,
1: अच्छा
0: बट रिस्पेक्ट करने के लिए मैंने उस आसन को 2 दिन तक किया।
1: जी
0: आप यकीन मानिए वो दोबारा कभी वो बैक पेन नहीं हुआ।
1: वाह
0: तब मुझे लगा कि ये तो मेराकुलस है और फिर मैं योग की तरफ मुड़ गई। फिर मैंने वेट किया जल्दी से मेरी पीजी कंप्लीट हो और मुझे जाकर के अब योग से अपना एजुकेशन लेना है। और फिर तब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे इसी करियर में जाना है, यहीं पर ग्रो करना है,
1: जी
0: और वहीं से मेरी योगा जर्नी स्टार्ट हुई।
1: क्या बात है। मतलब कई बार हम वो फिल्मी स्टोरी सुनते हैं ना, लोगों की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, तो कई बार ज़रूरी नहीं है कि हम जिस दिशा में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं कि हमें यही चाहिए, ज़रूरी नहीं है मिल ही जाए। ऐसा ज़रूरी है कि आप निरंतर चलते रहिए अपनी यात्रा में, और कोई मोड़ ऐसा आए जहाँ पर आपको ऐसा मौका मिले, आपको ऐसी इंस्पिरेशन अचानक मिले, ऐसा भी होता है। हमें तो बहुत ही खूबसूरत लगी इनकी बात, और ज़िंदगी का ये जो टर्निंग पॉइंट है ये भी बहुत अच्छा लगा। और ये जो गाना है अगला, ये भी इन्हीं की पसंद का आपके रेडियो सेट पर आ रहा है, और ये जो गाना है ये सक्सेस स्टोरी, ताकत और एम्पावरमेंट को प्रदर्शित करता है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। आप इसे सुनिए, तुरंत वापस आते हैं अगले सवालों के साथ।

0: बिल्कुल, और इसी पटाखा गुड्डे की तरह ही आगे बढ़ते रहना, शानदार तरीके से चमकते रहना, और इस बड़े विशाल आसमान में अपनी एक अलग सी जगह बनाना, मतलब एक तारे की तरह हमेशा टिमटिमाते रहना, ये जो सफलता है ना, ये कुछ ऐसे लोगों को मिलती है जो अपने रास्ते के कांटों को खुद हटाते हैं और खुद आगे बढ़ते जाते हैं और खुद डिसाइड करते हैं कि क्या चाहिए मुझे। डॉक्टर मालविका जो हमारे साथ हैं, एक प्रख्यात योग विशेषज्ञ हैं, योग प्रशिक्षक हैं, खेल प्रशासक हैं, लेखिका हैं, योग प्रचारक हैं। वो योगासना बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल के संस्थापक और मुख्य संपादक भी हैं। उनकी योग यात्रा श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं और योगाचार्य BKS अयंगर के सिद्धांतों से प्रेरित है। उन्होंने शारीरिक शिक्षा में, योग विज्ञान में विशेष अध्ययन किया है और देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से योग विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की है और अष्टांग योग, हठ योग, अयंगर योग, विन्यास योग, राजयोग, प्राणायाम, योग चिकित्सा और साउंड हीलिंग मेडिटेशन जैसी विभिन्न योग पद्धतियों में विशेषता रखती हैं। और ये भी सच बात है कि विश्व भर में इस समय योग की आवश्यकता और महत्व को समझा जा रहा है। तो डॉक्टर मालविका, आपसे आपकी इन अचीवमेंट्स के साथ जो अगला क्वेश्चन है वो ये, हमारे सारे श्रोता बड़े ही मन से सुन रहे हैं आपको, खासकर महिला श्रोताएं हमारी, जीवन में वो कौन सा क्षण था, कौन सा मोमेंट था ऐसा जब आपने तय कर लिया कि आपका लक्ष्य करियर जो बनना है वो क्या बनेगा? जैसे आपने इससे पहले बताया कि योग ही मुझे अब करना है, लेकिन करियर में एक जो कमाने का जरिया हो, पहचान का जरिया हो, क्या योग को अपना पेशा बनाने का निर्णय आपने उसी मोमेंट पे शुरू कर दिया था जो आपने पिछली बार बताया था इससे पहले, या फिर सफर आपको धीरे धीरे उस योग पेशे को बनाने के लिए आगे लेता चला गया? मतलब एक पॉइंट पे आपको रियलाइज हुआ कि
1: जब तक मैं पढ़ाई कर रही थी तब उसके बाद जैसे मुझे इंजरी हुई और फिर मैं योगा एजुकेशन के लिए हरिद्वार गई
0: जी,
1: तो उस समय पे क्या था कि ना पैसे घर पे नॉर्मल लाइक इनफ तो नहीं मिलते थे बहुत
0: जी,
1: तो यहीं पर मुझे स्टडी करते ही करते नवयुग रेडियंस स्कूल है वहाँ से एक ऑफर आया जॉब के लिए
0: जी,
1: तो मुझे उनकी 2 ब्रांचेस के लिए 17,500 रुपीज पे करते थे
0: जी,
1: एंड 12 क्लासेज होती थी एक ब्रांच में, 12 क्लासेज होती थी दूसरी ब्रांच में, एंड इट इज़ अराउंड 45 मिनट्स।
0: ओके,
1: तो मुझे लगता था यार ये जो टीचर्स है बाकी के पूरे पूरे दिन घंटों काम करते हैं, तब इनको जाके 20-25-30 हज़ार रुपये पूरे महीने के मिलते हैं,
0: बिल्कुल,
1: और मैं तो 1 घंटे चली आती हूँ, मुझे इतने पैसे मिलते हैं। तो मुझे धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि इस करियर में पैसे तो बहुत अच्छे हैं
0: जी,
1: अपनी इंपॉर्टेंस पता चली। फिर स्टडी करते करते ही फिर मेरा रुझान हुआ इसकी थेरेपीज की तरफ
0: जी,
1: फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि थेरेपीज में जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं या बाकी लोग हैं उस पर जो काम कर रहे हैं वो भी एक अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। फिर जब मैंने अयंगर स्टाइल ऑफ योगा जब एक्सप्लोर करना शुरू किया, देन आई कम टू नो कि एक करियर भी अच्छे से बना सकते हैं और उसके साथ में ही मैं बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी दे सकती हूँ, उनकी हेल्प कर सकती हूँ। लाइक मेरा एक फ्रेंड था, उसको बैक में पेन था, स्लिप डिस्क हो चुकी थी
0: जी,
1: तो

0: थी, मैंने उसमें हेल्प करी विद सम आसनास,
1: अच्छा
0: जो कि 8 महीने से बेड पे था, या
1: 8 महीने से,
0: 8 महीने से उसको पेन बहुत था या सारी चीज़ें थी। तो मैंने फील किया कि जब 8 महीने से उसको प्रॉब्लम हो रही है और इतने दिनों तक वो जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, उसके पैसे नहीं आ रहे हैं या चीज़ें, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो लोगों को हो रही है वो इस वजह से हो रही थी, बिकॉज ऑफ पोस्टल प्रॉब्लम।
1: जी
0: तो वो रिकवर हुई। देन आई अंडरस्टैंड कि यहाँ से हम एक ये भी कर सकते हैं, एक मैं सोशल वर्क भी कर सकती हूँ
1: जी
0: और अपने पैसे भी अच्छे अर्न कर सकती हूँ। फिर करियर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आता गया। देन मैंने थेरेपी सीखी, फिर मैं योगासना स्पोर्ट्स प्लेयर बनी, और जब मैंने वहाँ से शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि बच्चों को भी मुझे खिलाना है। और आज देखिए इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हो रहा है पूरे विश्व में,
1: जी
0: और 2020 में मुझे मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी से ऑफर आया था। तो उससे पहले, फिर उसके बाद कोरोना आ चुका था तो मैं वहाँ नहीं गई थी,
1: जी
0: एज अ गेस्ट लेक्चर उन्होंने मुझे बुलाया था। तो ये भी समझ में आ गया था कि ग्लोबल रिकॉग्निशन आपको योग से मिल सकती है।
1: जी
0: तो फिर एक प्रेरणा मुझे मिलती गई और मैं धीरे धीरे इस क्षेत्र में आगे बढ़ती गई, और आज भी मैं सीख रही हूँ।
1: जी तो मतलब आपकी जो ये यात्रा हुई वो इस योग को पेशा बनाने की अचानक से नहीं शुरू हुई, जबकि धीरे धीरे आप उसके साथ चलती गई उस टर्निंग पॉइंट के बाद, और एक समय आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे कि हाँ इसमें जो है आगे चला जा सकता है। यह खूबसूरत सा गाना आपकी रेडियो सेट पर, मालविका जी से ऐसे ही बातचीत चलती जाएगी। आप गाने सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए और ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो। मैं आपकी दोस्त चंद्रकला हूँ आपके साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: बारह बजकर के 31 मिनट हो गए हैं और आज हमारे साथ डॉक्टर मालविका बाजपेयी हैं और एक इंस्पायरिंग शख्सियत आपके लिए स्टूडियो में आई हैं और योग को उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस नहीं बनाया बल्कि ज़िंदगी जीने का माध्यम बनाया है, अपना करियर बनाया है और आज वो एक सफल मुकाम पर हैं। तो अगर उनके बारे में आगे बात की जाए तो डॉक्टर मालविका ने विशेष आवश्यकता वाले यानी कि स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए भी योग के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने पैरा योगासन के विकास के लिए योगासन स्पोर्ट्स के आर्टिफिशियल के प्रशिक्षण प्रदान किया है और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को योगासन का प्रशिक्षण दिया है, खेल जीवन और आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित किया है। योगासना बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल के माध्यम से डॉक्टर मालविका ने अब तक 3 लाख से अधिक लोगों को योग से जोड़ लिया है और योग के क्षेत्र में अनेक सफल विश्व कीर्तिमानों का आयोजन और स्थापना कर चुकी हैं। और डॉक्टर मालविका के प्रयासों से देश विदेश में योग को जनजीवन तक और आम लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, नई पहचान मिल रही है और आज ये किरदार हमारे सामने है, हमारे स्टूडियो में है और आप लोगों के बीच, आप लोगों के लिए है। तो अगला क्वेश्चन डॉक्टर मालविका ये है कि आप योग के फील्ड में एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है, लोग आपको बहुत जानते हैं, इस सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आपको किन त्यागों का, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? शुरुआती दिनों में ऐसे कौन से एक्सपीरियंस रहे आपके, ऐसी घटनाएँ कौन सी रही कि जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में घट कर आकर आपको एहसास दिलाया, महसूस करवाया कि आप जहाँ जा रहे हैं ना वही सही रास्ता है?
5: जब मैंने योगासन स्टार्ट किया था दैट टाइम तो ठीक है, जब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे योगा में एजुकेशन करनी है तो भी उनको एक्सेप्ट नहीं था जी। वो मुझे बहुत मनाना पड़ा जी। ऊपर से फिर बाहर जाके तो वो दूसरा एक और चैलेंज था
4: जी।
5: हाँ, वहाँ पे उनकी एक्सेप्टेंस मिली, थोड़ा सा टाइम बाद मिली लेकिन मिल गई। वो हमेशा, क्योंकि बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरे फादर
4: जी।
5: और दूसरी बात ये हुई कि जब मैंने योगा शुरू किया तब वहाँ पर ये था कि एज अ फीमेल जब मैं सोसाइटी में आई हूँ सिखाने या करने तो वहाँ पे ठीक था, एवरीथिंग वॉज ओके, कोई दिक्कत नहीं थी।

0: वहाँ तक तो सब सही चला, लेकिन जब से मैंने योगासन स्पोर्ट्स की तरफ मूव किया
1: जी
0: उस टाइम पे क्वेश्चन अराइज होने शुरू हो गए कि ये तो खेल नहीं है, यहाँ तो टाइम खराब कर रहे हो,
1: जी
0: और अब आप अपने टाइम को सोशल जो सर्विसेज में लगा रहे हो उसका कोई वैल्यू नहीं। मेरे खुद के जो फ्रेंड्स थे
1: जी
0: उन्होंने, जो मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जो आपके बहुत यार होते हैं, लाइक
1: बिल्कुल
0: लाइक ठीक है दोस्त होते हैं, तो मेरे दो दोस्त हैं उन्होंने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया उस समय, और मेरे अच्छे के लिए किया। उनको लगता था इसमें कोई फ्यूचर और कोई इसमें स्कोप नहीं है,
1: बिल्कुल
0: कि यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग, यू शुड गेट प्रिपेयर फॉर द PCS IAS, तुम्हें यह करना चाहिए, तुम टाइम खराब कर रहे हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। मैं उनसे बिल्कुल अलग चली गई।
1: जी
0: अब वहाँ पे जो चीज़ें आई, तो मैंने सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड्स को छोड़ा, और मैंने फ्रेंड्स को इसलिए छोड़ा, ऐसा नहीं कि मैंने उनको छोड़ दिया, मैंने इसलिए उनको छोड़ा क्योंकि जब मैं उनसे बात करती थी वो हमेशा डिमोटिवेट करते थे, मैंने ऐसा फील किया। और हमेशा हमें सही डिसीजन लेने चाहिए।
1: जी
0: आज भी वो दोनों दोस्त मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, बातें हमारी होती हैं।
1: अच्छा, वही मैं सोच रही थी, सॉरी
0: हाँ
1: बीच में रोक रही हूँ, ये
0: हाँ
1: कि आपने उनको हमेशा के लिए छोड़ दिया कि अब वापस ले लिया?
0: छोड़ दिया है मैंने, छोड़ दिया का मतलब अब वो मेरे दोस्त तो हैं,
1: अच्छा
0: बट क्योंकि जब योग में आप आते हो ना, आप डिटैच हो जाते हो,
1: अच्छा
0: अटैचमेंट से आप कम हो जाते हो। तो
1: अच्छा
0: आज
1: मतलब
0: भी
1: वो
0: जब हम मिलते
1: कांटेक्ट में
0: हैं,
1: है?
0: हाँ कांटेक्ट में, आज भी जब मिलते हैं तो बहुत ज़ोर से हम गले मिलते
1: जी
0: हैं, बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक कहते लगाव थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि उनकी तरफ से मेरे लिए गुस्सा है, सारी चीज़ें हैं। आज वो भी देखते तो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो छोड़ना ज़रूरी था, कि अगर मैं उनको पकड़ के बैठती, उनका ये था कि रात को अगर 12 बजे कॉल करें तो सारे दोस्त कॉल पे आएंगे 12-1 बजे,
1: जी
0: तो जो युवा पीढ़ी है ना हमारी, कहीं ना कहीं पर टाइम भी वेस्ट करती है। मुझे लगता था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, सुबह मुझे उठ के जल्दी अपनी चीज़ों में लगना है और काम करना है। फिर मैंने ये कंपेयर शुरू किया कि फ्रेंडशिप में मेरे जो 3-4 घंटे जा रहे हैं
1: जी
0: वो अगर मैं अपने काम को दे दूंगी तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर मैं वो नहीं देती तो मैं अपनी चीज़ों में बहुत स्लो होती। और मैंने उनको बता दिया कि देखो मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगी आपका, ऐसी ऐसी बात है, अब मैं अपने काम कर रही हूँ, मैं बिजी हूँ।
1: जी
0: ताने मारने शुरू कर दिए कि नहीं तू तो ऐसे करती है, भी ठीक है, इट्स ऑल राइट। देखिए दोस्त रहेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे, जो आपके असली दोस्त हैं वो आपको कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे।
1: जी
0: देन उसके बाद जो सोसाइटी में ये चीज़ मिली कि हमें बाकी लोगों ने बोलना शुरू किया, बाकी स्पोर्ट्स ने मुझे, कि ये कोई खेल नहीं है। 2019 में ये दौर भी आया कि जब योगासन स्पोर्ट्स को मान्यता मिली,
1: जी
0: और वो बहुत ही बड़ी जीत थी हम सभी के लिए। नेशनल गेम्स में लखनऊ से मैं उत्तर प्रदेश की तीनों टाइम 36, 37, 38 नेशनल गेम्स में मैं कोच रही हूँ।
1: जी
0: पहली बार हम बिना मेडल के लौटे,
1: जी
0: दूसरी बार हम गोल्ड मेडल लेके लौटे, और तीसरी बार हमने ट्रॉफी ली और सर्वाधिक मेडल लिए
1: जी
0: किसी भी खेल में यूपी के लिए,
1: जी
0: तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी। और आज लखनऊ से ही अभी रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट रूप किशोर यादव, एट द एज ऑफ 47, BSF का जवान है वो,
1: जी
0: उसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड जीता है।
1: क्या बात है, इससे बड़ी और अचीवमेंट क्या हो सकती है?
0: यस
1: जी
0: तो जब हमने स्टार्ट किया था 2017-18 से, वो पेड़ वहां से लगा था,
1: जी
0: और अब ये लगता है कि अब ये चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, आगे जा रही है। एशियन गेम्स में बच्चे मेडल लेकर आए,
1: जी
0: यूपी में 4 स्टूडेंट हैं हमारे जो आगे जा करके इंडिया के लिए मेडल जीत कर लाए हैं, और इवन लोगों को जॉब भी मिल रही है, सपोर्ट भी मिल रहा है, तो एक जो सपना देखा था वो साकार हुआ।
1: बिल्कुल, ये मेरा आपसे एक सवाल भी मैंने रखा था अपने पास कि योग और ये जो जिस क्षेत्र में आपने इतनी उपलब्धियां पाई हैं और आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, आपके स्टूडेंट्स इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गए हैं, तो मतलब उसके समय मैंने ये क्वेश्चन था कि हर सफल महिला की यात्रा में चुनौतियां होती हैं, आपके जीवन में भी बहुत सारे संघर्ष रहे होंगे और जो आपने पाया उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ा होगा, आगे बढ़ना होगा, इस तरीके के पर बहुत सारे सवाल हमारे क्लियर हो गए हैं वैसे तो, जो मैं पूछने वाली थी, और भी हमारे सारे क्वेश्चंस हैं और भी बातें हैं आपसे जो करनी है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एक छोटा सा ब्रेक लें, छोटा सा एक खूबसूरत सा गाना सुनें और उसको सुनने के बाद तुरंत वापस आते हैं और उन सवालों को फिर आपसे पूछते हैं।

0: बारह बजकर के 41 मिनट हो गए हैं और प्रोग्राम स्वयं सिद्धा शत्रुपा का सेगमेंट है। उसमें आज डॉक्टर मालविका हमारे साथ हैं और जिस मुकाम तक ये पहुंची है वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत डिसिप्लिन लगता है। योग के क्षेत्र में मालविका जी के कार्यों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही पहचान मिली है। योग और खेलों के क्षेत्र में उनका जो उत्कृष्ट योगदान है उसके लिए उन्हें राज्यपाल सम्मान, योग रत्न सम्मान, योग एक्सीलेंस अवार्ड, इंटरनेशनल गौरव अवार्ड, मानद डॉक्टरेट सहित कई सारे नेशनल इंटरनेशनल सम्मान मिले हैं। डॉक्टर मालविका वाजपेयी का जीवन योग, स्वास्थ्य, अनुशासन, खेल, उत्कृष्टता और सेवा का प्रेरणादायी एग्जाम्पल है। निरंतर योग को जन जन तक पहुंचाने, योगासन स्पोर्ट्स को नई ऊंचाइयों तक ले जाने और समाज के प्रत्येक वर्ग को स्वस्थ, जागरूक, सशक्त बनाने के लिए समर्पित भाव से वो काम कर रही हैं। अच्छा डॉक्टर मालविका, आपसे सवाल है कि जब आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिले, जब आपको बड़े बड़े मंचों पर सम्मानित किया गया तो आपके मन में क्या विचार आए उस समय? आपको अपनी मेहनत याद आई या आपने क्या सोचा? और इसके अलावा आपकी उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है वैसे तो, लेकिन आप हमें बताइए कि कौन सी ऐसी उपलब्धि है इनमें से जो आपके दिल के सबसे करीब है, जिसे आप सबसे खास मानती हैं?
1: देखिए, जब आपके काम को पहचान मिलती है तो एक सुकून मिलता है कि हाँ, जो मैंने किया है उसको एक पहचान मिली है। लेकिन हाँ, उसके साथ ही ये था कि यहाँ पे रुकना नहीं है और इसके आगे बहुत जाना है। जैसे मान लीजिए आपकी मैंने बुक बनाई, उसके साथ में उसके जो उसके अचीवमेंट्स हैं इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में जब आए तो वो मेरे लिए बड़ा दिन था। बट उसके साथ ये लगा कि नहीं, अभी तो न्यूयॉर्क टाइम्स में आना है, अभी कहीं और आना है। या आप सोचिए कि मैं समटाइम्स वर्ल्ड का मैप देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी शायद मैं इधर भी ग्रो कर सकती हूँ, यहाँ भी कर सकती हूँ। तो मेंटल लेवल पर ये क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ या ऑटोमेटिकली होता है कि अभी शायद मैं अभी कहीं

0: नहीं पहुंची हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते,
1: जी
0: और इच्छा ये नहीं है कि वो मुझे जाने। हाँ, इच्छा ये है कि मैं जो काम करूँ वो
1: जी
0: ग्लोबली कनेक्ट होकर के करूँ और आगे बढ़ती रहूँ, और वो पहचान मिलती रहे,
1: जी
0: वो रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि
1: जी
0: अगर मैं उसके लिए होकर बैठ जाऊँगी तो फिर वो हो जाएगी।
1: बिल्कुल
0: और जब मेरे स्टूडेंट्स को रिकॉग्निशन मिलती है या अवार्ड्स मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो आंखों में आंसू आते हैं, उसकी प्रैक्टिस याद आती है, उसकी मेहनत याद आती है, और कभी कभी तो ये लगता है कि वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा होता है
1: जी
0: कि बच्चा है नेशनल मेडल में मेडल लेकर आया, तो ये समझ में आता है कि भाई इतने सारे स्टेट से फाइट करके मेडल लेकर आना बहुत मुश्किल है। आप योग में ये मानिए कि इंटरनेशनल मेडल उठाना उतना मुश्किल नहीं है जितना नेशनल मेडल उठाना है।
1: जी
0: नेशनल हमारे यहाँ योग क्योंकि हमारे यहाँ जन्मा है,
1: जी
0: और बाकी स्टेट्स में ही लड़ना ना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके आगे तो आप फिर अपनी जर्नी ईजी कर लोगे,
1: जी
0: मगर इंटरनेशनली से ज़्यादा मुश्किल आपका नेशनल है।
1: अच्छा
0: और वहाँ पर जब आप पहुँचते हो और बच्चे की मेहनत देखते हो और डेडिकेशन अनुशासन अपने आप आ जाता है, क्योंकि आप वही चीज़ हम अपने स्टूडेंट से ही पास ऑन कर रहे हैं
1: जी
0: और हम नहीं कर रहे हैं, वो योग कर रहा है।
1: जी तो मतलब मुझे ये समझ आया कि जितनी भी अचीवमेंट्स आपकी हैं उनमें सबसे ज़्यादा गर्व आपको तब होता है जब आपके सिखाए हुए स्टूडेंट्स कहीं पर मेडल ले रहे होते हैं। सबसे
0: यस
1: भावुक करने वाला, सबसे प्राउड वाला मोमेंट वो होता है। बिल्कुल, बेशक ही होगा ही, और इतनी खुशी की बात और इतनी ज़रूरी बात, इतना गर्व का पल होगा, बेशक होगा, हम सब समझ सकते हैं। ये वाकई में बहुत ही इंस्पायरिंग है, और सोचने वाली बात यह है कि आपने अपने से दोगुनी उम्र के लोगों को भी उस मुकाम तक पहुंचते देखा है, आपके स्टूडेंट्स रहे हैं। और इसी बात के साथ और इसी खुशी में, खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर मालविका जी की ही पसंद का हम पहुंचाते हैं। आप इसे सुनिए, तुरंत वापस आते हैं और बात करते हैं, और कि क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी है, जो हमारी भी यात्रा में, हमारी भी जर्नी में हमें समझ आएंगी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: 12:49 हो गए हैं और इतने इंटरेस्टिंग सेगमेंट में और इतने खूबसूरत इंटरव्यू में समय का कुछ पता ही नहीं चल रहा, समय आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन मालविका जी से ये पूछते हैं कि मालविका जी, योग और योगासन स्पोर्ट्स में क्या अंतर है? और उसके साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि खेलों में जो चोट लग जाती है बॉडी में, कई बार बहुत डैमेज भी होता है, टिश्यू डैमेज होता है, उससे उबरने में योग कितना इफेक्टिव है?
1: देखिए, जब आप योग की बात करते हैं तो योग इज़ अ ह्यूज वर्ड, आपस में अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। भारतीय षट दर्शन का
0: जी
1: एक अंग है और योग वेद और उपनिषदों से आया है और बहुत ही प्रिमिटिव है। सो योग में हमारा एक तो आपका जो है पूरा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अगर आप सोचेंगे ये 8 अंग हैं, तो इसमें जो हमारा डेली रूटीन से लेकर के ऋतुचर्या दिनचर्या
0: जी
1: और सांस लेने का तरीका, साथ में हमारा जो कंट्रोल हमारे ओवर द सेंसरी होता है और धारणा समाधि मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। इनफैक्ट इसी के साथ में हमारा आयुर्वेद भी आता है, क्योंकि योग और आयुर्वेदा हमेशा साथ साथ चलते हैं।
0: जी
1: तो ये तो हमारा हो गया योग। लेकिन जब हम योग आसन खेल की बात करते हैं तो हम इसमें योग का जो तीसरा अंग है जो है आसन, उसको लेकर चलते हैं। पातंजलि महर्षि जी के अनुसार स्थिरम सुखम आसनम, उन्होंने बताई है इसकी डेफिनेशन, कि जब किसी स्थिति में या मुद्रा में जब हम सुखपूर्वक बैठते हैं तो ये आसन है। अब आप इसी से डिफाइन कर लीजिए कि योगासन में जो क्लिष्ट मुद्राएं होती हैं या जो टफ आसन होते हैं या ऐसे आसन जो हमारी बॉडी के अलाइनमेंट को बहुत अच्छे से शार्पली उसको दिखाएं, तो योग हमेशा मैक्सिमम आप देखेंगे तो ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट बेस होता है, जिसमें कि एक आसन जब हम बनाते हैं तो उसमें हमारी जो स्टेबिलिटी है
0: जी
1: वो कैसी है और उसका अलाइनमेंट कैसा है, और उस आसन को लगाने के बाद में हम स्थिरम सुखम हैं या नहीं है, कि हमारी स्थिति स्थिर है और सुखपूर्वक है कि नहीं, ये तो यही चीज़ योगासन स्पोर्ट्स को के लिए मैटर करती है। योगासन स्पोर्ट्स में 5 टाइप ऑफ इवेंट होते हैं, जिसमें कि आपका ट्रेडिशनल इवेंट, जो जिस ट्रेडिशनल इवेंट में जो बेसिकली हम जो आसन लगाते हैं जिन आसनों को हम दैनिक रूप में देखते हैं वो आसन है। इसी आसनों को करते हुए आर्टिस्टिक सिंगल, रिदमिक पेयर, आर्टिस्टिक पेयर और आर्टिस्टिक ग्रुप, तो इसमें ये नृत्य के साथ में जो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल नृत्य हैं लाइक भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी कथक, तो इनके साथ में हम कैसे सामंजस्य, सपोज करिए कि आपने एक आसन लगाया और आप डांस करते हुए आए और फिर आपने दूसरा आसन अटेम्प्ट किया
0: जी।
1: आपका माइंड और बॉडी तो म्यूजिक में है
0: जी,
1: बट आपको स्थिर और सुख भी और सुखम भी होना है, और उसके साथ तुरंत इंस्टेंटली आपको मुद्रा चेंज करनी, देन उस मुद्रा को 5 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, तो इट्स अ काइंड ऑफ, आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार यूट्यूब पे आर्टिस्टिक योगा ज़रूर सर्च करना
0: जी,
1: तो आपको इसका मतलब पता चलेगा। और इसी तरीके से हमारा योगासन स्पोर्ट्स है, और योगासन स्पोर्ट्स करने के लिए भी पहले आपको योग से ही शुरू करना पड़ेगा, जिसका पहला जो हमारा सूत्र है अति योग अनुशासनम, वहीं से।
0: दूसरा जो आपसे ये था कि खेलों में जो चोटें लग जाती हैं उसकी रिकवरी में योगा हेल्प करता है और कितना इफेक्टिव होता है?
1: खेलों में जो हमें चोटें लगती हैं बेसिकली उसमें स्प्रेन, स्ट्रेन और मल्टी लिगामेंट टियर और फ्रैक्चर्स एक्सेट्रा होते हैं, तो उनकी रिकवरी करने में, रिहैप करने में हेल्प करता है, और रिहैप थोड़ा सा जल्दी करेगा तुलना में बाकी चीज़ों के। वैसे तो राइस थेरेपी और सारी चीज़ें होती हैं, बट अगर हम बात करेंगे खेल की, तो सबसे पहले तो योग हमें चोट लगने से ही बचाएगा। जो खिलाड़ी योग कर रहा है उसको इजीली चोटें नहीं लगेंगी, और उसी के साथ में अगर आपको चोटें लग चुकी हैं तो उनकी रिकवरी में, सपोज करिए जैसे मुझे ही जो इंजरी आई थी वो इट्स अ काइंड ऑफ ऑल्सो आपकी बैक में प्रॉब्लम थी, बट वो स्पोर्ट्स इंजरी का ही पार्ट था, जिसमें कि हम आमतौर पे देखते हैं कि कोई कई खिलाड़ी फील्ड पे खेल रहे हैं उन्हें स्ट्रेच आ गया, स्ट्रेन आ गया,

0: तो उनको हम थोड़ा जल्दी रिकवर कर सकते हैं और पूरी तरीके से गायब कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 4 महीने बाद वो पेन फिर से आएगा। तो
1: अच्छा
0: योगा में जो है वो स्टेबल है, क्योंकि हमने बॉडी के पूरे मैकेनिज्म पे काम किया। एक मैकेनिज्म जो आपकी बॉडी का है, जिसको हम बायो मैकेनिक्स कहते हैं,
1: जी
0: उसके थ्रू जब उस पर काम होता है तो एक वर्क आपका एक डीप लेवल पे होता है और आपके टिश्यूज़ को जल्दी रिकवर करने में हेल्प करता है, मसल की रिकवरी जल्दी करता है। और योग के साथ में जब प्राणायाम किया जाता है तो प्राणायाम हमें मानसिक तौर पे भी स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है।
1: बिल्कुल। और इसी के साथ अभी एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं लगातार, कि आप इतने लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं और आज हमारे प्रोग्राम में आकर कई महिला श्रोताओं को आप इंस्पायर कर रही हैं, कई सारे महिला पुरुष जो भी हमें सुन रहे हैं श्रोता इस समय, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा खास महिलाओं के लिए है। तो क्वेश्चन आपसे लिए आपसे ये है कि आपके हिसाब से किसी भी महिला की वास्तविक पावर क्या होती है, उसकी ताकत क्या होती है? और दूसरी, उसी के साथ ये भी हम जानना चाहेंगे कि आज की युवा महिलाएं, बेटियां, आपका संदेश सुनना चाहेंगे कि आप क्या बताना चाहेंगे उनको जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं लेकिन परिस्थितियों से घबराती हैं।
0: एक महिला अपने आप में दुर्गा का रूप होती है,
1: जी
0: उसमें 9 देवियों के जो गुण हैं वो विद्यमान हैं,
1: जी
0: जिसमें कि उसके अंदर ममता भी है, त्याग भी है,
1: जी
0: सेवा सत्कार भी है और प्रेम भी है, साथ में आत्मविश्वास भी है। और वो समय आने पे वो पार्वती जी का भी रूप ले सकती है और ज़रूरत पड़ने पे काली भी बन सकती है।
1: जी
0: अगर मैं बोलूँ तो उस लिहाज से जिस तरह से मैंने आपको ग्रो किया, अपने आप को ग्रो किया, तो उसमें जो एक मेन रोल था वो मेरे आत्मविश्वास का था और एक ही फील्ड को चुनकर उसके साथ लग जाने का था। हमारी लगन सच्ची होनी चाहिए, हमारी निष्ठा सच्ची होनी चाहिए और हमें अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए और हमें काम वो करना चाहिए जिस काम में हम कॉन्फिडेंट हैं या हमें ऐसा लगता है कि इसमें हम अपने करियर को भी बना सकेंगे। साथ ही अगर आप आत्मविश्वासी हैं तो आपको सशक्त करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में बहुत ही सशक्त हैं। और मेरा मैसेज ये रहेगा कि आप सभी अपने आप को पहचानिए और सबसे पहले ध्यान दीजिए अपने स्वयं के स्वास्थ्य पर, क्योंकि जो हमारी भारतीय महिलाएं हैं जो इग्नोर करती हैं, वो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करती हैं। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को अच्छे से रखिए, क्योंकि बेसिकली मैंने देखा है जो यंग गर्ल्स हैं उनमें पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वो भी रीज़न है उनकी लाइफस्टाइल। और
1: अच्छा,
0: लाइफस्टाइल क्यों है?
1: इस बारे में भी आप बहुत शॉर्ट में, क्योंकि समय कम है, इस बारे में भी आप हमें बता दीजिए कि जो यंग गर्ल्स हैं इनमें जो पीसीओडी पीसीओएस है, ये सब योगा से क्योरेबल है क्या? क्या लड़कियां योग की तरफ लौटें तो क्या उनको फायदा इससे होगा?
0: देखिए, जो ह्यूमन बॉडी बनी है ना, तो बेसिकली पहले लड़कियों की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी, आफ्टर 20 शादी हो जाती है, 20 तक। बट अभी क्या है, गर्ल्स 30 के बाद शादी करते हैं।
1: जी
0: तो उसमें क्या है, जो हमारे एक वॉम्ब है ना, वो एक बच्चे को कैरी करने के लिए बना है। अब वहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, सो दैट आपकी मसल्स एट द टाइम धीरे धीरे धीरे धीरे लूज होती जाती हैं, और जब हम एक्टिविटी नहीं करते हैं तो वो फिर ख़राब होने लगता है। और सिस्टम हमारा क्यों बिगड़ता है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है। पहले महिलाएं बाहर काम नहीं करती थी, आज की महिलाएं बाहर काम कर रही हैं, और उसकी वजह से जो हमारा लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से चेंज हुआ है और बॉडी ने बॉडी क्लॉक चेंज करी है। तो अगर उसको मेंटेन करेंगे तो पीसीओडी पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और योग अभ्यास में अगर हम सेतुबंधासन, भद्रासन, गोमुखासन इनका अभ्यास करेंगे तो आपको इससे जल्दी प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। साथ ही आपकी जितनी भी कमर खोलने वाली एक्सरसाइजेस हैं, जो कि आपने पेल्विक एरिया को जो कि स्ट्रेच करे, साथ में चक्की चालासन, तो ये प्रॉब्लम 100% ख़त्म हो जाती है और ख़त्म भी हुई है।
1: और क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और देखिए 12 से 1 बजने को है, और हमने इतनी अच्छी चर्चा की, इतनी हेल्दी चर्चा थी, आपकी इंस्पायरिंग जर्नी लोगों के साथ साझा की, अंत में आपसे यही कहूंगी कि बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो आने के लिए। और हमारे लाखों श्रोताओं ने आपको सुना है किसी न किसी माध्यम से, किसी ने इंटरनेट पे सुना होगा आपको ऑनलाइन, और किसी ने ऐप के माध्यम से, किसी ने FM या रेडियो पर सुना होगा। तो इसी के साथ आपको धन्यवाद कहते हैं, और बस जाते जाते एक छोटा सा संदेश आप देते जाइए डॉक्टर मालविका।
0: हम सभी अपने हेल्थ का ध्यान रखें,
1: जी
0: इसके साथ ही अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी आँखों का खास ख्याल रखें। गर्मी बहुत हो चुकी है, पानी प्रॉपर पीते रहें, और रात में सोने से पहले थोड़ा सा एक गीला कपड़ा आप ठंडे पानी में रख के उसको अपनी आँखों के ऊपर रखें फॉर 2 मिनट्स। तो इससे आपकी आँखों का टेम्परेचर रिलीज होगा, जिससे सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मालविका।

0: हमारे स्टूडियो आने के लिए, हमारे श्रोताओं से मिलने के लिए। फिर आपसे कभी और बात होगी, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे एफएम परिवार की तरफ से आपके लिए हैं कि आप यूं ही निरंतर प्रगति करते रहें और ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित भी करते रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए प्रेरणा बनते रहें।
1: धन्यवाद चंद्रकला जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर मालविका।

हमारे साथ डॉक्टर मालविका बाजपेयी, और अभी तक आप जो ये पूरी वार्ता सुन रहे थे, ये हमने आज स्वयं सिद्धा में खास डॉक्टर मालविका को बुलाया था, इनसे बातचीत थी, और इसके बाद न्यूज ब्रेक के उस पार अगला प्रोग्राम होठों पे तेरी बात शुरू होगा। तब तक आप ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे FM रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है FM 100.4 MHz पर।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, न्यूज ऑन AIR ऐप और FM 104.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अनुरोध गीत।

अनुरोध गीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप तैयार हो जाइए पूरे एक घंटे के इस कार्यक्रम में धुआंधार गीत सुनने के लिए। जी हाँ, आपके अनुरोध भरे पत्र हमें मिल चुके हैं और हम भी शुरू करने वाले हैं आज के अनुरोध गीत कार्यक्रम का यह सिलसिला। तो आप बने रहिए हमारे साथ, यानी कि FM 100.4 MHz और न्यूज ऑन AIR पर सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली से अनुरोध गीत कार्यक्रम का आगाज करते हैं। फिल्म का नाम है हलचल, आवाजें हैं विनोद राठौर, अलका याग्निक और साथियों की, और इस गीत को पसंद किया है जिन सब दोस्तों ने, वो आप सब हैं। आप हैं कस्बा बिलसी मोहल्ला नंबर 5 से रहमान अलवी, अनोखी बेगम, फिरासत अलवी, गुलशन बेगम अलवी, जानवी अलवी, हानिया, निजाकत अलवी, शाहीन बेगम, आहिल बाबू और आदिल अलवी। इसी गाने में शामिल करते हैं लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निमी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और इनके सभी साथी। और आप हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश, ऋषि वर्मा और इनके सभी साथी, प्रेमलागंज आलोट से। हमें यह पत्र मिला है कश्वशीषगढ़ बरेली से, आप हैं इलियास इदरीसी, नाजरा, नईम, नदीम इदरीसी और इनके तमाम साथी। तो आइए सुनते हैं फिल्म हलचल से ये ट्रैक।

यह आकाशवाणी बरेली एफएम 104.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन EIR पर आप इस समय अनुरोध गीत सुन रहे हैं। अगला गाना फिल्म उस्ताद से आपको सुनवाते हैं अनुराधा पटवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजें, हिंदी भर के बोल अनु मलिक का म्यूजिक डायरेक्टर। और सुनना चाहते हैं आप सब मोरी गेट दिल्ली शहर से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और उनके सभी साथी, शंकरपुर उसावा बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र आनंद, सनोज यादव, अमन सोनी, अंकिता, विनीता यादव, अनीता, सुनीता, सूरत श्री, गुनगुन यादव और इनका पूरा यादव परिवार, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज ज्योति, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा हैं। और आप हैं असपुरा जिला मऊ से मदर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवान परवीन और अब्दुल्ला आजाद। तो आप सबके नाम फिल्म उस्ताद से ये ट्रैक।

तो हंसनी चल दे तो हंसनी रे बोले तो भी ना चल दे तो

अरे रोज की आप आकाशवाणी बरेली FM 100.4 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुन रहे हैं। अब अगला गीत बंजारन फिल्म से है, सुरेश वाडिकर और अलका याग्निक की आवाजें हैं इस गीत में। सुनना चाहते हैं मौला हलवायान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर और इनके सभी साथी। फूलबाग किला छावनी बरेली से शोभित श्रीवास्तव, संजीव श्रीवास्तव, राजीव राज, नितिन श्रीवास्तव, रानी सोमवती, रोहन श्रीवास्तव और गरीब भाई। और आप हैं कौन हैं? आप हैं विनोद, रीता देवी, नीलम देवी, सोनू, कनिष्क और अन्ना, इनके घर के सभी लोग। आपने ये पत्र हमें भेजा है गुलाब नगर बरेली से। और चंडीगढ़ से सतीश अनिजा, बिमला अनिजा, पटेल नगर मलूट, पंजाब से रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरजू जाजौरिया और इनका पूरा जाजौरिया परिवार, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हैं, कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, विद्राम मौर्य, कैलाश, सुनील मौर्य, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। आप सबके नाम बंजारन फिल्म से ये ट्रैक

0: आकाशवाणी बरेली से आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप अनुरोध गीत। लीजिए अब सुनिए फिल्म होगी प्यार की जीत से ये ट्रैक। आवाज उदित नारायण की है, समीर के बोलों को संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने। और आप सब दोस्त सुनना चाहते हैं इस ट्रैक के लिए, हमारे ये साथी हैं।
1: कर लो मेरा एतबार यारो।
0: जी हाँ दोस्तों, एतबार तो आप भी कर सकते हैं हमारा, जितने भी पत्र मिले हैं सभी पत्र शामिल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके इस नाम भरे पत्र से। कृष्णा नगर टीवी टावर सेमिनिस हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दिवे, रमताई सीमताई रीमा दीक्षाताई राहुल डोंगर दिवे और इनके सभी साथी होगी प्यार की जीत फिल्म के ये गीत सुनना चाहते हैं। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम अकरम और अल्ताफ अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से आसमा खातून, राजेश डी अंसारी, मेहताब आफ्ताब और मेहराज अंसारी। ये पत्र हमें मिला है कछवा शेरगढ़ ग्राम ठांडा से मोहम्मद उमर इदरीसी, परवीन नेहा, निदा शना आलिया, मोहम्मद हासिम, मोहम्मद कमर, इम्तियाज इदरीसी और इनके सभी साथी हैं। और शामिल करते हैं आप सब दोस्तों को भी, परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा इल्मा खान और इनका पूरा परिवार। और हमारे ये जो साथी हैं वो मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी साथी। सरोज चौक अमरावती से कमरोला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, मुज्तावा खान, रऊफ और शहीद भाई।

हैं गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और इनके सभी साथी, दौलत मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी और इनके तमाम साथी, आप सबके नाम होगी प्यार की जीत फिल्म से।

दिस इज 100.4 FM आकाशवाणी बरेली, और आप इस समय सुन रहे हैं अनुरोध गीत। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है बरसात, और इस गीत को गाया है कुमार सानू अलका याग्निक ने, समीर के बोल है नदीम श्रवण ने, म्यूजिक डायरेक्शन किया है और पसंद किया है यादव मोहल्ला सनावत से। आप हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, और शामिल करते हैं आप सभी दोस्तों को, जैसे कि आपका भी पत्र मिला हमारे कौन साथी जिनके पत्र हैं, एक नहीं दो नहीं कई सारे पत्र हैं। बड़ा बाम्बो गांव सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेंद्र भी, ये पत्र हमें सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से भेजा है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत रॉय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बेटा बजाज और साहिल, और कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कलंग गाजीपुर से

अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय इसी गाने में शामिल करते हैं। पीर बहुड़ा बरेली से आज़ाद खान, दिलशाद मुस्तकीम तबस्सुम, मुल्ला तलैया उल्ला जागीर से फजरुद्दीन भाई, अबरार भाई अफजाल और इनके सभी साथी। और ये जो पत्र है वो हमें मिला है एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। कोई और साथी तो ना दिख रहे हैं आपके इस पत्र में। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आप सबके नाम कर रहे हैं फिल्म बरसात से ये ट्रैक।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अनुरोध गीत में आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में फिल्म जुदाई का ये गाना। और फरमाइश करने वाले आप सभी दोस्त हैं, आप हैं छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर, अजीत नगर मलोट पंजाब से। और इसी गाने में शामिल करते हैं डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, समर राज, आर्यन, आरोही, इशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा और इनका पूरा वर्मा परिवार, ग्राम बहरामपुर टेना खरगोन मध्य प्रदेश से। और आप हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान, करोला मुरादाबाद से, सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी और इनके तमाम हमनवा हैं। और ये पत्र हमें महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के, उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े और इनके सभी साथी हैं। बरेली जंक्शन से सोनू मिश्रा, वीरेश सिंह चौहान, राजू और अंकित चौहान का ये पत्र हमें मिला है। तो आप सबके नाम फिल्म जुदाई से ये गाना।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, हमें भी याद है। ये जो गीत है अनुरोध फिल्म से है और किशोर कुमार साहब की आवाज है, मगर जिन्होंने सुना चाहा है उनका पत्र हमें याद है। तो चलिए आप सबके नाम करते हैं अनुरोध फिल्म से। ये अनुरोध गीत कार्यक्रम में गाना सुनना चाहते हैं महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के और इनके सभी साथी। और आप हैं अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुचि देशा और लवी श्रीवास्तव। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता आदित्य और कृष्ण श्रीवास्तव। ये पत्र औरंगाबाद से भेजा है हमें राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजेश, राजदीप और राशि ने। आप हैं अलीगंज रोड ग्राम महेलिया से हसरत खां, हशमत खां, अजमत खां, डालमिया, नसरीन और रईस बानो। हमारे ये साथी हैं डोंगरगांव, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। राष्ट्रपाल गज भी है, राधिका गज भी है, बेबी अनिष्का और तन्मय गज भी है। और शामिल करते हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, समरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। आप सबके नाम फिल्म अनुरोध से अनुरोध गीत कार्यक्रम में ये गाना।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, अनुरोध गीत में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म तहकीकात से, अलका याग्निक।

और अभिजीत की आवाजें, फैज अनवर के बोल, अनु मलिक का म्यूजिक डायरेक्शन, और इस गीत को पसंद किया है आप सबने। हमारे ये जो साथी हैं वो नखासा रोड उसैद बदायूं से हैं, डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना, करमीर कोटवाल, प्रवीण रावत, अनिल नागर, सागर बख्शी, भारत यादव और इनके तमाम हमनवा हैं। इसी गाने में शामिल करते हैं आप सबको। आप हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ, वैष्णव कॉलोनी, सनावज, मध्य प्रदेश से। तो आइए सुनते हैं आप सबके नाम फिल्म तहकीकात से ये गीत।

पंछी से ये गीत और फरमाइश करने वाले आप सब साथी हैं। आप हैं कासम कॉलोनी सनाबत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, द्रीश खत्री, नूर मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना। हमारे ये साथी हैं कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरुशब्द सिंह राहुल और इनके सभी साथी। तो आप सबके नाम करते हैं फिल्म प्यासे पंछी से ये गीत मुकेश जी की आवाज है।

0: और अब दोस्तों आज के अनुरोध गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म का नाम एक श्रीमान एक श्रीमती, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है और इस गीत को पसंद करते हैं आप सब दोस्त।
1: बैठे खाए पिए किसके तो आए बैठे खाए।
0: अक्षय कॉलोनी गोंदूर रोड धुलिया महाराष्ट्र से हमारे ये श्रोता हैं मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन और अर्पिता, और इसी गीत में शामिल करते हैं आप सभी दोस्तों को। आप हैं कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोने, योगिता, प्रियली, पार्थ हागोने, परिवार के सभी साथी, और बड़ीखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार, आप सबके नाम एक श्रीमान एक श्रीमती से ये गीत।

0: किसके
1: और अब इसी के साथ दोस्तों आज के

0: ये अच्छी सूरत वाले यार किसके, हाँ किसके।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से न्यूज ऑन AIR ऐप और FM 100.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं रस रंग।

रस रंग के आरंभ में आइए सुनते हैं ये कव्वाली। आवाजें हैं शंकर शंभू कव्वाल और साथियों की।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रसरंग। श्रोताओं, आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आज का विषय है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अभिशाप नशाखोरी, जिसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे 2:30 पर और प्रसारण का समय रहेगा शाम 4:00। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 0581-251-7200 पर। हमें आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा। और आइए अब सुनते हैं अनीता के स्वर में ये लोकगीत।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: शुद्ध 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं रसरंग। और अब से कुछ ही देर में यानी 2:30 पर हम रिकॉर्डिंग करेंगे आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और हमारा आज का टॉपिक है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अभिशाप नशाखोरी। आप हमें फोन कर सकते हैं 0581-251-7200 पर, या हमारे आकाशवाणी के फेसबुक पेज पर भी आप अपने विचार साझा कर सकते हैं।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, ये सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में ये गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रसरंग, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है सऊदी शिमला 4 FM पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

राजा मेहदी अली खां के बोल थे, मदन मोहन की तर्ज थी और उन्हीं की आवाज साथ में लता मंगेशकर की आवाज, वो कौन थी फिल्म के गाने का ये एक विशेष संस्करण था। इससे पहले कोहरा फिल्म का गीत आपने सुना,

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गोदान फिल्म का गाना था। अनजान की बोल थी संगीत पंडित रविशंकर का था। इसी के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका।

0: पहली जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों नमस्कार। इंतजार ऐसी खामोश कविता होती है जिसे हर दिल हर पल बिना शब्दों के लिखता रहता है। ये वो दीप होता है जो विरह की रातों में आशा की लौ जलाए रहता है। इंतजार वो फूल है जो खिलने से पहले ही खुशबू का एहसास कराता है। किसी अपने की राह देखता हुआ मन मानो समय की दहलीज पर उम्मीदों के दीप सजाकर बैठा रहता है। इंतजार वो एहसास होता है जहाँ मिलने की खुशी से पहले यादों की महक दिल के आंगन को महका देती है। चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए हम सभी को झमाझम बारिश का इंतजार है, तो फिलहाल मुझे इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। देखते हैं किन किन सहेलियों से आज बातें होगी। और हमारा इंतजार हुआ खत्म और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमारी?
1: शीला सहनी, दिल्ली से।
0: शीला जी, क्या हाल चाल है? हाँ, शीला जी
1: अपना सही है, आप बताओ अपना हाल चाल।
0: जी हमारे भी हाल चाल बहुत अच्छे हैं। बताइए आप क्या करती हैं?
1: जूते लन का काम यहाँ होता है दिल्ली में, वही सब कर रही हूँ ऐसे फैक्ट्री में।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप व्यस्त रहती हैं, काम करती रहती हैं। मुझे एक बात बताइए, दिल्ली के क्या हाल चाल है?
1: दिल्ली में तो अभी थोड़ा गर्मी है और बाकी सब तो वैसे मौसम के हिसाब से चलते ही रहता।
0: गर्मी से तो सभी परेशान हैं, पर मुझे एक बात बताइए कि गर्मी से राहत के लिए आप कौन से उपाय करती हैं? किस तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिससे गर्मी कम लगे?
1: गर्मी के लिए क्या करेंगे, अपना सेहत पे ध्यान रखे हैं, धूप ऊप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें खूब पानी पीना है और बाहर निकलते वक्त छाता लेके
1: पी लो, ठंडा पी लो, जिसका होता है लस्सी पी लेते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मैम नीलकमल फिल्म का कोई सा सुना दीजिए।
0: सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: मैं निशा पाठक एयरपोर्ट रोड इंदौर से लगाया है।
0: निशा जी, क्या हाल चाल है
1: हाँ
0: आपके?
1: जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। बस ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बहुत बहुत बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, ये
0: क्या बात है, शुक्रिया
1: भारती की खास तौर पर।
0: जी।
1: और मैं सालों से, आप समझ लीजिए, बचपन से विविध भारती सुनती चली आ रही हूँ और हेलो सहेली भी हमेशा सुनती हूँ। सखी सहेली तो फेवरेट है ही मेरा
0: अच्छा जी, निशा जी, आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ
0: यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: जी। हाँ, ये समझ लीजिए कि रिटायरशिप में कर रही हूँ अब
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। हाल ही में हम
1: जी।
0: सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो क्या आप
1: जी
0: योगा करती हैं? योग से जुड़ी
1: जी
0: हुई हैं?
1: हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं करीब 2010 से मैंने योगा को अपनाया है और मुझे उस योगा से बहुत बहुत फायदा मिला है।
0: किस तरह से फायदा है वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मुझे कमर में तकलीफ हो गई थी और मुझे थोड़ा वो भी है, ब्लॉकेज में भी थोड़ी है दिक्कत, तो उस वजह से फिर मैंने प्राणायाम भी शुरू करा और तीन चार आसन जो मेरे कमर से और स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित हैं वो आसन भी मैं करती हूँ। तो उन सब आसन और प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ मिला, तो मेरी दवाइयाँ करीब करीब आप जो चल रही थी सिर्फ वो ही चल रही हैं, उसके आगे नहीं बढ़ी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं, साथ साथ अपना भी ध्यान रख रही हैं और पूरे परिवार
1: जी
0: के साथ
1: हाँ,
0: खुशहाल हैं।
1: सारी महिला समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घर गृहस्थी में भी ध्यान दीजिए, किंतु अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने जो आपके शौक रह गए हों उन्हें आप सीनियर सिटीजन जब आप बन जाती हैं तो आप कम से कम उन शौक को इस समय में आप पूरा कीजिए।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया है। और बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बंदिनी फिल्म का है, जिसको सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। अब के बरस भेज भैया को बागुल, सावन में लीजो बुलाए।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है और हम
1: जी
0: सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैम, नमस्कार। पूनम
0: नमस्कार। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: यादव लुधियाना से। हाँ
0: पूनम यादव लुधियाना से।
1: जी मैम, लेकिन
0: पूनम जी क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं तो मतलब बस हाउस वाइफ हूँ मैडम जी।
0: हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी, पूरे परिवार का ख्याल
1: हाँ
0: रखती हैं आप, है ना?
1: हाँ जी मैडम जी।
0: और कौन से शौक हैं आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई करना,
1: हाँ जी
0: कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने जमाने में, और ये कला जो होती ना अद्भुत है, ये कला हर कोई नहीं सीख सकता ये, है ना? और अभी
1: हाँ
0: लुधियाना
1: जी,
0: की क्या हालचाल है?
1: बहुत बढ़िया जो तो आपसे पारिश होके हटी है, थोड़ा गर्माई, थोड़ा हवा, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का।
0: यानी अभी आप मौसम का लुत्फ उठा रही हैं।
1: सारे मौसम आने बहुत ही जरूरी है मैडम जी, जिंदगी में हर मौसम अगर नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी नहीं चलनी है।
0: क्या बात है। तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: एक बरसात फिल्म का गाना है, बॉबी देओल का, मतलब नहीं हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दी।
0: नमस्ते। कहाँ से फोन लगाया और कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: जी, मैं श्वेता भारती, जिला ग्राम हिंसा से बोल रही हूँ।
0: क्या हालचाल
1: जी
0: है आपके?
1: बढ़िया है दीदी, आप बताओ कैसी हो।
0: जी हम भी मजे में हैं, और आपसे बात करके और भी हम मजे में हो गए, और भी खुश हो गए, है ना?
1: हम भी बहुत खुश हो गए, कॉल लग गया।
0: वैसे आप बताइए कि आप करती क्या है जिंदगी में?
1: जी दीदी, घर पे रहते, घर के काम करते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात
1: जी
0: है।
1: जी
0: और घर के काम करते करते खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं कि नहीं? एक अपने खुद के लिए कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये काम करने में मुझे ज्यादा आनंद मिलता है, यानी मुझे सिलाई करने में ज्यादा आनंद मिलता है, या फिर मुझे गीत गाने में आनंद मिलता है, या फिर रेडियो
1: नहीं,
0: सुनने में?
1: मुझे मुझे गाने में आनंद मिलता है। मैं रेडियो सुनती हूँ, विविध
0: गाते भी
1: भारती
0: हैं?
1: बहुत ज्यादा सुनती हूँ।
0: विविध।
1: बहुत खुश हूँ विविध भारती से। जी दीदी,
0: जी, और गाते भी हैं आप?
1: जी दीदी गाती हूँ। अच्छा,
0: तो गुनगुना के बताइए।
1: गुनगुना के भी सुनाओ। देवी
0: सुनाइए।
1: जी के मंदिर में लट से बहारी आई, देवी जी के मंदिर में लट से बहारी आई, लट से बहारी आई, वरदाने मांगी आई।

0: मांगी आई देवी जी की मंदिर में लट से आई।
1: क्या बात है, कितना सुंदर भजन सुनाया आपने। तो ऐसे ही गाते
0: जी जी
1: गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए।
0: जी जी
1: और आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: फिर जीत फिल्म का सुना दीजिए दीदी।
1: तो जीत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: कोई भी सुना दीजिए
1: जी ठीक है, जीत फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सई देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सही जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ और पब्लिशर भी हूँ। पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी। और पहले तो वैसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका, कवयित्री, गायिका भी हूँ। और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है कि मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी कलाओं में
1: जी
0: आप निपुण हैं, है ना?
1: जी जी
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई हैं, तो कौन सा संगीत का प्रकार, यानी आप शास्त्रीय संगीत सीखी हैं या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?
1: जी मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
0: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउसवाइफ थी, तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ है, हम तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई हैं कि आप पहले हाउसवाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई हैं और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हमारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा, तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जब मैं हाउसवाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी

0: आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी, इसलिए मैंने उस वक्त घर के अंदर रहकर ही जो कुछ मैं कर सकती थी उतना किया, अपनी हॉबीज को डेवलप करती रही, टैलेंट्स को, यानी जैसे स्केचिंग है तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही. और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं करती थी, और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है. तो मेरा ये कहना है सभी सखियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी कुछ समय अपने लिए, खुद के लिए अवश्य निकालें, और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें. भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम 1-2 घंटा अपने लिए, खुद के टैलेंट्स के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें, तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं.
1: ये तो बहुत अच्छा संदेश सारी सखियों के लिए आपने दिया. और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
0: जी, ये जब मैं कर रही थी तो घर में, जब मैं, जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं, तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की तो हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है. तो ये मेरे घर के सब सदस्य मुझे ये मदद करते हैं, और जब मैं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ ऑर्डर्स रहते हैं या गाने का कार्यक्रम होता है तो भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड स्पेशली और बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं. तो घर के लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब घर की महिला उसके अंदर का टैलेंट अगर वो डेवलप कर रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट करें, ताकि वो खुश रहे. फाइनेंशियली भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, और अपनी हॉबीज को वो अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी, तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी.
1: ये बहुत सही बात आपने कही कि अगर एक महिला खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है, और महिला को आगे बढ़ने में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है. तो ये हर, अगर स्त्री को, हर नारी को ऐसा सहयोग मिलता रहे तो हर नारी कुछ न कुछ आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती है. और सई जी, जैसा आपने बताया कि आप गाती भी है, तो हम आपसे कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे.
0: जी जी, एक छोटे नवाब फिल्म का गीत है, लता जी ने गाया हुआ, आर डी बर्मन का संगीत है, वो मैं आपको सुनाती हूँ.

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुरीली आपकी आवाज है और बहुत सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते
1: धन्यवाद
0: गुनगुनाते रहिए। और यही गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, यही गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहां पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहां के बहुत से जीवों की आंखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं,

0: 8800-44-0559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर, ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
3: Stephen, happy birthday to you!
4: Happy birthday Hi. To you, Stephen!
3: Thank you. How are you? Happy birthday, Stephen! Thank you,
5: congratulations!
3: Thank you, John! Thank you so very much!
5: Hi, Martin! How are you?
3: Oh, fine!
5: Thanks for coming in! Please come in! Please.
4: Oh, yes, sure! Yes. Why not?
3: Come! Yay!
4: Come!
3: John, please come here!
4: Oh, sure!

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: Oh

अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर

0: उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं नहीं,
2: देखिए आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: अभी मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है।

0: दिव्य अंग था, शरीर से अधिक मन में होती है।
1: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थी। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
2: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुई। ।1985 में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई, जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
1: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
2: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
1: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
2: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
2: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की

0: सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
1: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
2: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
3: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
1: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
0: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
1: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
6: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया, गौरव, सब तैयार? वेरी गुड। तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
7: आग का गोला?
6: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे, मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
8: सूरज।
6: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
9: बहुत आसान पूछते हो।
6: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
9: है। अगली बार में बहुत मुश्किल।
6: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का,

0: में से एक पहेली देखी, फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली ही नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
1: हाँ।
0: मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
1: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
0: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
2: वो तारा होता है।
0: हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक।
3: वो रात और दिन भी बनाता है।
0: एकदम सही, एकदम
2: सही। वो हमें धूप भी देता है।
0: बिल्कुल, धूप भी देता है। सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
1: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
0: हाँ, हमें क्या मिलता है पता है उससे?
1: विटामिन डी।
0: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो। विटामिन डी मिलता है, अरे तुम्हें पता है? तुम बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे।
2: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता। हाँ
0: बिल्कुल।
1: पेड़ों को खाना भी देता है।
0: बिल्कुल, एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
1: धीरे धीरे रात घूमते, जब भी सुबह रात होती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
1: हाँ।
3: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ, हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
1: मौसी, जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय, क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना,
1: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
2: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
2: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों, सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
1: मौसी, वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है,
2: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कहीं
1: दूर होता है, इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
1: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ,
2: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
4: सर्दी।
0: ओ, ऐसी वाली सर्दी ना। हाँ। अच्छी लगती है सर्दी।
1: हाँ। पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ, शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
2: नहीं
0: है। सूरज आग का गोला, लेकिन
4: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
4: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
4: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
4: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
4: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है।
4: ये दिन रात बनाता है।
0: देह प्रकाश पर नहीं है दीपक।
4: देह प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
4: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
1: मौसी, एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
2: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
1: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ की नहीं आऊँ।
1: वो भी दस पूछेंगे।
0: दस पहेलियाँ। अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
1: डर जाती है। आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
2: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त

0: होता है तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 100.4 FM पर ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और आज का विषय है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अभिशाप नशाखोरी। श्रोताओं नमस्कार, प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत वेलकम है। और आज का विषय बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जी हाँ साथियों, नशाखोरी कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि नशा नाश का कारण होता है।

0: कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि नशा नाश का कारण होता है। हमारे शरीर पर तो दुष्प्रभाव डालता ही है, साथ ही साथ हमारा मन मस्तिष्क भी कहीं ना कहीं डगमगाता है और हमारा सामाजिक हनन होता है। तो आज हमने इसी विषय पर बातचीत करने की कोशिश की है अपने बहुत सारे लिसनरों से। तो आइए देखते हैं कि हमारे आज के पहले कॉलर कौन हैं। हेलो,
1: हेलो
0: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका फोन लग गया। आप कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, कनाडा से सेंट स्टार्स बरेली।
0: सुनील कुमार जी, क्या करते हैं आप?
1: बस सर, प्रोग्राम होते हैं, थोड़ी आशा भी है तो प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
0: चलिए, तो बड़ा अच्छी बात है कि आप हमारे प्रोग्रामों को सुनते हैं। आई साइट वीक है तो उसका इलाज कराइए आप।
1: अरे सर, बहुत करा रहे हैं और अभी भी कोशिश लगे हुए हैं। लगे हुए हैं, कोशिश बिल्कुल पीछे नहीं।
0: जी जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप जल्द से जल्द आपके आंखों की रोशनी अच्छी हो जाए। हमारा आज का जो विषय है सुनील कुमार जी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अभिशाप नशाखोरी, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
1: हम यही कहना चाहेंगे सर, हमने तो कभी पी नहीं, और हमारे चार भाई हैं हम लोग ना
0: जी,
1: और जो फौज में हैं, कभी हमने छू ही नहीं है कोई भी नशा, और ना ही नशा का कोई स्वाद मालूम है। जैसे शराब पीते लोग मार कहते कड़वी होती है, हमें कभी पता ही नहीं। और हम यही कहना चाहेंगे अपने श्रोताओं से जो भी सुन रहे हैं कि नशा हर चीज में बुरा है, पैसा भी खत्म हो, इज्जत भी यहाँ की जाए और शरीर भी बेकार हो।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखिए, अगर आप नशा करते हैं तो शारीरिक रूप से आप कमजोर हो जाते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं, आपका मानसिक संतुलन भी कहीं ना कहीं डगमगाता है। और रही बात सामाजिक, तो सामाजिक रूप से भी आपका कहीं ना कहीं तिरस्कार होता है अगर आप नशाखोरी करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, और पैसा भी खत्म होता है,
0: पैसा भी आपकी जेब से खत्म होता है। बड़ा अच्छी बात आपसे की सुनील कुमार जी। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस प्रोग्राम में?
1: तेरे प्यार की
0: सुनवाते हैं आपको ये।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, कौन?
1: मैं राम प्रसाद सर बोल रहा हूँ, सबका सोनी से। हाँ
0: राम प्रसाद शर्मा जी, आपका प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में बहुत स्वागत है। और ठीक हैं आप?
1: सब बढ़िया साहब, सर जय कृपा मालिक की।
0: आज का विषय है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अभिशाप, नशाखोरी। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
1: नशा साहब, कोई सा भी नशा गलत है साहब जी।
0: जी,
1: नशा कोई
0: क्यों?
1: सा भी, शराब का हो, बीड़ी सिगरेट का हो, या किसी भी चीज से नशा, नशा तो गलत ही गलत है साहब।
0: जी बिल्कुल। मतलब हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है, हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ता है।
1: हाँ साहब, शरीर नुकसान पहुँचा, मानसिक नुकसान पहुँचाता है, सब बातें नुकसान है शरीर के लिए भी हानिकारक है साहब।
0: और साथ साथ सामाजिक रूप से भी हमारा कहीं ना कहीं हनन होता है। समाज
1: हाँ
0: हमें
1: साहब,
0: अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, नशाखोरी हम करते
1: हाँ
0: हैं।
1: साहब, हाँ
0: लेकिन
1: समाज
0: हम ये
1: दृष्टि
0: देखते
1: से इज्जत
0: हैं
1: नहीं होती साहब
0: राम प्रसाद शर्मा जी के, आज के जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे
1: जी
0: में बहुत
1: साहब।
0: ज्यादा लिप्त है। उनके लिए क्या संदेश देना
1: हाँ
0: चाहेंगे आप?
1: मैं यही कहता हूँ, नशा करना गलत है, नशा ना करें, और नशे से सब सब चीज का नुकसान है, शरीर भी हानि, स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, और
0: चलिए
1: समाज की बेइज्जती होती साहब।
0: चलिए, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: आपके सफाई का स्वागत है बाबू जी।
0: सुनवाते हैं आपको जी।

0: देखते हैं कि हमारे ये कॉलर कौन इस वक्त फोन लाइंस पर है।
1: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
0: हो रही है साहब, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली, पुरानी मस्जिद, जिला बरेली से बोल रहा हूँ सर।
0: बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। और हमारा
1: शुक्रिया
0: आज
1: सर।
0: का जो विषय है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अभिशाप, नशाखोरी,
1: जी सर।
0: क्या कहेंगे इस विषय पर?
1: सर, इस विषय पर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे खासतौर से आपका जो प्रशांतन कार्यक्रम होता है, इतनी बात बार बार कही जाती है कि नशा जो है वो नाश की जड़ है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ये नशा किसी भी प्रकार का हो, ये उचित नहीं होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है और वो उसके पास में जो कोई धूम्रपान नहीं करता है, वो उस पर धुआं छोड़ता है, तो उसका भी नुकसान होता है और उसका भी नुकसान होता है। इसी तरीके से कुछ लोग दारू सेवन करते हैं और घर परिवार को परेशान करते हैं और मारपीट करते हैं, तो इस हिसाब से भी ये नशा जो है बिल्कुल भी किसी तरीके से उचित नहीं है। मेरे हिसाब से तो किसी प्रकार का किसी को नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा जो है वो पैसे की भी हानि करता है और सेहत भी खराब करता है, और समाज में उस व्यक्ति की कोई वैल्यू भी नहीं होती है जो इस तरीके की हरकतें करता है और इस तरीके का मतलब व्यवहार लोगों के साथ करता है। और अगर जो नशा किए हुए होता है वो किसी से अच्छी बात नहीं करता है, गाली गलौज करता है, तो इससे मोहल्ले में या गाँव में तमाम तरीके का विवाद होता है। और इसी तरीके

0: जो लोग दूसरे की बुराई करने में कुल्लाते हैं, क्योंकि नशा जो है किसी प्रकार का मेरे हिसाब से उचित नहीं है।
1: बिल्कुल सही बात कही लाल मोहम्मद अंसारी जी, नशा नाश का कारण है, ये बुजुर्गों की कहावत है और ये सत्य भी है।
0: जी सर,
1: और नशा जो है वो मीठा जहर होता है, कहीं ना कहीं हमें धीमे धीमे करके मौत की ओर लेके जाता है। और कोशिश करना चाहिए कि हम नशाखोरी से बचें और
0: जी
1: अपने
0: कोई भी
1: स्वास्थ्य का।
0: मतलब जो वस्तु होती है मान लो नशे की, तो उसके पहुंच पर बिल्कुल फोटो के साथ ये लिखा होता है कि इसका सेवन करने से कैंसर हो सकता है
1: जी
0: सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही लाल मोहम्मद अंसारी जी, आपसे बातचीत
0: तो मैं
1: करके।
0: सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि नशे की जगह अगर कोई और चीज खा लें, कोई और चीज पी लें और बच्चों में खुशहाली पैदा करें, बच्चों के लिए कुछ चीज ले जाए तो घर में खुशहाली रहेगी और अपनी सेहत भी बची रहेगी और अपनी इज्जत भी बची रहेगी सर।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आज के इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: जी आज गाना सुनना चाहूंगा कि आज देखिए जुमा भी है और आशुरा मुहर्रम भी है, तो इस तरीके से आज एक गीत है, फिल्म का नाम है अल्लाह। इसका एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, किशोर कुमार जी ने गाया है कि ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, ये गीत सुनवा दीजिए।
1: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: आपका शुभचिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से वार्तालाप कर रहा हूँ बंधु।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपने इतनी दूर से हमें फोन किया। और आपकी आवाज के अंदर जो कशिश है और जो बोलने का आपका अंदाज है, वो हमें बड़ा पसंद आया बाहुबली जी।
1: जी ये तो बुढ़ा की आवाज है भाई साहब,
0: हाँ
1: 84 साल चालू है अभी।
0: क्या बात है, क्या बात है कि आप 84 साल की उम्र में भी हमारे प्रोग्रामों को सुन रहे हैं। और कैसे लगते हैं आपको हमारे कार्यक्रम?
1: अरे एक से बढ़कर एक श्रोताओं को भी थोड़ा सा मनोरंजन के साथ विचारों का मंथन करना
0: जी
1: ये सब कार्यक्रम प्रदान करता है हमें।
0: बहुत अच्छा लगा आपके मुखारविंद से इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे आकाशवाणी के लिए सुनकर। आज का हमारा जो विषय है, शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अभिशाप नशाखोरी, क्या कहना चाहेंगे आज की पीढ़ी के लिए आप नशाखोरी के विषय में?
1: जी जी जी ये बहुत ही बोले तो ज्वलंत प्रश्न है।
0: जी
1: हमारी नई पीढ़ी नशा करने के लिए विविध प्रकार के साधनों का उपयोग कर रहे हैं। जो
0: जी
1: जहरीलापन उनके शरीर में बिगड़ता है उनका भविष्य नष्ट कर देता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही बाहुबली जी। और
1: और अपना शरीर मन और आचार विचार और अपने आत्मा को निर्मल करने के लिए ऐसी बोले तो नशीली जो भी बाजार में जो भी साधन सामग्री है इससे हमें बचपन से दूर रहना चाहिए।
0: बहुत
1: एक
0: अच्छी,
1: बार इसकी आदत गिर गई, एडिक्ट हो गए तो इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है और अपना जीवन बर्बाद हो जाता है।
0: वाकई बहुत अच्छी बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई। और कोशिश करना चाहिए कि नशे के जो भी पदार्थ हैं, चाहे वो पेय पदार्थ हों या फिर सूखे पदार्थ हों, उनसे हमें अपने आप को बचाना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। कौन सा गीत सुनेंगे आज बाहुबली जी इस प्रोग्राम के माध्यम से?
1: भूली वही यादें मुझे इतना ना सताओ।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी, हम बंटू भाई प्रजापति बोल रहे हैं, ग्राम कतरा कला से। जी
0: बहुत स्वागत है बंटू भाई प्रजापति, आप तो हमारे परमानेंट लिसनर हैं और आपकी कॉल अक्सर आकाशवाणी बरेली से प्रसारित होती रहती है ना। आज का हमारा विषय है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अभिशाप नशाखोरी। क्या कहना चाहेंगे नशे के विषय में?
1: इसके विषय में तो हम यही कहना चाहेंगे, मतलब जो लोग नशा करते हैं ये नशा ना करें, इससे शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होता है और सर इसमें जो नशे में हम पैसा बर्बाद करते हैं वो पैसे का भी बर्बादी होती, शरीर भी बेकार होता है और इसमें जो काम करना चाहते हैं वो काम भी नहीं हो पाता है, क्योंकि वो शरीर नहीं रहता है, दिमाग फेल हो जाता है, वो काम नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा नशा बिल्कुल ना करें और स्वस्थ रहें, समाज भी स्वस्थ रहेगा,
0: बिल्कुल,
1: ये सभी।
0: बहुत अच्छी बात बंटू भाई प्रजापति आपने कही कि नशा कहीं ना कहीं हमारे शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव डालता है और जब हम नशे की हालत में होते हैं तो हम कोई भी कार्य अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। और कहते हैं ना
1: जो
0: कि स्वस्थ शरीर जो है वो 100 नियमतों से बेहतर है ना।
1: जी, बिल्कुल
0: तो इसलिए हमें नशाखोरी से दूर रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का सेवन हो नशे का वो हम ना करें और इससे दूरी बनाकर रखें ताकि हमारा मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जो दायरा है वो अच्छा रहे और लोग हमें इज्जत की नजरों से देखें।
1: जी। मैं तो कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, नशे से जहां तक है सभी लोग बचे रहें, क्योंकि इसमें नशा करेंगे तो और काम में बाधा होगी और जब नशा ना करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। आप सभी मिल करके जब बातचीत करेंगे तो वो भी समझ में आएगी, बहुत अच्छा लगेगा, काम में भी मन लगता है। जब
0: कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस प्रोग्राम में?
1: जी सुनवा दीजिए, दिल का क्या करे साहब, हम सुनते हैं।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्कार। कौन साहब?
1: जी अनोखे लाल मौर्य बोल रहे हैं, कटरा चांदका पुराने सर बरेली से।
0: अनोखे लाल जी, आप तो हमारे परमानेंट लिसनर हैं, हमारे प्रोग्राम आप सुनते ही रहते
1: जी
0: हैं,
1: सर,
0: सारे कार्यक्रम सुनते
1: कैसे
0: हैं।
1: जी कार्यक्रम? हम बढ़िया सुन रहे हैं आपके, सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं आजकल बड़ी बड़ी
0: अच्छा, उसमें प्रतिक्रियाएं भेजते हैं आप अपनी?
1: जी, बराबर ईमेल करते हैं और फेसबुक पे भी डाल देते हैं कभी कभी कमेंट।
0: चलिए, बड़ा अच्छी बात है ये कि आप हमारे प्रोग्रामों को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। आज का हमारा विषय है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अभिशाप, नशाखोरी। क्या कहेंगे इस विषय पर? बिल्कुल
1: नशा तो बहुत बुरी चीज है, नशा आदमी के लिए खोखला कर देती है। और कुछ नशा वाले होते हैं, किसी का हो, चाहे गुटखे का हो, तम्बाकू का हो, चाहे दारू का हो, स्मैक का हो, किसी चीज का नशा हो, तो नुकसान दे इंसान के।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही कि नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हर तरीके से मतलब नुकसानदेह है ना? आपने कभी अपने जीवन में नशा किया?
1: मैंने कोई नशा नहीं किया, कि मुझे रेडियो का एक आकाशवाणी बरेली का नशा है और कोई नशा नहीं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपको आकाशवाणी सुनने का नशा है। और हम तो यही चाहेंगे कि हमारे जितने भी सुनने वाले इस वक्त हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, वो ऐसा ही कोई नशा पालें अपने जीवन के अंदर, जो उनके जीवन को सार्थक करे और उनके जीवन को आगे की दिशा में लेकर के जाए और दुर्व्यसनों से बचे, तभी हमारा एक अच्छा समाज निर्मित हो पाएगा, है ना? कौन सा गीत सुन लेंगे आज आप?
1: ये कोई ना सुनवा दीजिए, आज मुहर्रम का दिन है।
0: जी, आज अशुरा का दिन है, सुनवाते हैं अनोखे लाल मौर्य जी ये प्यारी सी नात।

0: देखते हैं कि हमारे इस वक्त कौन कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर है।
1: नमस्कार सर,
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोरा।
0: तिलक राज अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में।
1: शुक्रिया जी।
0: आज का हमारा विषय है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अभिशाप नशाखोरी। क्या कहना चाहेंगे
1: जी,
0: नशाखोरी के विषय में हमारे?
1: ये नशाखोरी तो बहुत ही ज्यादा गलत है। नशाखोरी के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ सर,
0: जी
1: अगर हमें परिवार में कोई बालक करता है नशा, तो पहले हमें बालक को समझाने से पहले हमें स्वयं को भी अपने ऊपर कंट्रोल करना है।
0: जी
1: उनके सामने नशा तो बिल्कुल नहीं करना है और बिल्कुल छोड़ देना है,
0: जी
1: तभी हम अपने बालक से कहने के हकदार है।
0: जी जी
1: नशाखोरी तो सब बुराइयों की जननी है, उसके बाद ये सारे गलत ही काम होने हैं, अच्छे काम एक भी नहीं होना है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात तिलकराज अरोड़ा जी आपने कही कि नशा हर बुराई की जननी है। वाकई में बहुत अच्छी बात आपने कही और हमें नशे से बचना चाहिए, तभी हम अपना सामाजिक उत्थान कर पाएंगे और अपने शरीर को भी स्वस्थ रख पाएंगे और मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ रहेंगे, है ना?
1: जी सर,
0: अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनेंगे आज तिलकराज
1: आज
0: अरोड़ा
1: सुनवा
0: जी?
1: दीजिए, बस तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, फिल्म हवस से सुनवा दीजिए।
0: सुनवाते हैं आपको ये।

0: तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। जी हाँ श्रोताओं, 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। बातचीत चल रही है नशाखोरी पर। साथियों, नशाखोरी वास्तव में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए एक अभिशाप है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देता है। ये आदत न केवल व्यक्ति के शरीर को खोखला करती है बल्कि मानसिक संतुलन और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। श्रोताओं, लगातार नशा के सेवन से लीवर खराब होना, हृदय रोग, कैंसर और फेफड़ों की गंभीर बीमारियां होती हैं, पाचन क्रिया बिगड़ जाती है और शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है। अगर बात करें मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव की, तो नशा मस्तिष्क की रासायनिक संरचना को बदल देता है। इससे तनाव, अवसाद, चिंता और याददाश्त कमजोर होने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति का अपने व्यवहार और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता। सामाजिक स्वास्थ्य की अगर बात करें हम कि सामाजिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो नशाखोरी से पारिवारिक रिश्ते टूट जाते हैं, विश्वास खत्म हो जाता है, आर्थिक तंगी बढ़ती है जिससे अपराध और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयां जन्म लेती हैं। साथियों, समाज में व्यक्ति और उसके परिवार का सम्मान कम हो जाता है। समाधान और बचाव अगर हम करना चाहें तो नशे की लत से बचने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति और इसके दुष्प्रभावों के प्रति सही जानकारी होना सबसे जरूरी है, और साथ ही परिवार का सहयोग। परिवार को नशेड़ी व्यक्ति को अपराधी समझने के बजाय एक मरीज समझना चाहिए और उसे प्यार व काउंसलिंग से सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। और साथ ही गंभीर लत होने पर नशा मुक्ति केंद्रों में मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों से जुड़कर भी मदद ली जा सकती है। जी हाँ साथियों, आइए अब हम देखते हैं हमारे इस प्रोग्राम में हमारे आज के जो इस प्रोग्राम के आखिरी कॉलर हैं वो कौन हैं। हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: अमरजीत बात कर रहा हूँ सर।
0: अमरजीत, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से बात कर रहा हूँ।
0: आज का हमारा विषय है नशाखोरी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अभिशाप। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर कि नशा हमारे जीवन के लिए कितना घातक है?
1: सर, मैं इस विषय पर ये कहना चाहूँगा, जो आज के युवा लोग हैं काफी नशे की ओर जा रहे हैं, तो उनसे बस ये कहूँगा।

0: हुआ, नशा हमें किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। जान है तो जहान है, क्योंकि नशा हम लोग करते हैं और उससे नशे से हम भी परेशान रहते हैं, और किसी परिवार का व्यक्ति करता है तो उससे परिवार का व्यक्ति भी नुकसान में रहता है सर। तो हमें नशा किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही अमरजीत जी, कि नशा किसी भी प्रकार का हो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और हमें नशे से बचना चाहिए।
0: जी
1: अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
0: सर मुझे सुनवा देना आप, फिल्म का नाम रहेगा प्रेम रोग और गीत के बोल रहेंगे भमरे ने खिलाया फूल फूल कोई ले गया राजकुमार।
1: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आज का विषय था शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अभिशाप नशाखोरी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104 FM पर। श्रोताओं, शाम के ठीक 5 बजे हैं और ये समय है कार्यक्रम विवरण का। तो हम आपको बता दें हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा मेरे लिए प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आज शाम 5:45 पर आप सुनेंगे अंकित गुप्ता से कहानी। कृषि पाठशाला का समय रहेगा आज शाम 7 बजे। खेती संघ पशुपालन को लाभकारी बनाए, श्री तनवीर और श्री करण सिंह से बातचीत करेंगे रविन्द्र कुमार। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत, आज चर्चा होगी मुहर्रम पर। साथ ही मुबीन हसन जैदी से आप सुनेंगे एक वार्ता, हजरत इमाम हुसैन का पैगाम, लोकगीत आपको सुनवाएंगे। युवाणी आज आप सुनेंगे शाम 6 बजे। कुछ खास है आज, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, और साथ ही नजर आना है शाम लकी 3 आप सुनेंगे आज शाम 5:30 पर। आपके खतों पर आधारित पसंद के गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत आज शाम 7:31 पर।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे भजन संध्या और रात 8 बजे आपको जुड़ेंगे आकाशवाणी लखनऊ के प्रसारण से। अब एक नजर कल की सभा में हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर।

कल सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहां है। प्रायोजक होंगे फोकस नेत्रालय बरेली। दोपहर 2 आप सुनेंगे कार्यक्रम जनमंच खेत बचाओ अभियान और आम किसान। अर्जुन शिव कुमार और अनिल कुमार की चर्चा आप सुन सकेंगे इसमें। प्रोग्राम नमस्ते बरेली आप सुनेंगे सुबह 8:15 पर। इसमें वो भी फोन होगा, साथ ही शहर की खबरें, सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी गीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे सुबह 10, पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत 1 से 2 तक आप सुनेंगे, लोकगीत प्रातः 8:45 पर, सबरंग का समय रहेगा सुबह 11:00।

शाम 4 बजे आपकी बात आकाशवाणी के साथ। फोन इन कार्यक्रम हेलो बरेली आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाड़ी, इसमें आज की बात आकाशवाणी गांव में किसान के साथ, और साथ होगा बाजार भाव, मौसम, कृषि समाचार, सवाल, नसीहत और लोकगीत। ग्राम जगत का समय रहेगा शाम 7 बजे, इसमें चर्चा होगी, साथ ही एक वार्ता आपको सुनवाएंगे, सड़क सुरक्षा व सावधानियां, ममता कन्नौजिया वार्ताकार होंगी, साथ ही सुनेंगे आप लोकगीत। कल शाम 7:31 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कुलदीप गंगवार। युवाणी का समय रहेगा कल शाम 6 बजे, कुछ खास है आज, मैसमी डे, डेथ एनिवर्सरी महाराजा रंजीत सिंह, साथ ही होगा डांस पर रिली डांस और ओ भी। कल शाम 5:05 पर आप सुनेंगे भजन संध्या, और रात 8 बजे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण।

तो श्रोताओं, ये तो थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, स्वागत है शिमला 4 FM पर आकाशवाणी की बरेली केंद्र से। आप सुन रहे हैं भजन। आइए सुनते हैं शेखर सेन के स्वर में ये भजन, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमरन जो करे दुख काहे को होई।

छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली यूपी से रामप्रसाद शर्मा बेटी वंदना शर्मा जयश्री देवी। आप कहते हैं कि दोस्तों ज़माना क्या बदला, सब कुछ बदल गया, सिनेमा ख़त्म हो गया, लेकिन पुरानी फिल्म और पुराने हीरो हीरोइन लोग अब भी पसंद करते हैं, जैसे हमारे भारत के भारत मनोज कुमार बेहद पसंद के एक्टर हैं। मुझे उनकी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का ये गीत बहुत ही पसंद है, और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं। तो आइए सुनवाते हैं रोटी कपड़ा और मकान का ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में आपके रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी खत वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। आप लिखते हैं कि शुभ प्रस्तुतकर्ता को खान परिवार का प्यार भरा आदाब, तो आपको भी आकाशवाणी बरेली की ओर से सलाम और आदाब। आप कहते हैं कि रिश्तों में गलतफहमी ना आने दें, क्योंकि रिश्ते बिखरने में एक पल का भी समय नहीं लगता है, इसलिए आप किसी की बातों में ना आएं। अगर कोई आपसे किसी के बारे में कुछ कहता है तो पहले आप जांच पड़ताल कर लें। आप कौवे के पीछे न दौड़ें, पहले अपना कान देख लें। वाकई में बहुत सही बात आपने कही वारिस अली खान साहब, कि कोई भी अगर हमसे बात हो गई है तो उसके बारे में पहले हम तफ्तीश कर लें। बिना तफ्तीश किए हुए अगर हम कोई भी कदम उठाते हैं तो उससे रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार तो पड़ती है। और आपने सुनना चाहा है बहुत ही प्यारा सा ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, तो आइए सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम लकी थ्री। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:45 हुए हैं और आइए अब सुनते हैं कहानी अंकित गुप्ता से।
1: मैं अंकित गुप्ता अंक प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी कहानी फ्लैट नंबर 31 भाग 1। मुरादाबाद के बुद्धि विहार इलाके में बनी स्काईवे बिल्डिंग की ओर देखने पर नजरें हटने का नाम नहीं लेती। बड़े बड़े फ्लैट, कई सारे पार्क, अलग अलग तरह के शीशों की जुगलबंदी से तैयार खिड़कियां और न जाने क्या क्या। इन्हीं में से ब्लॉक नंबर 3 के दूसरे फ्लोर पर सीढ़ियों के पास वाले सबसे पहले 26 नंबर में पालीवाल साहब रहते हैं। कहने को तो जीवन के 60 महीने पहले पूरे कर चुके हैं, लेकिन शारीरिक चुस्ती से 40 के बने हुए हैं। सामने की आधी खोपड़ी पर सपाट मैदान और पीछे की आधी खोपड़ी पर अधपके बालों की बूढ़ी फौज ही पहरा दे रही है। पालीवाल जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हिंदी के भक्त भी। जितने वे साधारण हैं उतनी

ही उनकी प्राण प्यारी सुधा पालीवाल जी टीम टाम का पर्याय, अंग्रेजियत की जीती जागती मिसाल। बगल वाले फ्लैट नंबर 27 में नवयुगल अनिल त्रिवेदी और श्रद्धा रहते हैं, मानो खुशहाली के बगीचे में कलोल करते हुए हिरणों का जोड़ा। एक साल पहले ही शादी हुई है दोनों की। अनिल गन्ना विभाग में क्लर्क हैं और श्रद्धा साइंस ग्रेजुएट। आगे वाले फ्लैट नंबर 28 में निवास करता है बजाज परिवार। परिवार में 5 सदस्य हैं, घर की मुखिया करुणा, बेटा दीपक, बहू प्रिया, 8 साल की पोती पीहू और उसका 7 वर्षीय छोटा भाई पार्थ। करुणा बजाज का नाम यूं तो करुणा है, लेकिन करुणा, दया, ये नादान चिड़िया तो कभी उनके मन के आंगन में उतरी ही नहीं। बजाज परिवार से एक फ्लैट छोड़कर 30 नंबर फ्लैट रुचिता मौर्य का है, जो अपने 5 साल के बेटे मिंटू के साथ रहती हैं। इसी फ्लोर के फ्लैट नंबर 31 दया निवास से सभी को एक तरह की असहजता है। पड़ोसियों ने इसके पीछे कुछ तर्क भी निश्चित कर रखे हैं। पहला तर्क ये कि ये फ्लैट दिन में कभी कभार ही खुलता है, न मालूम इसमें क्या रहस्य है। दूसरा तर्क ये कि इसमें रहने वाली 65 वर्षीय वृद्धा का अजीब हुलिया, उसकी आंखों में एक अजीब सी लालसा, मुंह पर एकाएक आई ढेर सारी झुर्रियां, एक सफेद बाल और न जाने क्या क्या। बकौल करुणा, भाई मुझे तो इस बुढ़िया से बहुत डर लगता है, हुलिया नहीं देखा इसका। हे भगवान, इतना डरावना, कोई जादू टोना करने वाली लगती है। कोई नौकर नहीं, औलाद नहीं, बस अकेली। जब देखो हम सबकी औलादों को तकती रहती है। सुधा भी अपने चिर परिचित अंदाज में कह उठती हैं, यस आई डू थिंक द सेम, शी मस्ट बी डूइंग सम विचक्राफ्ट। एक बार रुचिता न्यूज़पेपर उठाने जैसे ही बाहर बराबर वाली बुढ़िया दरवाजे पर खड़ी मिली। बुढ़िया के बाल थोड़े बिखरे हुए थे और सामने का एक दांत भी नहीं था। बुढ़िया ने जैसे ही मुस्कुराकर कुछ कहना चाहा, रुचिता ने मारे डर के दरवाजा बंद कर लिया। वह मिंटू को कभी बराबर में न जाने देती थी, कोई उससे बात नहीं करता था, सभी के मन में एक अजीब सा डर था। वह कहां से आई थी, उसका इस संसार में कौन था, ये किसी को पता न था। पता था तो बस ये कि वह बिल्डिंग के लोगों से कम बोलती थी, या यूं कहिए न के बराबर। लेकिन दीपक, पीहू, पार्थ, मिंटू और 29 नंबर में नए नए बसे मिस्टर सक्सेना के बच्चों शैली और साशा को देखकर उसके झुर्रीदार चेहरों पर एक मुस्कान सी तैर जाती थी। भाग दो। एक सुबह पालीवाल साहब सैर करके वापस आ रहे थे, न जाने क्या मन में आया जो लिफ्ट में सवार होकर जाने की सोची। जैसे ही लिफ्ट की ओर मुड़े तो पता चला लिफ्ट तो रात से ही खराब है। देखते ही देखते लिफ्ट के सामने लोगों का तांता लग गया। 20 लीटर दूध की भारी भरकम कैन उठाए हुए दूधिया बुदबुदाया, भैया अपने बस का नहीं है चार चार मंजिल चढ़कर दूध देना। लिफ्ट सही हुई तो ठीक, मन्ना जयराम जी की। लिफ्ट खराब होने की खबर पूरी बिल्डिंग में जंगल में आग की तरह फैल गई। 5वीं मंजिल पर रहने वाली मालती ने सोचा कि क्यों ना दूसरे फ्लोर वाली मिसेज अरुणा का हाल ले लूं, जो पिछले 4 महीने से पैरालाइज्ड है। अगली बार पता नहीं लिफ्ट कब खराब हो और सीढ़ियों से आना पड़े। हाँपते हाँपते जैसे तैसे उनके घर पहुंची तो पता चला वो तो कल ही मेरठ ट्रांसफर कर दी गई हैं, वो भी नाजुक हालत में। मालती जी का अनमोल समय भी खराब हुआ और काम भी नहीं बना। शेप बनवाने निकले दीपक बजाज, जिनके दिलो दिमाग पर लिफ्ट की सुगंध थी, उनका पहली बार पान की पीकों से सनी सीढ़ियों से सामना हुआ। मन ग्लानी और अपराध बोध से भर गया। चौथे फ्लोर पर रहने वाले 42 साल के जुगल बाबू को ऊपर चढ़ते हुए फ्लैट नंबर 32 के अपने मित्र मिस्टर जुनेजा की याद आई। दोनों काम के सिलसिले में इतने दिन बाहर जो रहे, उनके 4 महीने के नवजात हृदयांश से वे मिले और खुशी से सोचने लगे कि अगर आज लिफ्ट से जाता तो बच्चे की इतनी प्यारी मुस्कान कैसे देखता। दूधिया, अखबार वाला, कूड़े वाला, पानी वाला, सारे लोग आज बड़बड़ाते हाँफते गिरते पड़ते देरी से आए, लेकिन फ्लैट नंबर 31 अभी भी अप्रभावित रहा, और अप्रभावित रहा लोगों का इसके प्रति नजरिया, डर और संदेह। भाग 3। छोटी दिवाली का दिन था। करुणा बजाज के यहाँ लगी घंटा घड़ी ने अपने चिर परिचित अंदाज में छोटी छोटी 6 घंटियां बजाकर शाम के 6 बजने की तस्दीक की। अक्टूबर का महीना जाने को था, थोड़ी थोड़ी सर्द हवा की सुगबुगाहट और अंधेरा छाने लगा था। सूरज आजकल अपना दफ्तर जल्दी ही बंद कर लेता था। इधर वह निस्तेज हुआ तो दूसरे ही पल बिल्डिंग झालरों की रंग बिरंगी कनातों से नहा उठी। सारे फ्लैट रोशनी के दांत दिखाकर खिलखिलाते मालूम पड़ते थे। तिरस्कृत फ्लैट नंबर 31 भी अप्रत्याशित रूप से कुछ अलग दिखाई दिया। बाहर 2 दिए रखे थे, मानो बुढ़िया ने अपनी डबडबाई आंखें ड्योढ़ी पर बिठा दी हों। फ्लैट का दरवाजा खुला था, अंदर से एक अजब गंध भी आ रही थी। करुणा बजाज ने मठरी बनाते हुए बहू प्रिया से कहा, बच्चों को मिंटू के घर बहुत देर हो गई है, बच्चे त्योहार पर इस वक्त घर ही होने चाहिए, जाओ बुला लाओ।
प्रिया कुछ गुनगुनाते हुए मिंटू के घर चल पड़ी। वहां बच्चे नहीं थे, मिंटू के

घर बच्चे ना पाकर वो घबराकर जैसे ही आगे बढ़ी तो फ्लैट नंबर 31 को देखकर ठिठक गई। दरवाजा आधा खुला था। बुढ़िया क्या कर रही थी ये नहीं दिख रहा था। बच्चे दरवाजे की ओर मुंह करके बैठे हुए थे। माथे पर तिलक सा भी लगा था। पास में फर्श पर ही एक रंगोली जैसी आकृति बनी हुई थी। प्रिया सन्न रह गई। वह समझ गई कि दिवाली के मौके पर ही तो बुरी नीयत वाले लोग अपने कारनामों को अंजाम देते हैं। प्रिया का कलेजा मुंह को आ गया जब उसने बुढ़िया के हाथों में एक छोटा चाकू देखा। बुढ़िया दरवाजे की तरफ पीट करके बैठी थी, इसलिए उसका बस एक ही हाथ दिखाई दे रहा था। प्रिया कांप गई। आज तो ये डायन बच्चों को लील लेगी। वहीं बच्चों ने माँ को देखा तो झट से उठकर दरवाजे तक आए और अंदर ले जाने लगे। पार्थ बोला, मम्मा आओ ना, अंदर चलो, देखो आंटी के यहाँ। दोनों बच्चों को एक करारी डांट लगाकर उसने दोनों को बाजू से पकड़ा और बुढ़िया को उल्टा सीधा बखानती हुई बाहर आ गई। बुढ़िया को समझ नहीं आया कि एकदम हुआ क्या। वह प्रिया को आवाज लगाती हुई पीछे पीछे आई। प्रिया को बुढ़िया या बुढ़िया के घर में क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं था, न ही घबराहट में उसने देखा ही। पीछे से करुणा, दीपक, पालीवाल साहब, मिस्टर सक्सेना, रुचिता और सारे पड़ोसी आ गए। दोनों बच्चे रोए जा रहे थे। प्रिया बुढ़िया को कोस रही थी, बुढ़िया बात सुन लेने की अपील कर रही थी। इतना सब देखना था कि डायन, डंकनी और न जाने किन किन विशेषणों से बुढ़िया को अलंकृत करती हुई करुणा बजाज ने धक्का मारकर गिरा दिया। मिस्टर सक्सेना त्योरियां चढ़ाए हुए थे, मानो बुढ़िया को मार ही डालेंगे। रुचिता और मिसेज जुनेजा ने भी करुणा की हाँ में हाँ मिलाई। पालीवाल साहब शांत खड़े थे। सुधा को बोलने का मौका मिल गया था। हाउ एब्सर्ड, ये कौन सा ब्लंडर करने चली थी, मैंने आप सबको कहा था ना, चलो किड्स आर सेफ। बुढ़िया रोते रोते बेहोश हो गई। बुढ़िया को अंदर बंद करके आगे से ताला लगा दिया गया। त्योहार खराब ना हो इसलिए तय किया गया कि दीपावली बीतने के बाद पुलिस को बुलाया जाएगा। बुढ़िया चीखे मारती रह गई पर किसी ने उसकी एक न सुनी। अंधेरा गहराया और फ्लैट नंबर 31 ने फिर से सन्नाटे की चादर ओढ़ ली। इधर पीहू और पार्थ कुछ कहने की बार बार न जाने कितनी कोशिशें कर रहे थे, लेकिन दीपक बजाज ने आंखें तरेर कर उन्हें चुप कर दिया। त्योहार की चमक के आगे सारी चीजें बेनूर और बेमानी हो गई। भाग चार। बुढ़िया को बंद किए 1.5 दिन से ज्यादा हो चुका था। चारों ओर बिल्डिंग में एक अजीब सा माहौल था। बड़ी दिवाली तो बीत गई इसलिए पुलिस को बुलाने की सुगबुगाहट तेज हुई। गोवर्धन पूजा कर लोग फारिग हो गए थे और अब फिर से तमाशा देखने के लिए तैयार थे। पीहू और पार्थ क्या कहना चाहते थे ये मिलियन डॉलर प्रश्न था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें मुंह न खोलने की हिदायत दे रखी थी। खैर, पुलिस को बुलाया गया, ताला खुलवाया गया। ठिटके हुए कदमों से सब आगे बढ़ रहे थे। हर चेहरे पर डर और आशंका के भाव घिर रहे थे। अचानक ही ये भाव आश्चर्य में बदल गए। सामने के बिस्तर पर बुढ़िया मरीजों पड़ी थी। सारे लोग कानाफूसी करने लगे। इंस्पेक्टर ने ध्यान दिया कि बुढ़िया के एक ओर एक लिवर आर्क फाइल पड़ी थी जिसमें से पन्ने बाहर आकर बिखर गए थे। इंस्पेक्टर ने एक पन्ना उठाया तो अंदाजा हुआ कि बुढ़िया ने इनमें आत्मकथात्मक शैली में अपने अनुभव लिखे थे। गुरुवार 7 दिसंबर 1972। आज मेरे पहले कवि सम्मेलन में जब मुझे उभरती कवित्री दया श्रीवास्तव के संबोधन से पुकारा गया तो मन एक असीम सागर में गोते लेने लगा। कितना सुखद, वहां मौजूद हर आदमी संशय में था। कोई बिस्तर पर चिन्निद्रा में लेटी बुढ़िया को देखता तो कोई बिखरे हुए पन्नों को। सुधा बोली, ओ पोएटस थी ये, बताओ क्रिएटिव माइंड के पीछे ऐसी मैलिशियस थिंकिंग, हाउ डिस्गस्टिंग। रुचिता ने अनुमोदन किया, मन की कालिक मुंह पर थोड़ी ना दिखेगी आंटी। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर नए भाव आ जा रहे थे। पालीवाल साहब उचक उचक कर पन्नों में झांकने की कोशिश कर रहे थे जैसे कहीं नागमणि छिपी रखी हो। इंस्पेक्टर ने तितर बितर पन्नों से एक और पन्ना निकाला। मंगलवार 21 जुलाई 1998। प्यारे अनूप, तुम स्वर्ग के जिस भी कोने में हो तुम्हारी छाती गर्व से चौड़ी हो गई होगी। हमारे इकलौते बेटे प्रियम ने अपनी मेहनत और तुम्हारे आशीर्वाद के बल पर इंग्लैंड में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप पा ली है। धीरे धीरे बिल्डिंग वालों का गुस्सा ठंडा हो रहा था। सबको पहली बार पता चला कि उसकी जिंदगी में 2 लोग और थे जो अलग अलग तरह से उसे छोड़कर चले गए थे। बुढ़िया के जीवन के ऐसे अनछुए पहलू उजागर हो रहे थे जो शायद पहले सामने आते तो लोगों का दुराग्रह बदल जाता। जिस गति से इन रहस्यों से पर्दा उठ रहा था उसी गति से लोगों के मुंह नीचे हो रहे थे। मिसेस जुनेजा धीरे से अपने पति से बोली, ओ तभी मैं कहूँ ये हमारे बाबू को ऐसे क्यों देखा करती हैं? हम कितना गलत सोचते थे ना। पति ने सिर झुका लिया। इंस्पेक्टर ने फिर एक पन्ना उठाया। गुरुवार 17 अप्रैल 2003। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है।
बेटा प्रियम, जब तुम्हारे पापा पतंग उड़ाने को तैयार होते थे ना, तुम पतंग को छुड़ैया देने के लिए भागे भागे उल्टी दिशा में जाते और अपनी चुटीली आवाज में कहते थे, माँ

0: दूर जाऊं और दूर, उस समय भी मैं और तुम्हारे पापा दूरी मात्र की कल्पना से विकल हो जाते थे। और आज भी देखो ना, मजाक करते करते तुम सच में कितनी दूर चले गए। अब तो तुम्हें ग्रीन कार्ड भी मिल गया होगा। पूरे 5 महीने हो गए हैं तुम्हें मुझसे संबंध तोड़कर गए हुए। क्या सगी माँ ही सब कुछ होती है? हाँ, हमने तुम्हें गोद लिया है तो इससे क्या हमारा प्यार कम हो जाता है? अब मैं 55 साल की उम्र में किस पर बोझ बनूं बेटा? हर शख्स के चेहरे पर जो गुस्सा था अब वह ग्लानि का रूप लेने लगा था। करुणा, बजाज और सुधा एक दूसरे की तरफ देखकर शर्म की कब्र में धंसी जा रही थीं। आखिर सबसे ज्यादा नफरत भी तो यही दोनों करती थी ना। सक्सेना जी के चेहरे की शर्म बता रही थी कि वो कितना गलत थे। इंस्पेक्टर ने उन सबको देखा और एक पन्ना निकाला। गुरुवार 11 जून 2009। बाहर के मौसम में इतनी उमस नहीं है जितनी इन बिल्डिंग वालों की उपेक्षा से भरी नजरों में है। पता नहीं क्यों सारे मुझसे कटे कटे से रहते हैं। कितनी बार मैंने बताने की कोशिश की, पति जीवित नहीं, बेटा साथ छोड़कर इंग्लैंड चला गया, वहीं का हो गया। रिश्तेदार सोचते हैं कि बुढ़िया कहीं गले ना पड़ जाए, शायद इसलिए कोई हाल तक पूछने नहीं आता। पड़ोसी भी मुझे देखकर रास्ता बदल लेते हैं। आखिरी वाक्य सबको पानी पानी कर गया। प्रिया अपने किए पर पछताने लगी। दीपक ने उसे झुके कंधों से सांत्वना दी। जल्दी जल्दी 10-20 पन्ने और पलटे गए और आखिरी पन्ने तक आते आते डर, संशय और उपेक्षा से भरे चेहरों पर शर्मिंदगी, दया और सहानुभूति और पश्चाताप का रंग उभरने लगा। मंगलवार 25 अक्टूबर 2011। आज मैं कितनी खुश थी। एक तो छोटी दिवाली, ऊपर से मेरे प्रियम का जन्मदिन। प्रियम को हमेशा ही मेरे हाथ का मावे का केक पसंद था। आज सुबह जल्दी उठी, अनूप की पसंदीदा रंगोली बनाई, बाकी तैयारियां की। दोनों बच्चों पीहू और पार्थ के साथ केक काटने ही वाली थी, पर पता नहीं प्रिया को क्या हुआ। मैं तो उन बच्चों के साथ मिलकर केक काटने जा रही थी, कहीं प्रिया को ऐसा तो नहीं लगा कि मैं उन प्यारे से बच्चों को। नहीं नहीं, ऐसा कलुषित विचार तो मुझे सपने में भी नहीं आ सकता। एक तो सबके तिरस्कार के साथ जीना वैसे ही मुश्किल है, और अब तो ये लांछन। मैं कहती रह गई कि मेरी बात सुनो, अंदर चलकर तो देखो कि मैं क्या कर रही थी, पर किसी ने मेरी एक न सुनी। सबने पहले से ही मुझे अपराधी मान लिया। ऐसे अपराध बोध के साथ जीना कैसे हो पाएगा? ये सब सहने की अब मुझमें सामर्थ्य नहीं बची है। मेरे सामने ये जो नींद की गोलियां हैं ना, अब शायद ये गोलियां ही मेरे अकेलेपन और निर्दोषिता को बेहतर समझें। मैं जा रही हूँ, लेकिन एक प्रार्थना है कि अब इस फ्लैट नंबर 31 को उन शक की नजरों से मत देखना, क्योंकि डायन मर चुकी होगी। इंस्पेक्टर ने ये आखिरी शब्द पढ़े। प्रिया रोए जा रही थी, जो जहां था वहीं रह गया, अवाक, शर्मसार, अपराध बोध से ग्रस्त। फ्लैट नंबर 31 का सच और अपनी संवादहीनता, संवेदनहीनता का परिणाम सबके सामने। धन्यवाद।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे अंकित गुप्ता से कहानी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 107.4 FM पर। श्रोताओं, समय हुआ है युवा साथियों के मनपसंद कार्यक्रम युववाणी का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। प्रोग्राम युवाणी में हमारे सभी सुनने वाले दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी और साथ साथ गीत संगीत। श्रोताओं, आज का सवाल, जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रोग्राम की शुरुआत में हम पूछते हैं आपसे एक सवाल और अंत में उसका जवाब। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे आकाशवाणी के फेसबुक पेज पर भी इसका जवाब दे सकते हैं। तो आज का सवाल है, कॉपी कलम निकाल लीजिए, हिंदी उपन्यास तमस के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी उपन्यास तमस के लेखक कौन है? और साथ ही कुछ खास है आज। जी हाँ साथियों, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। साथियों, हर वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है कि लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खतरों के प्रति जागरूक करना तथा एक नशा मुक्त समाज का निर्माण करना। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय निरोधक दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने एक प्रस्ताव में 7 दिसंबर 1987 से इसे मनाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य लोगों को नशे की बुरी आदत

छुटकारा दिलाना तथा उन्हें नशे से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाना है। इसीलिए साथियों प्रतिवर्ष 26 जून को ये दिवस मनाया था। ये दिवस यातना के अपराध के खिलाफ आवाज उठाने और दुनिया भर में पीड़ितों और बचे हुए लोगों का सम्मान करने और उनका समर्थन करने के लिए समर्पित है। और साथियों ये सदस्य हैं, सदस्य देश हैं

0: की चाय।
1: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
2: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
1: कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
2: इतना इजी?
0: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
1: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
0: ना भाई ना।
3: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युवाणी, और अब नजराना शाम पंकज उदास और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में ये प्यारी सी गजल।

जी दोस्तों, 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी और उसमें सुन रहे हैं नजराना ईशा। श्रोताओं, हमने आपसे कार्यक्रम के शुरू में एक सवाल पूछा था कि हिंदी उपन्यास तमस के लेखक कौन है। ढेर सारे जवाब हमारे आकाशवाणी के फेसबुक पेज पर आए हैं, जिसमें हम उन नामों को शामिल कर लेते हैं। जवाब है भीष्म साहनी, आपने जवाब दिया है। पद्मा टाकिस ने पनगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, नरेंद्र शर्मा जेट्टी का जवाब भी आया है। और आप हैं मुकेश कश्यप, सादुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़ का भी सही जवाब, नवा जिला पटियाला पंजाब से, सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु। आप हैं रवि कुमार राहुल, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से, राजवीर सिंह यादव, जयपाल यादव महोबा से। आप हैं मोहम्मद दानिश सिद्दीकी। दूसरे आपसे अनुरोध है कि आप सवाल का जवाब लिख करके भेजें तो अपना पता जरूर लिखें। आप हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नहापकर और निर्मला नहापकर और साथ में विशाल नहापकर, बेरूलाल बख्तारिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी बाजार रोड मुगीसापुर से। आप हैं जगदीश धाकड़ नायमा, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा और इनके परिवार के लोग, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से हैं योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, अभय गुजराती और इनके परिवार के लोग, हीरामणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से। आप हैं सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो और निसार सलमानी धनौरी तेरीवाला हरिद्वार उत्तराखंड से, विजय सुरलकर, नानक खन्ना, चंचल खन्ना सफीदो सिटी हरियाणा से। आप हैं फागू राम यादव, प्रवीण चौहान और मेरठ से दिग्दर्शन गौड़, महाराजा कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, लाल मोहम्मद अंसारी जमनिया गाजीपुर से, सुरेश जायसवाल गंज डुंडवारा से, आफ्ताब अंसारी। आप हैं अभिजीत गुहानकर, अनोखे लाल, कटरा चंद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से, नई मस्जिद करेली से इंतजार अंसारी, नबी हसन अब्बासी हैं मारहरा दरवाजा एटा से। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और आइए सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत।

अभी हमारे साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, आकाशवाणी का बरेली केंद्र है सऊदी शमलब 4 FM पर। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत राकेश शर्मा के साथ।

कार्यक्रम ग्राम जगत में सब भैया बहन को बहुत बहुत स्वागत है और आपके भैया राकेश शर्मा की सब भैया बहन के लिए राम राम। भैया लोगों देखो, आप जानते हैं कि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश तो है ही है, इसके साथ ही साथ हमारे देश में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं और प्रत्येक दिन कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई त्यौहार हमारे यहाँ मनाए ही जाते हैं। कभी जयंती होती है। बात करें हम आज की, तो आज भी एक विशेष त्यौहार है मुहर्रम। आज हमारे भैया लोग मुहर्रम को त्यौहार मना रहे हैं, जगह जगह ताजिया बनाए जाते हैं और वे ताजिया हमारे भैया लोग एक जगह होती है करवला, वहाँ ले जा के दफन करते हैं। ये मुहर्रम को त्यौहार और जो महीना थोड़ो गम को महीना है, इबादत करन को महीना है और गरीब लोगों की सेवा करन को महीना है। जो हमारे भैया लोग हैं विभिन्न प्रकार से गरीबन को सहयोग करते हैं और ये मुहर्रम के महीना में हमारे भैया लोग जितनों भी कर सकें सच्चाई के रास्ता पर चलन को प्रयास करें, न्याय और धैर्य को सबक देते जो महीना। अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास के पन्ना अगर हम पलट कर देखें तो हमें पूरी जानकारी मिलती है कि ये मुहर्रम को महीना को क्या महत्व है। ये केवल एक कैलेंडर की

तारीख ना है बल्कि हमें बहुत शिक्षा मिलती है। लगभग 14 साल पहले हजरत इमाम हुसैन ने अपने परिवार और साथियों के साथ मिलकर सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। यह लड़ाई केवल सत्ता या जमीन के टुकड़ा के लिए नहीं ही बल्कि अहंकार अन्याय के खिलाफ जो युद्ध हो, हम कह सकते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत। इंसान को अपनी जान की परवाह किए बिना सच्चाई के साथ हमेशा खड़ो होना चाहिए। जा बात को संदेश दो जाते जा मुहर्रम के त्यौहार से उन्होंने सिखाओ कि असली ताकत जो है वो तलवार में ना है बल्कि जो हमारे उसूल हैं उन पे चलन से हमारे लिए हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। अगर हम बात करें कि जो त्यौहार केवल एक विशेष समुदाय तक सीमित है तो ऐसा ना है। मुहर्रम को महीना हमें भाईचारे की सीख देते, हमें सब्र के साथ रहना चाहिए, जावाद को संदेश मिलता है। हमारे गांव में आज हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो त्यौहार होते हैं उनमें भैया एक दूसरे के त्यौहार में सम्मिलित होते हैं, साथ में घूमते हैं, जो भी उनके करण को सहयोग है वो भी करते हैं। मुहर्रम के दौरान इमाम हुसैन की शहादत हमें याद दिलाती है कि समाज में जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनके साथ हमें ज़रूर खड़े होना चाहिए और जो हमारा फर्ज है उसे निभाना चाहिए। जिस तरह अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, हमें भी अपने आसपास के भेदभाव, गरीबी, अज्ञानता इन्हें दूर करने के लिए एकजुट होना चाहिए। यही असली ग्राम जगत है, जहाँ कोई अकेलो ना हो, जहाँ दुख में सब साथ दिखें, जहाँ सच्चाई को साथ दो जाए, किसी भी प्रकार की जाति धर्म आड़े ना आवे। तो हम जब मुहर्रम पे एक वादा करें कि हम अपने बच्चन के लिए केवल इतिहास की तारीखें याद ना करावें बल्कि एक मनुष्य के रूप में हमारे क्या कर्तव्य हैं इसके बारे में भी उन्हें बतावें। एक बेहतर इंसान बनन के लिए वो क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी शिक्षा दें। मुहर्रम को त्यौहार हमें सिखाते कि कठिन से कठिन समय में भी हमें इंसानियत को दामन ना छोड़ना चाहिए। इमाम हुसैन को संदेश है कि अगर तुम्हें अपनी जान भी देनी पड़े तो जुल्म के सामने झुकना मत। हमें अपने गांव में भी किसी के साथ अगर अन्याय हुए हुए तो चुपचाप ना देखना चाहिए बल्कि आपसी प्रेम संवाद के जरिया उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, मुहर्रम को त्यौहार हमें सिखाते हैं कि रोशनी अंधेरे में ही रास्ता दिखाती है। हम इस महीने को शांति, संयम और सौहार्द के साथ बितावें। उम्मीद है कि इमाम हुसैन की ये बातें हमारे जीवन में, हमारे गांव की फिजाओं में सुकून और भाईचारा जरूर लेके आवेंगी। तो भैया लोगों, कोई भी त्यौहार सही, उस त्यौहार को प्रेम के साथ मनावो। भैया बंधु जो हैं हमारे, उनके साथ बैठ के मनावो। किसी भी प्रकार की नाराजगी, कोई वैर भाव अगर है तो त्यौहार पे उसके लिए भूल जानू चाहिए, क्योंकि हमारे भाव अच्छे होंगे। यदि हम दूसरे के बारे में अच्छे सोचेंगे तो वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं हमारे बारे में भी अच्छे सोचेगा। अगर हमारे भाव गंदे होंगे, दूसरे को बुरो सोचेंगे, दूसरे के प्रति प्रेम की भावना ना होगी, तो कहीं ना कहीं वैसे ही भाव हमारे सामने आवेंगे। कहने को मतलब है कि हम यदि दूसरे की सहायता करेंगे तो ऊपर वालों ईश्वर कहीं ना कहीं हमारी भी सहायता करते हैं। अगर हम दूसरे को कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी परेशानियां आती हैं। भैया लोगों, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से कोई ना कोई जानकारी अपने भैया के पास तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आज त्यौहार है मुहर्रम को।
तो आज हम वार्ता सुन बात

रहा था। हर तरह का आतंक उसने मचा रखा था, बेगुनाह लोगों को सता रहा था। तब उसके खिलाफ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी आवाज बुलंद की। उसने हर चंद ये कोशिश की कि किसी तरह से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके हाथ पे बैयत कर लें, मगर आपने किसी भी सूरत में उसके हाथ पे बैयत नहीं की। जिसके सिलसिले में ख्वाजा अजमेरी ने भी आवाज दी, शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन, हुसैन शाह भी हैं और हुसैन बादशाह भी हैं। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हजरत इमाम हुसैन ने अपना सर तो कटा दिया लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने उसकी बयत नहीं की, उसके हाथ में हाथ आपने नहीं दिया। 3 दिन की भूख और प्यास के आलम में अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी शहादत पेश कर दी, लेकिन जालिमो जाबिर बादशाह के सामने अपने सर को नहीं झुकाया। इसी बुनियाद पर ख्वाजा अजमेरी कहते हैं कि सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन, कि हजरत इमाम हुसैन ने सर तो दे दिया लेकिन उसके आगे सर को झुकाया नहीं, उसके हाथ में हाथ नहीं दिया। हकीकत तो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हजरत इमाम हुसैन है। अगर इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपनी कुर्बानी पेश न करते तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नामो निशान मिट जाता। ये जो दीन बाकी है, ये जो इस्लाम बाकी है, या दूसरे लफ्जों में कहूँ कि शराफत बाकी है, अगर अखलाक बाकी है, तो ये सब हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है और आपकी कुर्बानी का असर है। देखिए सामईन किराम, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक फिरके या एक मजहब के रहनुमा या लीडर नहीं हैं, बल्कि आपने हर एक पर एहसान किया है और हर एक को सच्चाई का रास्ता आपने दिखाया है। जिस तरह एक डॉक्टर किसी एक मजहब और एक कबीले का नहीं होता है, उसका काम बीमारों का इलाज करना होता है, वो नहीं देखता कि कौन किस मजहब का है, इसी तरह जो भी हजरत इमाम हुसैन के रास्ते को अपनाएगा वो हर लम्हा कामयाब रहेगा, कामलान रहेगा, इज्जत की जिंदगी गुजारेगा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। तो जीना कमाल नहीं है बल्कि बाइज्जत जीना, बाइज्जत जिंदगी गुजारना, यही सबसे बड़ी कामयाबी और कामरानी की अलामत है। हमें चाहिए कि हम बाइज्जत जिंदगी गुजारें और दूसरों की मदद करें, दूसरों की नुसरत करें, इल्म में आगे बढ़ें, अखलाक में आगे बढ़ें और अपने मुल्क को मजहब की हिफाजत करें। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान पर बहुत यकीन था और एतबार था। आपने ये भी कहा था हुकूमत यजीद से कि हमें हिंदुस्तान जाने दो, हम हिंदुस्तान चले जाएंगे, हिंदुस्तान में प्यार और वफादारी बहुत ज्यादा है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से प्यार करें, उनके रास्ते को अपनाएं। जब हम उनके तरीके को अपनाएंगे तो हम हर जगह पर कामयाबो कामरान रहेंगे, हमारी जिंदगी हमेशा कामयाब रहेगी और हम हर तरह से सर बुलंद रहेंगे,
कभी किसी

0: की नींद पूरी ना ही पावेगी तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन है, माता पिता की आज्ञा को पालन ना करना है, जरा जरा सी बात पर झगड़ा करना है, इस प्रकार की बातें अक्सर बच्चन में देखने के लिए मिलती हैं। अगर बात करें जो बच्चा ज़्यादा देर टीवी या मोबाइल से चिपके रहते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, उनके शरीर की बनावट जो है वह बिगड़ जाती है, क्योंकि बच्चा एक ही जगह पर बैठी बैठी काफ़ी देर मोबाइल देखते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं, तो लोग बताते हैं कि उनको शरीर या तो बहुत मोटो हो जाता है, मोटापा आ जाता है, जा बात कहाँ तक सही है?
1: जी बिल्कुल बात सही है, बच्चा अगर ज़्यादा देर तक एक ही जगह बैठे रहेंगे तो उनके शरीर की गतिविधि तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी, क्योंकि बच्चन में मोटापा भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बच्चा जब तक खेलते रहते हैं, कूदत रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं तब तक बच्चन में फुर्ती रहती है, और जब बच्चा केवल एक ही चीज़ पर एक ही जगह नज़र जगड़ाए के बैठ जाते हैं तो ना तो बच्चा खेल पाते हैं, ना जो है कहीं दौड़ पाते हैं, ना उनकी कोई गतिविधि में चेंजिंग होती है, तो इस वजह से बच्चन में मोटापा बढ़ जाता है, शरीर रोगी हो जाते हैं, उनके शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि बच्चा जो है दवा वगैरह खाते रहते हैं और बच्चन को शारीरिक विकास बिगड़ जाते हैं।
0: अच्छा, जो चीज़ देखने के लिए मिलती है कि जो बच्चा मोबाइल से चिपके रहते हैं तो जो बाहरी खेल हैं बाहर खेलने को ना पहुंचते हैं, और जो बाहर खेलने के लिए ना पहुंचेंगे तो उनको शरीर तो देखो प्रभावित हो गए। आपने बात बताई ही कि बच्चा जिद्दी टाइप के हो जाते हैं, जब बारे में क्या कहना चाहोगे कि अगर मोबाइल टीवी को प्रभाव बच्चन को जिद्दी बनाए देते हैं?
1: हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जब बच्चा ज़्यादा मोबाइल देखेंगे तो बच्चन के व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, बच्चा गुस्सैल हो जाते हैं, जिद्दी टाइप के हो जाते हैं, अपने माता पिता की बच्चा बात ना मानते हैं, उनके लिए कोई काम करने के लिए दो तो वे काम ना करते हैं, और जरा जरा सी बात पे गुस्सा दिखाने लगते हैं, ठीक से ना तो उनकी भोजन की प्रक्रिया ठीक होती है, उनको हर समय मन जो है वो मोबाइल और टीवी में ही लगो रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है आपने बताई कि बच्चा हमारी गुस्सैल हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। देखो है का, अगर बात करें मोबाइल की तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है कि बच्चन को दिमाग होता है कोमल, उनके अंदर जब समझ ना होती है कि हमारे लिए सोशल मीडिया पे क्या चीज देखनी है और क्या चीज ना देखनी है, कभी कभी होता का है अचानक से कुछ इस प्रकार की वीडियो हमारे मोबाइल पे आ जाती हैं जो कि बच्चन के कोमल मस्तिष्क पे बुरो असर छोड़ती हैं, बच्चा लड़ाकू हो जाते हैं, हिंसा की प्रवृत्ति उनके अंदर पैदा हो जाती है, गलत आदतें उनके अंदर आ जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर समझ ना होती है कि हमें मोबाइल पे क्या चीज़ देखनी है। जो अभिभावक हैं उनसे आप क्या कहना चाहोगे कि बच्चन के लिए मोबाइल देनो कहाँ तक सही है?
1: अभिभावकन से यही कहेंगे, पहली बात तो मोबाइल बच्चन के लिए दो ही ना तो ज़्यादा बेहतर है, सबसे बढ़िया तरीका यही है कि बच्चन के लिए मोबाइल ना दो, लेकिन अगर बच्चन को फिर भी मोबाइल देने पड़े तो कम से कम समय एक से दो घंटा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं तो एक से दो घंटा 24 घंटा में केवल उनके लिए मोबाइल दो, और उनकी समय सीमा तय करो कि हमें बच्चन के लिए कितनी देर मोबाइल देने है।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई कि समय सीमा उसकी तय कर दो, क्योंकि अगर हम समय सीमा तय कर देंगे तो देखो उससे बच्चा भी हमारे संतुष्ट रहे हैं कि हाँ हमारे पापा या हमारी मम्मी हमें मोबाइल दे रहे हैं, और जहाँ आपने बात करी कि एक या दो घंटा की समय सीमा काफ़ी है, लेकिन जो एक या दो घंटा को जो समय है वो टुकड़न में दो कि 15 मिनट के लिए आपने सुबह के समय पे मोबाइल दे दो, 10-15 मिनट के लिए आपने दोपहर के समय पे मोबाइल दे दो, लगातार एक या दो घंटा आप मोबाइल ना दें, उससे बच्चन को मनोरंजन होते रहे और जो दुष्प्रभाव मोबाइल के माध्यम से बच्चन पे पड़ते हैं वे दुष्प्रभाव से भी बच्चा बचे रहेंगे।
1: बच्चन के लिए ज़्यादातर बाहर खेलने के लिए प्रेरित करो कि बच्चा बाहर खेलने के लिए जाएं, अपने दोस्तन के साथ में समय बितावें, दोस्तन के साथ में उन्हें घूमने के लिए प्रेरित करो, अपना रचनात्मक कार्य हैं उनमें बच्चन को ज़्यादा समय व्यतीत हुए, जैसे कलाकारी है, कोई खेल है, उनमें ज़्यादा बच्चा अपने जो है रुचि दिखावें, किताबें पढ़ने के लिए ज़्यादा प्रेरित करो जाए उनके लिए, उनकी किताबें पढ़ने की आदत जो है वो डालें, जिससे कि बच्चन को दिमाग मोबाइल और टीवी से हटके किताबन में उनके लिए रुचि पैदा हुए।
0: अमित कुमार शुक्ला जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से आकाशवाणी टीम के साथ अपने अनुभव साझा करे कि टीवी और मोबाइल को ज़्यादा प्रयोग बच्चन के लिए कितना नुकसानदायक है। हमारी आपकी बातचीत के लिए जो भी भैया सुन रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी को जरूर लाभ उठावेंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: भैया। इसके साथ ही साथ हमारे साथी हैं, आप हैं ग्राम दूनेनगर जिला बदायूं से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार, सत्येंद्र कुमार, गुड्डू, विशाल, संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, नित्या, सरिता और अंतिमा। और इसके साथ ही साथ अगली फरमाइश हमारे पास में आई है ग्राम इस्लामगंज जिला बदायूं से। आप लिख रहे हैं कि कोई भी प्यारा सा लोकगीत हमें सुनमान की कृपा करें। तो इस्लामगंज से आप हैं वसंत लाल शर्मा, कुलदीप शर्मा।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत राकेश शर्मा के साथ। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कृषि पाठशाला। आज का विषय है खेती संग पशुपालन को लाभकारी बनाएं। कृषक हैं तनवीर श्री करण सिंह और आपसे बातचीत कर रहे हैं रविंद्र कुमार।
1: कृषि पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज इस कृषि पाठशाला में हमारे साथ प्रतिभागी हैं। आइए जान लेते हैं उनका परिचय उन्हीं के माध्यम से। आपका क्या नाम है और कौन से गांव से आए हो?
2: तनवीर नाम है, बरखना से।
1: अच्छा, और आपका क्या नाम है?
3: मेरा नाम सर करण सिंह है, मैं किराम नौगमा वीरान से आया हूँ।
1: करण सिंह जी नौगमा वीरान से हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और तनवीर जी हमारे साथ शामिल हुए हैं बरखना हरचंदपुर से। आप दोनों का कार्यक्रम कृषि पाठशाला में स्वागत है। करण सिंह, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कब से खेतीबाड़ी कर रहे हैं?
3: सर मैं लमसम लगभग 16-17 साल की ही उम्र से कर रहा हूँ
1: खेतीबाड़ी कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करी आपने?
3: जी सर, इंटर किया था, इंटर के बाद दिल्ली।
1: इंटर के बाद पढ़ाई नहीं करी। तो कौन कौन सी फसलें आपके खेतों में होती हैं?
3: सर गेहूं की भी होती है, धान की भी होती है, गन्ना होता है, मक्का वगैरह होता है।
1: अच्छा, गेहूं धान गन्ना की खेती आपके खेतों में मुख्यतः होती है?
3: जी सर।
1: तो इस समय आपके खेतों में कौन सी फसल है?
3: सर इतने टाइम गन्ना भी है और धानों की गराई की तैयारी हो रही है।
1: अच्छा जी, अब जानते हैं तनवीर जी आप कब से खेतीबाड़ी कर रहे हैं?
2: काफी टाइम से हमारा खेती हो रही है।
1: अच्छा, काफी समय से खेती हो रही है। तो आपके यहाँ कौन कौन सी फसलें होती हैं?
2: यही गेहूं धान गन्ना वगैरह है, लाही।
1: गेहूं धान गन्ना लाही करते हैं आप। तो इस समय आपके खेतों में कौन सी फसल है?
2: गन्ना है ज्यादातर, तो गेहूं का प्रिपरेशन चल रहा है, धान का उसका।
1: अच्छा अच्छा,
2: वगैरह डली है।
1: बिल्कुल, तो गन्ना की फसल में इस समय तनवीर भाई क्या काम चल रहा है?
2: गन्ने में पानी वानी लग रहा है और दवाइयाँ लग रही, खाद खुदाई वगैरह चल रही थी।
1: अच्छा अच्छा, तो क्या इस समय कैसी फसल है आपकी गन्ना की?
2: सही है, अभी तो ठीक ठाक सही चल रही।
1: कोई बीमारी तो नहीं लगी है?
2: बीमारी कोई नहीं लगी।
1: अच्छा अच्छा, करण सिंह जी गन्ना की फसल आप

0: भी है, तो इस समय क्या काम चल रहा है गन्ने की फसल में?
1: सर इतने टाइम खुदाई हो रही है और गन्ना की स्प्रे वगैरह ज़्यादा हो रही है, सूर्य की बीमारी अभी इतने टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लग रही है।
0: अच्छा जी, बताइए कि जो गन्ने की खुदाई है उससे क्या फायदा होता है खेतों को?
1: सर गन्ने की खुदाई से गन्ना की पैदावार ज़्यादा निकलती है, जैसे कि घास वगैरह ख़त्म हो जाती है, गन्ना मुरझा जाता है, मोटा पड़ता है, इसी के चक्कर में कराई जाती है।
0: अच्छा, जब आप खुदाई कर देते हैं तो जो उसकी घास खत्म हो जाती है और फसल तेजी से बढ़ती
1: जी
0: है।
1: सर,
0: अब जैसे बरसात का समय आने वाला
1: जी
0: है,
1: सर,
0: लगभग लगभग मानसून पहुंच ही चुका है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय किसान भाइयों को क्या देखभाल, कैसे ध्यान रखना है गन्ने की फसल का, और बरसात में क्या-क्या काम करने होंगे?
1: सर बरसात से पहले गन्ने की खुदाई लगा जानी चाहिए, फिर बारिश

0: करने होंगे।
1: सर बरसात से पहले गन्ने की खुदाई लगा जानी चाहिए, फिर बारिश के बाद नहीं लगा पाएंगे जिससे घास वगैरह भी खत्म नहीं हो पाएगी, और जो स्प्रे वगैरह करनी है वो भी अभी कर दीजिए, बारिश यही टाइम है खुदाई का, खाद वगैरह लगाने का, फिर तो टाइम ही नहीं मिलेगा बारिश इतनी होने
0: बिल्कुल,
1: चाहिए।
0: मतलब जो ये उचित समय है, इस समय हम गन्ने की खुदाई कर सकते
1: जी
0: हैं,
1: सर यही,
0: उसमें खाद लगा सकते हैं, क्योंकि बरसात आने के बाद उसमें हम काम नहीं कर
1: जी
0: सकते।
1: सर
0: तनवीर भाई, जैसे आपने कहा कि अब धान की पौध की तैयारी चल रही है, तो धान की पौध की तैयारी लगाने के लिए खेतों को पहले तैयार करते हैं, तो किस तरह से खेतों को तैयार करते हैं?
1: खेतों की साफ सफाई करते हैं, घास वास ना रहा है उसकी खुदाई करते हैं, मेड़ बनाते हैं बड़ी करके, खूब पानी वानी भर जाए उसमें, बराबर लेवल करते हैं खेत को सब में।
0: हाँ, उससे क्या फायदा मिलता है खेतों को?
1: उससे ये होता है जब धान लगाते हैं, पौध लगाते हैं तो सही से लग जाता है।
0: पानी सब तरफ पहुंच जाता है खेत में, कहीं अगर जैसे खेत को हम ऊंचा नीचा छोड़ देंगे तो वहां
1: जी
0: पानी नहीं पहुंचेगा
1: देर से
0: वहां।
1: पहुंचेगा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा।
0: हाँ, तो आपके यहाँ तनवीर जी सिंचाई का माध्यम क्या है, किस तरह से पानी भरते हैं खेतों में?
1: सौर ऊर्जा का सोलर सिस्टम पैनल है वहाँ।
0: सौर ऊर्जा का पैनल है आपके पास, तो ये आपको सरकार से सब्सिडी पे मिला है या आपने खुद खरीदा है? तो इससे क्या फायदा होता है
1: इससे
0: डीजल
1: ये
0: की
1: फायदा
0: वजह से?
1: डीजल वगैरह की बचत हुई है
0: हाँ,
1: और थोड़ा टाइम की बचत है, इंजन से बहुत धीरे धीरे सिंचाई होती है, इससे थोड़ा जल्दी हो जाती है।
0: तो इसमें लगभग कितने फिट पानी आ जाता है, मतलब कितना, 2 फिट का इसका वो होता है बोरिंग, तो लगभग एक दिन में कितनी भराई कर देता है सोलर पैनल?
1: एक दिन में तो सर धूप के ऊपर होता है, मतलब जैसा मौसम है
0: हाँ
1: उस तरह से, अगर हल्का धूप सही है तो कम होगा,
0: हाँ
1: ज्यादा धूप अगर है तो जल्दी ज्यादा देर तक चलेगा।
0: ज्यादा देर तक चला, तो इससे ये फायदा हुआ है कि डीजल पे आपके जो पैसा है वो खराब नहीं हो रहा है, और आप प्राकृतिक जो स्रोत है ऊर्जा का, सूरज, उसके माध्यम से भराई, आजकल तो बहुत तेज अच्छी धूप निकल रही है, तो इस समय तो अच्छी भराई कर दे रहा होगा।
1: आज समय सही हो रहा है।
0: अच्छा, करण सिंह जी, आप भी तैयारी कर रहे होंगे धान की रोपाई की?
1: जी सर हाँ, इतने दम धान की तैयारी हो रही है और धान की सिंचाई भी चालू हो गई है सर। हमारे यहाँ ट्यूबवेल वगैरह भी लगा हुआ है और इंजन का भी प्रयोग किया जाता है,
0: हाँ
1: क्योंकि लाइट अभी हमारे यहाँ पे कमी आ रही है, ज्यादा से ज्यादा इंजन का प्रयोग किया जा रहा है।
0: बिल्कुल, तो धान की रोपाई करते समय खेत को किस तरह से तैयार करना चाहिए?
1: सर खेत को अच्छे से जुताना चाहिए जिसमें उसमें घास वगैरह ना हो, अच्छे से पैदावार हो धानों की, अच्छे से गराई हो सके,
0: हाँ,
1: घास वगैरह खत्म हो जाए, मेरे अच्छे से डालनी चाहिए जिससे पानी बाहर नहीं निकले।
0: मेढ़बंदी की सलाह वैज्ञानिक भी देते हैं कि बरसात से पहले खेतों की जो मेढ़बंदी है वो अच्छी तरह से कर ली जाए, तो मेढ़बंदी से क्या फायदा होता है?
1: सर मेड़बंदी से फायदा होता है, जैसे खेत में दवाई लगाई या खाद लगाई, ऊपर से बारिश हो गई तेजी, सब निकल जाती है और पानी भी निकल जाता है। मेड़ से फायदा होता है खेत में पानी भरा रहता है और उसमें खाद उद भी बाहर नहीं निकलती है, जैसे कि स्प्रे वगैरह लगाओ, कुछ भी लगाओ, फसल को ज्यादा कर आराम मिलता है।
0: जी, अच्छा, बात ये करते हैं कि धान लगाते समय किन-किन दवाओं का प्रयोग करते हैं किसान भाई?
1: सर धान लगाते हुए मसेची का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, उससे घास वगैरह नहीं होती है, और स्प्रे कर देते हैं जिससे घास वगैरह ना हो और पौधे पे सुंडी वगैरह ना लगे, कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग किया जाता है।
0: बिल्कुल तनवीर भाई, खेती तो हम लोग कर ही रहे हैं और खेती करते हैं, सरकार सलाह देती है, खेत बचाओ अभियान भी चल रहा है इस समय, क्योंकि 1 जून से 30 जून
1: जी सर
0: तक उसका उद्देश्य है कि हमें खेतों की मिट्टी बचानी है, तो ऐसे में कौन सी खादों का प्रयोग हमें ज्यादा करना चाहिए खेतों में?
1: खेतों में सर वो तो उसके कंडीशन के ऊपर है, फसल का कौन सी स्टेम किस दवाई लगना चाहिए, कौन सी खाद लगाना चाहिए, हमें
0: हाँ, नहीं, फिर भी
1: फसल
0: जैसे
1: के अकॉर्डिंग होता है
0: देसी खादों का जो प्रयोग है वो कितना लाभकारी है?
1: सर। ज़्यादातर तो सर देसी का ही लाभकारी है, अगर देसी घूरा देसी खाद अगर घर का मिल जाए सबसे बेस्ट तो वही है।
0: तो मतलब देसी खादों को लगाना चाहिए, देसी खादों से क्या फायदा होता है करण सिंह खेतों को?
1: सर देसी खादों से फायदा होता है, फसल जो पौधा लगाया जाता है वो जल्द से जल्द तैयार होता है और सूरी बीमारियों वगैरह से बचता है, जिससे कि सूरी वगैरह नहीं लगती है उसमें, कम समय में तैयार होता है। और खाद से सर ये नुकसान होता है, ज्यादा खाद लगाने से खाद में नुकसान होता है, जो जमीन होती बंजर बनती चली जाती, जैविक दवाइयों का कम प्रयोग करना चाहिए और देसी का ज्यादा करना चाहिए हमें सर।
0: जैविक का और देसी का ज्यादा प्रयोग करना
1: जी
0: चाहिए,
1: जी
0: रासायनिक का कम
1: जी
0: करना
1: रासायनिक
0: चाहिए,
1: का कम करना चाहिए।
0: उससे क्या है कि हमारे खेतों की मिट्टी भी खराब होती
1: जी
0: है
1: जी
0: और बीमारियां भी ज्यादा लगती हैं,
1: लगती है
0: तो देसी खाद का प्रयोग किसान भाई कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या आवश्यकता है, किन चीजों की जरूरत पड़ती है?
1: सर। देसी खाद के लिए जैसे हमें गौशाला वगैरह खोलना चाहिए, या हमारे पास भैंस गाय वगैरह होती हैं, उसका जो गोबर वगैरह होता है उसे इकट्ठा करके लगभग 5-6 महीना पुराना करके ही डालना चाहिए, जिससे भी खाद में बदल सके।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: तो इसके लिए क्या है कि पशुपालन बहुत जरूरी
1: जी सर
0: है, अगर हम पशु पालते हैं तो हमें

0: देखो जो गोबर है, मलमूत्र है, उनका एक गड्ढे में हम डालते रहते हैं और उसी को साल भर बाद हम कम से कम खेतों में डालेंगे, तो वो जो खाद है वो 3 साल तक असर करती
1: जी
0: है
1: सर,
0: खेतों में। तनवीर जी, जैसे आप ये करण सिंह जी ने बताया पशुपालन बहुत जरूरी है देसी खाद के लिए, तो आपके यहाँ पशुपालन होता है?
1: पहले था, उस टाइम तो नहीं है कोई।
0: इस समय नहीं है। तो आप देसी खाद बाहर से खरीदते
1: सर
0: होंगे,
1: बाहर से खरीदते हैं।
0: तो देसी खादों का यही फायदा है खेतों के लिए कि खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है।
1: जी
0: करण सिंह जी, पहले भी आपने देखा होगा कि पहले हमारे किसान भाई हरी खादों का प्रयोग करते थे अपने खेतों में,
1: जी सर,
0: तो हरी खादों के प्रयोग से क्या फायदा था खेतों को?
1: सर हरी खादों से प्रयोग से यही फायदा था कि बीमारी कम लगती थी। अब आए दिन टाइम में सर बीमारी ज्यादा से ज्यादा लग रही है, कहीं सूरी लग रही है, कहीं कुछ लग रहा है, कहीं। पहले के समय खेतों में कम से कम बीमारी होती सर,
0: जी
1: देखा जाए तो पहले के टाइम खेतों में पैदावार भी कम होती थी। अब दवाइयों के माध्यम से, जैविक दवाइयों के माध्यम से और घोड़े वगैरह के माध्यम से पैदावार भी अच्छी हो रही है।
0: पैदावार भी
1: जी
0: अच्छी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीमारियां। इसके लिए क्या चाहिए? किसानों को खेतों की मिट्टी की जांच करानी चाहिए, उससे पता चल जाता है कि हमारे खेत में कौन-कौन से
1: जी
0: पोषक तत्व के कमी है,
1: जी सर
0: उनकी पूर्ति करके अगर हमारे किसान भाई चाहें तो अच्छे से और कम संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। अब
1: जी सर
0: आपने एक बात कही थी शुरुआत में कि आपके गन्ने में सूंड़ी लग रही है,
1: जी
0: तो
1: सर
0: वो सूंड़ी क्या नुकसान पहुंचाती है गन्ने की फसल को?
1: सर सूरी जो होती है गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाती है। जो कल्ले होते हैं वो बीच से काट देती है, तभी कल्ला वहां से सूख जाता है, पौधा छोटा रह जाता है। एक कनिया की शिकायत होती है, कनिया लग जाता है, इतने टाइम चिट्टी भी काफी लग रही है। चिट्टी से गन्ना मुरे लंबा नहीं होता है, छोटा रह जाता है, और सूरी से तो गन्ना सूख जाता है सर।
0: तो इसका उपचार कैसे कर रहे हैं आप?
1: सर इसका उपचार हम कर रहे हैं, जैसे दवाइयों की स्प्रे वगैरह लगाना होती है हमें, उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसकी जरिया से ही कम होगा
0: जी, तो स्प्रे करते समय कौन-कौन सी सावधानी किसान भाइयों को रखनी चाहिए?
1: सर। स्प्रे करते समय किसान को पूरे कपड़ा पहनना चाहिए, मुंह पे मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि सर जो दवाई आ रही है वो बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है, बहुत
0: जी
1: ज्यादा काटती है सर।
0: जी तो अपनी सुरक्षा करते हुए मुंह पे मास्क लगाना चाहिए, पूरे कपड़े पहनने चाहिए,
1: जी सर
0: हाथों में ग्लव्स पहनने चाहिए, उसके बाद स्प्रे करनी चाहिए।
1: जी सर
0: आजकल आपने देखा है खेती में नवाचार बढ़ गया है, खेती में नई नई तकनीकें आ गई हैं, धान बोने की मशीन भी आ
1: जी
0: गई
1: सर
0: है,
1: जी
0: तो वो कैसे काम करती है धान?
1: सर तो धान बोने की मशीन आई थी, 12 साल हमने बबाया था उससे सर, उससे नराई में दिक्कत होती है, तो धान वो सर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि सर हाथ की गराई की बात और होती है, मशीन वाली की बात और होती है सर।
0: अच्छा, आपने पिछली बार गड़वाया
1: जी
0: था,
1: जी
0: तो क्या आपको दिक्कत आई उसमें?
1: सर हाँ, उसका रिजल्ट आया सर, उसमें घास बहुत ज़्यादा हो गई, नराई में सर बहुत दिक्कत आती, क्योंकि सर मजदूरी जो है 400-500 रुपये चल रही है, धान का रेट भी कम है इतने टाइम सर,
0: हाँ,
1: उससे एवरेज नहीं आ पाएगा सर
0: तो
1: इसी।
0: आपकी नजर में धान की जो रोपाई करते हैं वो ज्यादा सही
1: जी
0: है?
1: सर हाथ से जो गराई की जाती है वही सर ज्यादा सही है, उसमें
0: बिल्कुल,
1: घास भी कम होती है सर।
0: घास भी कम होती है। अच्छा,
1: जी
0: जैसे घास धानों की, अब आपने देखा है कि धान की फसल में नराई भी कर देते हैं और कई बार स्प्रे भी कर
1: जी
0: देते
1: सर
0: हैं,
1: जी
0: तो
1: जी
0: इसमें कौन सी ज्यादा चीज अच्छी रहती है, नराई अच्छी रहती है या स्प्रे करना अच्छा रहता है?
1: सर वैसे तो नराई ठीक रहती है, आए दिन लोग स्प्रे ज्यादा करते हैं, स्प्रे से ये होता है सर खेत मुरझा जाता है, ये ओमनी गोल्ड वगैरह आए और अपने जिन भी निकल के आई है उससे सर ऐसा होता है, पौधा रुकता तो जरूर है सर, मुरझा जाता है।
0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा
1: जी
0: दुष्प्रभाव है, लेकिन
1: जी
0: अगर निराई करें तो ज्यादा अच्छा
1: उसके
0: है।
1: बहुत सर ज्यादा बेहतर है।
0: तो तनवीर जी, आप आज कृषि पाठशाला में हमारे साथ शामिल हुए हैं, आप आज की कृषि पाठशाला के माध्यम से किसानों को क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की खादों का प्रयोग करना चाहिए खेतों में?
1: ज्यादातर देसी चीजों का उपचार करना चाहिए।
0: देसी खादों
1: जी
0: का,
1: सर
0: उससे क्या क्या फायदा होगा?
1: उससे सर फायदा ये होगा, वो चीज उसमें ग्रोथ अच्छी होगी उसमें।
0: ग्रोथ
1: दवाइयों का
0: अच्छी।
1: तो ऐसा ही है, केमिकल वगैरह बहुत चल रहे हैं, देसी चीज की बात ही हो रहा है सर।
0: देसी चीज की बात ही अलग है। तो देसी खादों का प्रयोग आज हमारी कृषि पाठशाला के माध्यम से किसान भाई जान गए होंगे कि देसी खादों का प्रयोग कितना जरूरी है, और कुछ जो मुख्य बातें हैं उसके लिए यह है कि देसी खादों के लिए हमें पशुपालन भी करना
1: जी
0: जरूरी
1: सर
0: है, क्योंकि अगर हम पशु नहीं पालेंगे तो हम देसी खादों को कैसे प्राप्त कर पाएंगे, और देसी खादें उपलब्ध नहीं होंगी तो खेतों में कैसे लगा पाएंगे? करण सिंह, चलते चलते क्या कहना चाहते हो किसान साथियों से?
1: मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा वो देसी खाद का प्रयोग करें, और किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा देसी दवाई का प्रयोग करें और जैविक खाद का प्रयोग करें, रासायनिक का बहुत ही कम से कम प्रयोग करें। रासायनिक खादों से सर हमारे खेत जमीन को बंजर बनाया जा रहा है और भी काफी नुकसान हो रहे हैं। मिट्टी की
0: हाँ,
1: जाँच कराते रहें, उसी के ही हिसाब से तो मैं अपने
0: पोषक तत्वों की
1: पोषक तत्व
0: पूर्ति
1: की
0: करें,
1: पूर्ति।
0: इससे क्या फायदा होगा किसान?

0: साथियों, इससे फायदा ये होगा कि हमारा जो अनावश्यक लागत है, जो ज्यादा लागत की हम बात करते हैं खेती में, वो भी हमारी सीमित रहेगी। और दूसरी बात ये है कि जब हमारी लागत कम होगी तो हमें उत्पादन भी जो
1: ज्यादा
0: मिलेगा तो हमें फायदा भी महसूस होगा। हमारे किसान भाई कई बार कहते हैं कि खेती में हमें ज्यादा लाभ नहीं है, तो वो बात भी उनकी झूठी हो जाएगी, क्योंकि हमारे किसान भाई देखा दूनी आजकल ज्यादा करते
1: जी
0: हैं।
1: सर,
0: करण सिंह ने अगर डीएपी लगाई तो हम भी डीएपी लगा दें।
1: सर
0: आप
1: ऐसा नहीं होना चाहिए
0: तो ज्यादा
1: सर,
0: नहीं होना
1: लाभ तो
0: चाहिए
1: वही
0: हमें।
1: फसल के ही हिसाब से चलना चाहिए सर। देखा दूनी में ऐसा होता है कि हमने ये लगाया कि हम भी वो लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर।
0: बिल्कुल। तो आज के कार्यक्रम में आप तनवीर जी और करण सिंह जी हमारी कृषि पाठशाला में शामिल हुए, आपने अपने अनुभव खेती से जुड़े हमसे साझा किए, आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि पाठशाला। विषय था खेती संघ पशुपालन को लाभकारी बनाए, और आज के प्रतिभागी थे श्री तनवीर, श्री करण सिंह, और आपसे बातचीत कर रहे थे रविंद्र कुमार।

0: श्रोताओं खोए हुए व्यक्ति से संबंधित सूचना सुनिए। सीमा शर्मा पुत्री चंद्रपाल शर्मा निवासी ग्राम बथाना भमौरा जिला बरेली सूचित करती हैं कि भावना उर्फ करिश्मा, जिनकी हाइट 5'3" चरंगे हुआ, शरीर सामान्य है, चेहरा गोल, बाल काले, आंख काली भूरी है, जो नीले रंग का सूट सलवार, गुलाबी रंग का दुपट्टा, कानों में सोने के टॉप्स, पैरों में चांदी की पायल व पैरों में काले रंग का चप्पल पहने हैं। दिनांक 2/6/2026 रात्रि 2 बजे से लापता हैं। जिस किसी व्यक्ति को मिले वो पवन कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना भमौरा जिला बरेली को सूचित करें या फिर इनके मोबाइल नंबर 9411947010 पर फ़ोन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें, इनका मोबाइल नंबर है 9411947010। खोए हुए व्यक्ति संबंधित सूचना समाप्त हुई।
1: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हां, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए, airbareli@cbs.gmail.com।
2: FM 100.4 MHz यानी आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com।
0: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, आप से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। बस कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: के मीटर पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्रीराम मंदिर दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। देवरिया में 465 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो भुक्तभोगी होगा।
1: जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था, मैंने तब भी कहा था अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को आज स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के

0: 8 नामजद आरोपियों को कल गिरफ्तार किया था। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित जांच दल एसआईटी की सिफारिश के बाद ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज कराई थी। एफआईआर में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। एसआईटी मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, जिसके बाद कल ये मामला दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: रुस्तमपुर रोड पर स्थित ये आधुनिक अस्पताल मरीजों को कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ट्रांसप्लांट जैसी जटिल बीमारियों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 500 पदों पर भर्ती के लिए 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन पत्र में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफ टॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविन्दर सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और ये देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा का जुलूस आज प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में गमगीन माहौल में निकाला जा रहा है।

0: जगह जगह मजलिसों का आयोजन भी किया गया। ये दिन पैगम्बर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोग घरों में रखे ताजियों को कर्बला में ले जाकर दफन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: सुबह से ही लोग ताजियों को जुलूस की शक्ल में कर्बला तक ले जा रहे हैं और दफन कर रहे हैं। जुलूस में लोग नौहा खानी और मातम करते हुए चल रहे हैं। लखनऊ की तालकटोरा की कर्बला में लाखों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर इमाम को पुरसा दिया। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित फूल कटोरा की कर्बला में सुन्नी समुदाय द्वारा ताजियों को जुलूस के रूप में ले जाकर दफन किया जा रहा है। यह सिलसिला देर रात तक चलेगा। प्रदेश सहित पूरे लखनऊ शहर में विभिन्न कर्बलाओं के आसपास सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जुलूस मार्गों पर पीएसी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। से कुछ देर बाद रात में 8:30 बजे लखनऊ के ऐतिहासिक शाम गरीबा मजलिस उफरामाप इमामबाड़े में होगी, जिसे मौलाना कल्बे जव्वाद संबोधित करेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर सहित विभिन्न जनपदों में मुहर्रम का जुलूस अकीदत के साथ निकालकर कर्बला में ताजियों को दफन किया गया। उधर एटा के अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। प्रदेश में आगामी 2 दिनों तक गर्मी का सिलसिला अभी जारी रहेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले 4 दिनों में मॉनसून प्रदेश के कई हिस्सों तक पहुंचेगा। इसकी शुरुआत पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और आसपास के जिलों से होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी। प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, 104.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हुए हैं और आइए अब सुनते हैं आपके खतों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम अनुरोध गीत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत करते हैं। ढेर सारे खत हमारे पास हैं। ये पहला खत मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर से फजलुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई, रामप्रसाद शर्मा, गगटा, काशी, धर्मपुर बरेली से फहीम खान, सद्दीक अली साविया, तूरीनगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कटहरिया और इनके साथी, मोहल्ला हलवाई शेरपुर जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदरानी, हिना कौसर, आप हैं बरेली जंक्शन से गरीब भाई, बिक्की भारद्वाज और इनके परिवार के सभी लोग, मॉडल टाउन करनाल से मीनाक्षी तिवारी, सुधीर नूतन, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा और संदीप गुलानी। और ये खत हमारे पास आया है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, आप हैं श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, अमरपुर पेंटर छत्तीसगढ़ से, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और इनके परिवार के सभी लोग, अलीका डबाली से बसंत सिंह चांद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी, आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मिराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके परिवार के लोग, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबी, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और इनके परिवार के लोग, यदम मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार और इनके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं फिल्म कुर्बानी का ये गीत किशोर कुमार व साथियों की आवाज़ में। गीत है फारूक कैसर का, संगीत बिट्टू का।

श्रोताओं, अगला गीत फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान, आवाज़ अदनान सामी की, और फरमाइश की है आप सभी ने ग्राम करेली पुरानी मस्जिद ज़िला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार, मस्तान बाबा, जसपुर उत्तराखंड से रियासत सिद्दीकी।

नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकर, रानी तबस्सुम, रुखसार मोहम्मद आसिफ, गंजडवारा से मुनव्वर लल्ला भाई, मिर्ज़ा नसरीन, अरबाज़ ख़ान, शाहबाज़ ख़ान, पप्पू भाई, अफसाना बेगम, मैजबी शेख, बादाम अली, किशमिश जहाँ और इनके परिवार के सभी लोग, कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली, चनुकेलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, अरोही मौर्य, स्वाति मौर्य, महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोटखे, नंदा बोटखे, हनुमान बोटखे, कोडवा नारायणपुर बाबापट्टी से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेखपुर कला, गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय और इनके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं फिल्म बजरंगी भाईजान का ये गीत अदनान सामी की आवाज़ में।

श्रोताओं 100.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत। ये खत हमारे पास आया है बरेली जंक्शन से गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, विक्की भारद्वाज, पदम भारद्वाज, ब्रेज सिंह चौहान, सोनू मिश्रा, प्रदीप पाल, नमन। आप हैं भटिंडा रोड डवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, सम्राट चौक शिरपुर जैन, जिला वाशिम से गिरीश देशमुख, सोनाली रेणुका, आरब अश्वनी, मौसमी, जयश्री माधुरी और जीवा देशमुख। आप हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयदेव बिरक, मीका बिरक, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशम थापा, अदीबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार। आप हैं एडवोकेट वारिस अली खान, शहबाज खान, शकील अहमद, सलीम अहमद, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली से पनीलाल सागर, बेनी सिंह, मासूम, धर्मवीर, मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उत्पंटी, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, दिव्य भारती, ममता चौधरी, ओमपति भारती, बेटी खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। आप हैं आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमर खेड़ महाराज से अभिजीत गुआड़कर, राही श्रीमती सरिता गुआड़कर, प्रिंस एकांश गुआड़कर, अकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली, शैलेश गुआड़कर, श्वेता सुमित गुआड़कर, धोनी गुआड़कर, परी, इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम नूरजहां, वली अकरम नूरजहां, उल्ला अकरम नूरजहां, राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, अदीबा तिवारी। आप हैं भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला भाई, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, राऊ भाई, शाहिद भाई, गांधी चौक गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। आप हैं डॉक्टर मसरूर खान नकासा रोड उसैद बदायूं से, मोहम्मद सरफराज खान विकास सक्सेना, सुहेल अंसारी, अनस मंसूरी, आदिल अब्बासी, मेघनाथ पाली और परिवार के लोग, रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा, मनोरमा देवी, अजय और फजरुद्दीन भाई, अशरफ खां छावनी पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से। यह गद हमारे पास आया है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजेश राजदीप राजेश, राशि राजेश। आप हैं त्रिलोकचंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा, शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचन, रमेश मिगलानी।

आप हैं विनेश कुमार रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनेटी बरेली से, विमल वर्मा मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से, आप हैं ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से, सुमेंद्र यादव पुष्पेंद्र आनंद अमन अंकिता अनीता सूरजश्री केशव सुनीता विनीता सोनी सनोज पुष्पेंद्र। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर फिल्म पुकार का ये गीत किशोर कुमार और आर डी बर्मन की आवाज़ में। गीत है गुलशन कुमार का, संगीत आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम के अंत में मोहम्मद अजीज की आवाज में ये गीत फरमाइश की है आप सभी ने। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी, अल्ताफ अंसारी। डुबराव बिहार से डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा और दानिश अंसारी। सलीमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एच डी अंसारी, मेहताब अंसारी, अफ्ताब अंसारी और मेराज अंसारी। परी महल कासगंज से आबाद खान, नवील खान, आरफा खान, इल्मा खान। आप हैं शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नाजरा इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम इदरीसी, असद इदरीसी। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत अदीबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला फकीर, डब्लू उल्ला फकीर, परवीन आसमा फकीर। बुलंदशहर से बदरुद्दीन वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और इनके साथी। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैश्लव कॉलोनी सनाबद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मोहस्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी। आप हैं निकट मोती मस्जिद कस्बा नवाबगंज, जिला बरेली से नसीम अहमद अंसारी, मिराज जहां, मुस्कान भी, मोहम्मद रेहान, अलशिफा भी, मन्नत भी। मोहल्ला कड़ैया बरेली से मोहम्मद कैसर शमशी, मोहम्मद अजीम शमशी, मोहम्मद सलीम शमशी, मोहम्मद नवैद शमशी, रजिया शमशी, बेबी शमशी और शमशी परिवार के सभी।

लोग कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। आप हैं जमशेदपुर से, बड़ा बाम्बो गांव सुपाही साई से, देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेन जी। सुभाष नगर बरेली से शोभा शर्मा, राजू, सपना दीक्षित, कल्पना, साक्षी, संजीव और बी डी कॉलोनी से राधा गोविंद, केशव, वैभव, अर्चना, अशोक, श्यामा और इनके परिवार के लोग। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल बजाज और परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज़ में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, रात के 8 बजने को हैं अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: अभी आप सुन रहे थे दुल्हन हम ले जाएंगे, इस फिल्म का गीत आवाजें थी सोनू निगम और अलका याग्निक की। श्रोता, हम इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात्रि के 8। इसी के साथ प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।
1: भक्ति प्रतिफलित करता है। सत्य दार्शनिक का कवित्व तुलसीदास का उच्चतम है। देवताओं से पूजित भारत की ऋषिगंध के कवियों ने पहचाना। युग की विसंगतियों ने मुठभेड़ करने वाला इतना बड़ा कोई दूसरा कवि उस युग में नहीं दिखता। तुलसी अपने समय के सबसे बड़े आदर्शवादी कवि है। कृतियों में तुलसी की मूल दृष्टि सामायिक दर्शन दृश्य के रूप में उभरी है। गोस्वामी तुलसीदास ने द्वादश ग्रंथों में राम जी के बाद यदि सबसे अधिक किसी की महिमा गाई है तो वह महान हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी का जीवन सहयोग में स्थित है। बुद्ध को विवेक रूप में स्वीकार हनुमान आंखों से भगवान देखकर अश्रु प्रवाह करते हैं। शरणागति ज्ञान भक्ति और कर्म मंत्रमुग्ध करते हैं। हनुमत कृपा से बाहु पीड़ा जाती रही। तुलसी की कविता वो है जिससे सुर सरि सम सम कहाँ हित हुई। सैसौ पत्थर हृदय को पिघला देने वाला है। जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। अवसर पाते दर्शन के लिए लगन की योग्यता तुलसी ने कराई। अकेले तुलसीदास ने काव्य प्रयोजन का नया चिंतन सूत्र दिया। भक्ति काल के कवियों का दर्शन करने निहारती है। तुलसी के रहीम का दर्शन चित्रकूट में प्रासंगिक है। जापत विपदा परत है सो आवते ही देश। कामदगिरी मंदाकिनी दार्शनिक है। राष्ट्रीय रामायण मेला चित्रकूट प्रेक्षागृह में तुलसी कवि की चौपाइयां दार्शनिक है। अयोध्या का इतिहास रचने वाली भूमि चित्रकूट की परिक्रमा का दर्शन है। तुलसी की आत्मीयता रहीम ही दार्शनिक।

भक्तिकालीन कवियों को सर्वहारा स्वर उभरे हैं। कबीर, सूर और जायसी जन्म से मस्जिब थे। रविदास मीराबाई ने सबसे अधिक स्वर करुणा प्रदान किया। संतत्व का आश्रय, अध्यात्म बोध के सहारे मानस भाव का दर्शन बढ़ाया। कुंभन दास ने संतन को कहा, सीकरी को नाम दर्शन मिला। अत्यंत विनीत संत भक्त कवि के लिए तुलसी अलग रहे। नाना पुराण निगागम निगागम नाना पुराण निगा नाना पुराण निगमागम का दर्शन साहित्य मंथन किया। बीजक, नानक बाणी, हनुमान चालीसा, गोरख बाणी, राम रक्षा स्त्रोत ज्ञान कोश बन गया। प्रेम तत्व बड़ी निष्ठा के साथ उभारा। ढाई आखर से जोड़ने का प्रयास जायसी ने मानुष प्रेम

भक्त कवि के लिए तुलसी अलग रहे। नाना पुराण निगागम निगाग नाना पुराण निगा नाना पुराण निगमागम का दर्शन साहित्य मंथन किया। बीजक नानक बाणी हनुमान चालीसा गोरख बाणी राम रक्षा स्त्रोत ज्ञान कोश बन गया। प्रेम तत्व बड़ी निष्ठा के साथ उभारा, ढाई आखर से जोड़ने का प्रयास जायसी ने मानुष प्रेम को बैकुंठी बनाया। लीला माधुरी राग रति ऐश्वर्य बोध का प्रयोग परीक्षण किया। इसमें लोकमंगल युग में श्रृंगार और वीरस की रचनाओं का दर्शन मिला। स्वामी रामानंद ने बताया, हरि का भजे तो हरि का होए, रसखान मानवता के आदर्श कवि हैं। तुलसी का नहचू और मंगल काव्य है। दर्शन के लिए तुलसी ने रामलीला, कृष्ण काव्य ने रासलीला जन्म देने के दार्शनिक हैं। भक्ति काल के कवियों का संत सत्य का आचरण करता है। शांत सहज स्वभाव में संत बसती है। संत कवि सदगुण परम मंगल है। रहमन विपदा की बली जो थोड़े दिन होए, निर्बल कौन सताइए जाको मोटी है। अद्भुत व्यक्ति संसार में खोजने से नहीं मिलता। संस्कृत का संकट ज्यों ज्यों गहराता जाएगा, भक्ति काल के कवियों का दर्शन उतना मूल्य प्रासंगिक सिद्ध हुआ। धम धूसर मनाने वाली सभ्यता संत तुलसीदास ने मध्य युग के मानव समाज को बचाया। कवितावली में कलिचाल की कुचाल तुलसीदास को व्यथित करती है। सारे सदग्रंथ लुप्त होने में बड़े कवि तुलसीदास पुनः प्रेरणास्रोत बनाई। जहां मिले रवि आगे जाए कवि, दर्शन का संयोग दुर्लभ मंत्र है। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कठिन कलेशा, रंत देव बल भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना, धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कवियों का धर्म दर्शन का सत्य है। ऐतिहासिक संदर्भ का गुण दार्शनिक मंत्रमुग्ध सत्य मंत्र गूंजता है। भक्त में भक्त का भगवान से सीधा संपर्क प्रेम है। भक्त का दर्शन हंस मिला। भक्त का संबंध हृदय से होता है और प्रेम हृदय की धड़कन है। माता अपने नवजात शिशु को अपना दूध पिलाती है, उस समय आनंद पाती, तृप्ति और संतुष्टि अनुभव करती। वह केवल वही जानती है, भक्त का फल आनंद है। भक्त और विभक्ति का अर्थ जुड़ना का भाव है। जीवन सुंदर बनाने के लिए प्रेम और करुणा अपनाना है। विश्वास से भक्ति जीवन में परमानंद मिलता है। नीव विश्वास पर दर्शन टिका होता है। मीराबाई ने भौतिक आनंद छोड़कर, सामाजिक परंपराएं तोड़कर, संत रविदास की शरण में जाकर आध्यात्मिक आनंद का रसपान किया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई भवानी शंकरों बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों का मानस दर्शन बिन विश्वास भक्ति नहीं मंत्र है। काक भुषुंड ने प्रार्थना की, भगत हीन गुण सब गुण ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। सूरदास का बाल जीवन कृष्ण के लिए है। वात्सल्य रस में माता का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। श्रृंगार रस भक्त के साथ वियोग वात्सल्य श्रीकृष्ण चेतना है। मैया मैं नहीं माखन खायो, कवि सूरदास ने भक्त और वात्सल्य को रस रूप प्रदान किया। भक्ति आनंद प्रेम और आध्यात्म ऊर्जा श्रीकृष्ण ने दिया। कान्हा की बांसुरी की मधुर तान मुरली मनोहर का सौंदर्य स्वरूप है। गोकुल की चेतना दार्शनिक है। बीज मंत्र राम के लिए दर्शन तर्क शास्त्र से मुक्त जन दर्शन और जीवन दर्शन रूप अपनाया। निरंजन अनहत का कंठहार बनाया गया। कवियों का षट दर्शन वेदांत योग सयो और साग दर्शन प्राप्त हुआ। ब्रह्म जीव जगत माया रहस्य वाद की प्रतिष्ठा कर न्याय मीमांसा नहीं भटकाया। बीज मंत्र राम के सहारे दर्शन रूप में अपनाया। विश्व विभीषिका का एकमात्र मुक्ति मार्ग है मानस। भक्ति काल में कवियों का संतत्व का संदेश जथा लाभ संतोष दिव्य आचरण और आस्था का संचार करती है। सेवा को जीवन का संस्कार बनाया। भक्ति आंदोलन के उन नायक संत दादू ने पाखंड का विरोध किया। कोई दौड़े द्वारका, कोई काशी जाए, कोई मथुरा को चले, साहिब घर ही माए। जयपुर नरेना तीर्थ का निखार उभार आता है। समय के पहले कुछ नहीं होता। वाग देवी की वीणा झंकृत हुई, भक्ति संगीत आराधना का दर्शन मिलता है। भक्ति मार्ग के प्रणेता संत तुकाराम का दर्शन कहते, दया वही योग्य कहलाती है जो सज्जन का पालन करती है। वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श बिना किसी भेदभाव के एक साथ भोजन करते हैं। कबीर की वाणी अंतः प्रेरणा से निकलती है। वचनामृत से ज्ञान सागर का बीजक ग्रंथ दर्शन अलौकिक है। कबीर कुरीतियों से समझौता करने वाले संत नहीं थे। सूफी दर्शन के लिए जायसी की साधना सिद्धांत ओतप्रोत है। हृदय से निकलकर हृदय पर चोट करती है अलौकिक प्रतिभा की। दृश्य कबीर का मूल्यांकन अत्यंत दुर्लभ।

0: दार्शनिक है। सत्य की खोज अखड़पन भाषा से युक्त रही, अखंड भक्त में एकात्म होने की बात करते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग डूढ़े बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाए। सबसे बड़ा दर्शन मानवता है, मैं हूं भूखा ना रहूं साधन भूखा जाए। संदेश सार्थक है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। यही दर्शन है रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, यही है रहमन पानी राखिए बिन चाहे सब सुन। भक्ति सागर में सागर है, भक्ति बड़ी शक्ति दूसरों के लिए है। धर्म का जीवन दर्शन निखारा, दिशा आगे मिलती है। भारतीय संस्कृत में अन्न को भगवान का प्रसाद माना गया है। नरनेवा नारायण सेवा भूख मिटाती है, भेंट बनना दार्शनिक है। सरस्वती शब्द बंशी बनाती हैं, आजीविका साधना रहित विद्वान दुर्बल की भूख मिटाने वाले जैसे व्यक्ति नहीं। भक्त कवियों का दर्शन है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दें रघुवीर। भक्त निश्चल दर्शन देती है, परोपकार दर्शन मदमुक्त करती है। भक्त का देवत्व आती है, देने वाले देवता भक्त दर्शन है। करुणा भक्त का दर्शन है, लोक मंगल भक्त का आधार है। आनंद सन दर्शन है, कवियों का दर्शन मंगल संदेश है। दुर्बल संयोग सरस्वती है, भक्त रचनाएं महान दर्शन है। नरोत्तम दास की भक्ति दार्शनिक है, भक्त काल कवियों ने रचा इतिहास प्रसंग दर्शन। साधारण होने की सुंदरता असाधारण घटनाएं कवियों का दर्शन है। आंखें करुणा का इतिहास छिपा होता है, रोटी में धरती का श्रम, प्रेम में मानवता की विरासत। हर नए दिन में ब्रह्मांड का उपहार समाया कवियों का भाव है। विश्वास भक्त से आनंद मिलता है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। संत तुलसीदास ने कहा, जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। भक्ति भगवान के दर्शन से प्रारंभ होती है, भक्त भक्त की ऊंचाइयों को छू लेता है। संत तुलसी का चातक प्रेम वर्णन मीराबाई बिरह वेदना का प्रतीक है। संकट के क्षणों में गिरधर मीरा, उन्हें जीवन उदारी का ध्यान आता है, जो उन्हें ऐसे दुष्टों से बचा सके जो सदा उन्हें विपत्ति में डाल देते हैं। भक्त चेतना में मानवीय संवेदना की उदारता का चित्र उभरता है। मेवाड़ की मरुभूमि में भक्ति मंदाकिनी के रूप प्रकट हुई। मीरा ने वृंदावन की यात्रा की, यह भूमि उनके इष्टदेव की क्रीड़ास्थली थी। गोकुल उजाड़दीनी, मथुरा बसायदीनी, कुब्जा कुंराजदीनी, राधे कुविशार, कुंजन कुंजन फिरत राधे के शब्द सुनत मुरली को, मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बीना नर फीको। मीरा जात पात में विश्वास नहीं करती, समरसता की स्थापना हरि भक्तों को एक वर्ग का मानती है। संत शिरोमण स्वामी रविदास किसी व्यक्ति वस्तु आस्था और विश्वास की सबसे बड़ी कसौटी व्यवहार को मानते हैं। मन चंगा कठोती में गंगा, दूसरों का हित करने वाली परोपकारी है। निर्गुण भक्ति साधना का दर्शन कबीर के बाद संत रविदास ही रामानंद के शिष्य थे। पवित्रता के कारण रविदास की पत्नी के नाम की आराधना की गई। देवत से बड़ी देवत की साधना दार्शनिक है, प्रभु जी तुम चंदन पानी, दैवीय गुण कविकों का अद्भुत दर्शन है। अभाव से भरा हुआ जीवन, कठिनाई से रोटी बनाने में एक साध की भूख शांत की। करुणा और दानशीलता ने जीवन में नया दर्शन मोड़ दिया। सत्य की खोज का दर्शन मंत्रमुग्ध करता है। कवि का जीवन दर्शन तुलसी सिद्ध संत उच्चतम दार्शनिक है। जन्म से तुलसी विकट घाटियां पार करते गए। प्रार्थना सेवा त्याग करुणा प्रेम अहिंसा में कवियों का दर्शन मिला। आंतरिक शुद्ध चरण पर भक्त कवि देते हैं भक्तिकाल के कवियों का दर्शन। संत तुलसीदास, कबीर, रविदास, सूरदास, रहीम, रसखान, जायसी, मीराबाई की रचनाएं महान हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे की वार्ता, विषय था भक्ति काल में कवियों का दर्शन। और इसी के साथ आज का हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं अरशद हुसैन चिश्ती व साथियों की गाई नात एवं कवालियां।

अरशद हुसैन चिश्ती व साथियों की गायी नात एवं कवालियां अभी आप सुन रहे थे, और इसी के साथ ही सुगम संगीत का आज का ये कार्यक्रम आप यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 8:30, और इसी के साथ अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से, और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मैंने प्यार क्यों किया इस फिल्म के गीत के साथ। सोनू निगम और जयेश गांधी, अमृता काक की आवाजों में प्रस्तुत है ये गीत।

0: जस्ट
1: अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और जयेश गांधी अमृता काक की आवाजों में मैंने प्यार क्यों किया इस फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं के नीति मोहन और विशाल ददलानी को गुंडे फिल्म के गीत में।

गुंडे फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे थे। आवाजें थी के नीति मोहन और विशाल ददलानी की। कार्यक्रम में अगला गीत आइए सुनते हैं गायत्री अय्यर और शान की आवाजों में। फिल्म का नाम है सलाम नमस्ते।

0: सलाम नमस्ते फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी गायत्री अय्यर और शान की, और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को, जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा, और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए, और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा

कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में एचएसबीसी के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत यूके व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार
विकसित

0: भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के जो

0: टीएन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए शमशाद बेगम की आवाज में। नगमा निगार है राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार है सचिन देव बर्मन और फिल्म का नाम है बहार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में अगला गीत। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत है जय देव का, फिल्म का नाम है मुझे जीने दो।

0: यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है गीता दत्त की आवाज में। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना मदन मोहन की, फिल्म का नाम है भाई, भाई।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद का और फिल्म का नाम है मुगले आजम।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी मन्नाडे और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, तर्ज है रोशन की, फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।
1: आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के

वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार

जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की। वो तो

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव-गांव शहर-शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे। और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहां वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैया राजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैया राजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैया राजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैया राजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कजू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिनथई किलनथे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

0: सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलियाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलियाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, क्या जोर से बजी है,

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को, और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

और फिर आई फिल्म शमिताभ, जिसके गाने लिखे स्वानंद किरकिरे ने, और इस फिल्म में था ये दिलचस्प गाना अमिताभ बच्चन की आवाज में।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैयाराजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैयाराजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने

इलैयाराजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है, और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

यहाँ आपको इलैया राजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैया राजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैया राजविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैया राजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैया राजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैया राजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में

पद्म विभूषण 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्र वीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाक, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रच

इलिया राजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलिया राजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिणी और युवान शंकर राजा। इलिया राजा के ये 3 बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलियाराजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है, और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलियाराजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहाँ तक कि अपने भाई को भी, इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलियाराजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है, और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलियाराजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलियाराजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैयाराजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैयाराजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्म

कलाकार मणि रत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहनलाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैया राजा ने, निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैया राजा ने तमिल फिल्म पागल निलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

0: सन्नाटा।
1: जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिंफनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बनाता है।

0: संगीतकार इलैयाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं

0: इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ

सफर फिल्म के इस गीत के साथ ही आपकी पसंद का आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आप थे अपनी रेडियो दोस्त आकांक्षा के साथ और ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं रात के 10 और इसी के साथ अब सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट से। बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और अमित कुमार की आवाजों में।

बड़े मियाँ छोटे मियाँ इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। अमित कुमार, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें थीं। आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक को शोल्जर फिल्म के इस गीत में।

अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में शोल्जर फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं राम लखन फिल्म का गीत। आवाजें हैं मोहम्मद अजीज, नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की।

सरफरोश फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है। हाँ, हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 10:30। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं अशोक गोस्वामी का राग जयंत मल्हार में वायलिन वादन, और आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्र।

शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे अशोक गोस्वामी का राग जयंत मल्हार में वॉयलिन वादन, और आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रमोद कुमार मिश्र। और इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।